0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिरी जा रहा है।
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे।
2: और फिर जशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: और अगली बार फर्स्ट आना, ठीक है?
1: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण, मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
2: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाम बता हम कहां जाएं।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपियो जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पहला सामुदायिक रेडियो। और इस रेडियो पर पहला प्रोग्राम जो चल रहा है आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाने वाला, जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। और इस प्रोग्राम में आज मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और आज हमारे साथ हैं रीना। तो रीना, आपका स्वागत है, कैसी हैं आप इस प्रोग्राम में? आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगी। गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूं, तुम बताओ तुम कैसे हो?
4: बहुत अच्छा हूं। और आज सुबह सुबह उठने में ठंड लगी या नहीं आपको?
5: नहीं नहीं यार, मेरे को सुबह उठने में ना, सच बताऊँ, जिंदगी का काम बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना।
4: मुझे भी लगता है यार, लेकिन फिलहाल आज का विचार कहता है कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा।
5: बिल्कुल।
4: तो देखिए, हर चीज हमारे मन से हो जरूरी नहीं है। जब हमारे मन से नहीं होती है तो वो ऊपर वाले के मन से होती है, यानी कि उस परमपिता परमात्मा के मन से होती है। और जब उसके मन का होता है तो सब कुछ
5: अच्छा होता है।
4: जी हाँ। तो चलिए श्रोताओं, आज का हम आपका वार्म वेलकम करते हुए स्वागत करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातचीत आपको बतानी है। तमाम जानकारियां हैं जो हमारे आसपास के लोगों के डेली रूटीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आने वाली है। तो मैं और रीना तमाम सारी जानकारियों के साथ आपके रेडियो पर हमने दस्तक दे दी है। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमें संदेश पहुंचाकर। दोस्तों 9837896896। चलिए श्रोताओं, एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतजार कर रहा है। इस गाने के बाद मैं और रीना पुनः लौटेंगे, आपसे और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: चैन तो हमें भी मिल जाता है श्रोताओं जब हम आपसे बातचीत करने आते हैं, क्यों रीना? मैं रीना को भी लेकर आ गया हूँ सुबह सुबह। आज आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों बिंदास मॉर्निंग में हम बातें कर रहे थे अभी आज 1 मार्च को क्या स्पेशल, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठंड है ना इसका असर भी अभी देखने को मिल रहा है। देखो भाई मार्च शुरू हो गया लेकिन ठंड फिर भी जो है लगातार जारी है।
1: बिल्कुल, जब आनंद ने मेरे को कॉल किया कि रीना तुम्हें शो में आना है भैया, मतलब आने से पहले ना 10 बार तो मैंने सोचा मैंने कि जाऊं ना जाऊं, कंबल से बाहर निकालो तो पैर तो ठंड लगने लग जाती है।
0: और सुबह सुबह तो यार बहुत मुश्किल होता है, मतलब रेडियो आना शो करना, लेकिन वो ये ना जब श्रोताओं से

0: चने में रात को जो भिगो कर रखती हूँ उसको खाती हूँ, और उसके बाद में जस्ट 1-2 घंटे बाद फिर मैं उस जूस पीती हूँ।
1: अच्छा, मतलब तुम इस तरीके से अपनी सुबह की शुरुआत करती हो। तो दोस्तों ये तो थी रीना की दिन की शुरुआत। अगर मैं बात करूं अपने आसपास के लोगों की, अगर आसपास की महिलाओं की या पुरुषों की या उन छोटे बच्चों की जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, या वो बुजुर्ग जो घर में हैं और अपना मतलब जो है ख्याल तो रखते ही है, लेकिन अपने दिन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो हर किसी का तरीका बहुत अलग होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल अलग।
1: तो आप लोग अपने दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं? आप योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं? कैसे अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं? आप जरा हमें फोन करिएगा 9837896896 यानी कि 9837896896। ये हमारे स्टूडियो का नंबर है। इस नंबर के जरिए आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग। आरजे रीना और आरजे आनंद आपके साथ इस प्रोग्राम में बने हुए हैं। कुछ संदेश आ गए हैं, जैसे हमारे पास सुरभि का मैसेज आया है। ये लिखती है, सर आज तो खासी ठंड है लेकिन आप दोनों को सुन के बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है रीना, मुझे तो अच्छा लगा इनका मैसेज।
0: और ये गर्मा गर्म चाय भी पी रही है, अदरक वाली देख नहीं रही हो, भेज रही है।
1: देखो आप गलत कर रही है सुरभि जी, मैं बताऊं तो हमें भी भेजो इस तरह की चाय बनाकर।
0: बिल्कुल, हमें भी ठंड लग रही है, मजा आएगा थोड़ा चाय पीते पीते शो करेंगे तो।
1: चलो एक काम करते हैं, अब एक कार्यक्रम में गीत सुनते हैं और अब लौट कर आते हैं थोड़ी देर में। तो तब तक आप हमें फोन करते रहिए 9837896896। बताइए आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम आएंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद।
0: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: क्या बात,

0: श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एफएम मुरादाबाद 89.6 आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम में आनंद आपके साथ है, रीना भी मेरा साथ दे रही हैं। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने म्यूजिकल ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की थी कि सुबह की अपनी शुरुआत आप कैसे करते हैं, अपने दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं, आप हमें फोन करके बता सकते हैं। और यही बताने के लिए एक बड़े प्यारे श्रोता का फोन आया है हमें, कहाँ से कौन जुड़े हैं आइए जरा इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सर।
1: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ प्रणव, लाजपत नगर से।
0: जी लाजपत नगर से प्रणव जी जुड़े हैं सुबह सुबह। सर स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। पहले बताइए कैसे हालचाल है?
1: हालचाल बहुत बढ़िया है आनंद जी। और आनंद जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं रेडियो पे
0: जी,
1: मतलब एक तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुरादाबाद का ये पहला रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जो इतनी सारी बातों से हम लोगों को आप बताते हैं हमारे शहर में क्या चल रहा है। कभी कभी होता है ना, कभी हमें नहीं रहता तो सुन लेते हैं, हम ट्यून अप कर लेते हैं सुबह सुबह, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे शहर में क्या चल रहा है। मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आपको और आपकी टीम को मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान जी। बताएं अखिल जी क्या करते हैं वैसे आप असल जिंदगी में?
1: असल जिंदगी में मैं जरा अभी जॉब करता हूँ।
0: अच्छा, मैं जरा अभी जॉब करता हूँ, ये जरा समझ में नहीं आया बीच में क्यों आ गया।
1: क्योंकि मन करता कि अब इस कंपनी में काम कर रहे हो दूसरी कंपनी में जाके
0: समझ सकते हैं। वो देखिए जब इंसान धरती पर आता है तो उसकी इच्छाएं और उसकी जो अंदर की चीजें वो बदलती रहती है समय समय पर, है ना?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो बस जॉब जो है जरा जरा सी चलती रहती है।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जरूरी है साहब। अच्छा तो अखिल जी बताइए आप अपने सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, जैसे कि हम पूछ रहे हैं आज अपने श्रोताओं से।
1: सुबह की शुरुआत तो सबसे पहले जो है हमारी बैग टी से होती है
0: जी,
1: जब एक बैग टी आ जाती है, गरम गरम प्याली सी चाय आ जाती है, और आपके शो से होती है सच में तो।
0: अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और विद आनंद के साथ और उसके साथ चाय, गरम गरम चाय।
0: क्या बात है, चाय से आप सुबह की शुरुआत करते हैं। और कई लोग जैसे हमें कहते हैं कि सुबह सुबह फ्रूट्स खाने चाहिए, सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, और हेल्दी ब्रेकफास्ट को शामिल करना चाहिए सुबह सुबह अपने रूटीन में।
1: ये भी मैंने किया है और मैंने करके भी देखा है और होना भी चाहिए। एक्चुअल में होता है कि आपके पास फ्रेश फ्रूट्स हो, सब कुछ आपके पास स्टार्टिंग में, अगर मॉर्निंग आपकी फ्रेश फ्रूट्स से हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और बस ये चाय हमारी रेगुलर उसमें आ गई, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अभी ये हैबिट्स चेंज होंगी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और अखिल जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखिए चाय बिल्कुल आप पीजिए, बहुत जरूरी है। सुबह सुबह चाय की तलब तो हर हिंदुस्तानी को होती है सुबह उठते ही, है ना? लेकिन उसके
1: आनंद जी, मेरा नाम प्रणव है। प्रणव
0: जी जी जी, प्रणव जी माफी चाहूंगा, मैं बस यही कहना, आपसे पहले हमारे जो कॉलर जुड़े थे उनका नाम था इसीलिए वो दिमाग में आ गया। सी मैं कहना चाह रहा था आपसे प्रणव जी कि देखिए क्या है ना कि सुबह सुबह एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है खान पान के साथ साथ।
1: हाँ एक्सरसाइज तो है, मैं ये थोड़ा सा मिस तो करता ही हूँ कि एक्सरसाइज एक्चुअली क्या है, अगर एक्सरसाइज रहता है तो पूरे दिन आपका फ्रेश रहता है, थोड़ा सा आप पूरे एक्टिव जोन में भी रहते हैं। एक्सरसाइज तो मैं मतलब करता हूँ रेगुलर, उसमें मतलब वैसे तो नहीं कह सकता कि जिम ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि अब इस समय मेरे पास टाइम नहीं रहता सुबह सुबह जिम का,
0: भाग दौड़ वाला समय रहता है मतलब काफी।
1: तो मैं ये है कि सुबह सुबह अपना, हाँ जब अपने बेड से उठा, थोड़ा सा एक्सरसाइज हुई, थोड़ी सी वॉक भी करके आता हूँ, क्योंकि कॉलोनी में वॉक से ये भी पता चलता रहता है कि क्या एक्टिविटी चल रही है आपकी। तो ये करके उसके बाद अपने एक्सरसाइज करके फिर अपना एक चाय और आपका शो, और उसके बाद फटाफट तैयार हो जाए भैया काम पे निकल।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया प्रणव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहाँ से फोन किया था मुरादाबाद में?
1: लाजपत नगर
0: से जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे, आपने फोन किया, ख्याल रखिए अपना और ध्यान रखिए और रेडियो सुनते रहिए साहब।
1: थैंक यू सर, थैंक यू,
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जुड़े थे हमारे साथ प्रणव जी लाजपत नगर से, इन्होंने बताया ये तो अपनी सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म एक कप कड़क चाय से करते हैं। बाकी श्रोताओं आप भी बता सकते हैं, दीदी जी आप भी बता सकती हैं, आप सुन रही हैं आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज हम बात कर रहे हैं अपने श्रोताओं से आज की सुबह की, आप बताइए आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। ये रीना अभी तक नहीं स्टूडियो में आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी अपनी सुबह की शुरुआत करने गई हो, कभी ब्लैक कॉफी बनाने गई हो। चलिए मैं इसको ढूंढकर लेकर आता हूँ। कुछ शॉर्ट एड ब्रेक आएंगे, उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, उसको सुनेंगे आप और हमारी आपकी मुलाकात होगी जरा सी देर में। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

इस खूबसूरत सी गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, मुझे तो लगता है कि रीना वाकई में गायब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ प्यारे प्यारे संदेश पहुंचे हैं। सबसे पहले एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इस खूबसूरत सी सुबह में। और मेरे पास संदेश पहुंचा है यहाँ पर निधि जी का, ये मुझे लिखती है, आनंद जी सुप्रभात, और सुबह सुबह आपका कार्यक्रम सुन के बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक गिलास गर्म पानी से, और ये गर्म पानी जो है मेरी स्किन के लिए और मेरे बालों के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा है और सभी को पीना चाहिए। और मैं योगा भी करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ, और आनंद जी आपके प्रोग्राम के माध्यम से हमें तमाम सारी जानकारियां भी मिलती हैं। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसी बीच हमारे पास मनोज पाल जी का भी संदेश आया है, इन्होंने लिखा है, आनंद जी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आपका कार्यक्रम हमें काफी अच्छा लगता है और हम अपनी सुबह की शुरुआत आपके रेडियो से करते हैं। अरे भैया, हमने पूछा था मतलब कैसे करते हैं, मतलब खाने पीने से रिलेटेड बातें हो रही थी यार। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारा रेडियो सुनते हैं और उससे अपनी दिन की जो है शुरुआत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, बात कर लेते हैं अपनी महिलाओं से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। तो बहुत जरूरी है उनके अधिकारों को पहचानना, उनके राइट्स को पहचानना। तो देखिए, अब जो है जमाना, महिलाओं, अब जितनी भी लेडीज हैं मुझे सुन रही हैं सुबह सुबह, उन सभी से कहना चाहते हैं जमाना बहुत आगे हो गया है। अगर अभी तक आप डिजिटली एक्टिव नहीं है, अगर आप अभी तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती है, तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि आप बहुत पीछे हैं। तो देखिए, ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अकाउंट्स बनाने हैं आपको ऑनलाइन। आपको अपने फोन पे जो भी आप डाउनलोड करती हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और उसके बाद सीधा आप भी डिजिटल हो जाइए। आजकल तो खैर तमाम सारे वीडियोज और तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके फोन पर ही मिल जाती है, तो जरा डिजिटल ही हो जाइए, ये सब चीजों में जुड़ना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है। जितनी भी महिलाएं हमें सुन रही हैं इस प्रोग्राम में, उनसे यही कहना चाहते हैं कि भाई साहब, आप जो है चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको राइट है सही समय पे सही चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और समय के साथ मिलकर जो है कंधे से कंधा मिलाकर कदम को चलाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मुझे जो है घड़ी की सुइयां और ज्यादा वैसे खैर इजाजत नहीं दे रही है कि मैं आपसे और ज्यादा बातचीत करूं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि अगला प्रोग्राम भी तो आपके लिए आने वाला है। अगला प्रोग्राम यानी कि अगला कार्यक्रम लेकर आ रही अगली आरजे प्रस्तुत होंगी आपके बीच में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कल सुबह सवेरे फिर जुड़िएगा मेरे साथ इसी प्रोग्राम में, जहां कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई चर्चा होगी और कुछ नई खबरें होंगी। अभी के लिए आरजे आपसे लेता है जाने की इजाजत। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, कल का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, कल का प्रोग्राम बहुत खास होगा। क्यों, इसके विषय में अगर आपको जानना है तो आप स्टे ट्यून रहना पड़ा एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, यानी कि आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। चलिए श्रोताओं, अभी मैं लेता हूं आपसे जाने की अनुमति। नमस्कार, गुड डे, बाय।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पहला सामुदायिक रेडियो। और इस रेडियो पर पहला प्रोग्राम जो चल रहा है आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाने वाला, जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। और इस प्रोग्राम में आज मैं हूँ आपका दोस्त आनंद, और आज हमारे साथ हैं रीना। तो रीना, आपका स्वागत है, कैसी हैं आप इस प्रोग्राम में? आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगी। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: बहुत अच्छा हूँ। और आज सुबह सुबह उठने में ठंड लगी या नहीं आपको?
1: नहीं नहीं यार, मेरे को सुबह उठने में ना, सच बताऊं, जिंदगी का काम बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना।
0: मुझे भी लगता है यार, लेकिन फिलहाल आज का विचार कहता है कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा।
1: बिल्कुल।
0: तो देखिए, हर चीज हमारे मन से हो जरूरी नहीं है। जब हमारे मन से नहीं होती है तो वो ऊपर वाले के मन से होती है, यानी कि उस परमपिता परमात्मा के मन से होती है। और जब उसके मन का होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। जी हाँ। तो चलिए श्रोताओं, आज का हम आपका वार्म वेलकम करते हुए स्वागत करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातचीत आपको बतानी है, तमाम जानकारियां हैं जो हमारे आसपास के लोगों के डेली रूटीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आने वाली है। तो मैं और रीना तमाम सारी जानकारियों के साथ आपके रेडियो पर हमने दस्तक दे दी है। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमें संदेश पहुंचाकर, दोस्तों 9837896896। चलिए श्रोताओं, एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतजार कर रहा है। इस गाने के बाद मैं और रीना पुनः लौटेंगे, आपसे और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
2: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
7: हेलो जी, यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम RJ आनंद है और आज का जो ये सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ जो ऐसी एक्सपर्ट जिनको सुन के ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बिकॉज ये इतने अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करती है और साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों को भी मेंटेन करके रखती है भाई साहब, क्योंकि किसी की स्माइल अच्छी बनाती है, किसी की स्किन अच्छी बनाती है, किसी के बालों को अच्छा बनाती है। एंड मतलब शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी एंड किनकी बात कर रहा हूं मैं, उनकी आवाज आप सुनेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। सीरियसली बता रहा हूं, वेरी वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी एंड इनके बारे में मैं क्या बोलूं यार, मुझे लगता है कि मुझे नहीं अब इनको बोलना चाहिए। सो डॉक्टर दिशा जग्गी मेरे साथ मौजूद है। हेलो।

0: वो नहीं, अटेंशन नहीं हटती है.
1: मैम थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर द बिग कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम सो हैप्पी एंड स्पेशली नाइस टॉकिंग टू यू. मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी आपका देखता रहता हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ. आई एम सुपर हैप्पी.
0: माय प्लेजर.
1: थैंक यू सो मच. अच्छा मैम, आज तमाम लोग आपको सुन रहे हैं हमारे रेडियो स्टेशन के थ्रू, थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को.
0: हाँ जी, मैंने अपना एस्थेटिक मेडिसिन एंड एंटी एजिंग मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से

0: Instagram, you can find me.
1: That's very amazing, wonderful introduction, ma'am. Seriously. So, ma'am, शुरू करते हैं आज का सिलसिला. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा आपसे. मैम, आजकल ना इंस्टाग्राम का जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है. इंस्टाग्राम पे जैसे हम इंस्टाग्राम ऑन करते हैं, हजारों रील्स हमारे पास आ जाते हैं. स्पेशली आप ये वाला फॉर्मूला आजमा लो, आप ये वाली रेमेडीज फॉलो करो, चाहे स्किन से रिलेटेड हो या बालों से रिलेटेड हो. और कई बार लोग वो इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो कितना ज्यादा हमारे लिए सही होता है और कितना ज्यादा रॉन्ग होता है. आजकल ऑडियंस को पता नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं.
0: So, देखो, I will not say कि all home remedies are wrong. मैं एक generalized चीज नहीं बोल सकती. एक जो home remedy है वो सबको suit करेगी, मैं वो भी नहीं बोल सकती. So, see, different, अगर आपकी dry skin है, so, you know, something like a मसूर की दाल, बेसन will help you out to reduce your oil secretions and things like that. कि हल्दी लगा लिया. एंड देन जो ड्राई स्किन टाइप्स हैं, उन्होंने अगर कर्ड के साथ में कुछ लगा लिया, कर्ड के साथ मिक्स करके, सो दैट विल ऑब्वियसली हेल्प देम आउट. बट अगेन, हर किसी की स्किन सेंसिटिव होती है. अगर सेंसिटिव स्किन है तो उनको हनी और इवन एलोवेरा से एलर्जी हो सकती है. आई हैव सीन ब्राइड्स जो आती हैं, हल्दी लगाया रात को या नेक्स्ट डे शादी है एंड पूरा फेस बर्न हो गया. क्योंकि पहले के जमाने में जो हल्दी थी और आज के जमाने में जो हल्दी मिल रही है, द थिंग्स हैव चेंज्ड. तो अब उतनी क्लीन सामान हमें मार्केट में नहीं मिल रहा. अनटिल अनलेस आपका खुद का कोई फार्म है या जहाँ से आप सामान लेकर आ रहे हो, पिसवा रहे हो, तो एक अलग चीज होती है. बट अगर नहीं है, सो इट इज बेटर आप वहाँ उस चीज पे स्टिक करें जहाँ पे आपको पता है कि थिंग्स विल नॉट रिएक्ट टू योर स्किन.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम. अच्छा मैम, आजकल आपको पता है ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर दूसरे इंसान को हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है. और आई थिंक इसका रीजन मैं मुझे लगता है कि आजकल का लाइफस्टाइल भी है, बिकॉज इतने लोग इतना बिजी हो गए हैं अपनी लाइफस्टाइल में. लोग उनको पता ही नहीं है कि हमें खुद के लिए भी समय निकालना है, अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: स्किन का जो हेयर के इश्यूज है, एज यू स्पेसिफिकली मेंशनिंग, तो बाल सिर्फ हमारा, देखो पहले जो जनरेशन था जिसको ये अफेक्ट करता था वो जनरली 40-45 प्लस था.
1: करेक्ट.
0: जैसे अगर जिनको गंजापन आ रहा है तो क्या हो गया था, एक बहुत एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी था कि ठीक है गंजापन है कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई. अब क्या है, पीपल इन देयर 20s आर हैविंग हेयर फॉल, पीपल इन देयर 30s आर हैविंग हेयर फॉल, जिनकी शादी नहीं हुई है दे आर स्टार्ट फिनिशिंग कॉलेज, बॉयज गर्ल्स, और उनको मैसिव हेयर फॉल है. और ये सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक इसमें रीजन होता है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 एंड आयरन प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, सीरम फेरेटिन और TIBC, दैट इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और थायराइड. ये तीन चार टेस्ट आप अगर अपने करा लेते हैं तो आपको अपने स्टेटस, स्किन के अंदर का या बॉडी के अंदर का स्टेटस पता चलता है कि डेफिशिएंसीज किसकी. अगर ये सारी चीजें आपकी ठीक है सपोज, देन हार्मोनल रीजन एक और होता है

0: 11 थी, एम शेप पैटर्न, एक एम शेप का पैटर्न फॉलो करेगा आगे से स्कैल्प पीछे, मतलब फोरहेड और सर के बीच में एक डिफरेंशिएशन जो होता है वो हेयरलाइन खत्म होती जाएगी, बोलते रिसीडिंग हेयरलाइन, राइट। सो वो हार्मोनल पैटर्न है, सो किस वजह से हो रहा है हमें वो पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। न्यूट्रिशनल बेस्ड है, हार्मोनल बेस्ड है, एंड कई बार होता है हमारे गट में इश्यूज होते हैं कि हम दवा तो खा रहे हैं मगर बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही है उसको,
1: करेक्ट।
0: तो वो एक और इश्यू होता है। सो वो यू हैव टू, मैं उसका एक वो नहीं बता सकती कि रामबाण है ये कर लो हो जाएगा। आपको हमेशा एक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, कंसल्ट डॉक्टर, सो दैट यू नो आप क्या कर रहे हैं।
1: एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा आपने बताया मैम। एंड आई थिंक मैम एक और चीज जो आजकल हम देख रहे हैं मैं यूथ में, इनफैक्ट हर किसी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, लोग खुद से कुछ भी यूज कर लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पिंपल स्किन एक्ने की अगर मैं बात करूँ, एक एक्ने एंड पिंपल ये बहुत ज्यादा स्किन में आजकल बढ़ता जा रहा है लोगों को मैं देख रहा हूँ। इवन मेरी कजन सिस्टर है उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बट वो क्या करती है कभी भी कोई भी क्रीम उसने मेडिकल स्टोर से ले लिया, कुछ भी लगा लिया, जबकि एक्ने एंड पिंपल इट्स नॉट वेरी इजी प्रॉब्लम, आई थिंक ये बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकती है, एंड मेरे से बेटर तो ऑफकोर्स आप ही जानते हैं। तो मतलब किस सिचुएशन में हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए? जैसे मैंने अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल दिया, मैं कजन सिस्टर वो कुछ भी लगा लेती है, तो क्या ये करना चाहिए अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है?
0: सबके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर लो, कपड़ों के साथ कर लो, मगर स्किन के साथ मत करो,
1: मत करो।
0: exactly. एक बार पिंपल्स आ गए तो खड्डे हो जाएंगे या स्कार्स हो जाएंगे या कहीं पिगमेंटेशन हो गया। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं माय क्लिनिकल प्रैक्टिस कि मैम बेटनोवेट लगा रहे थे, किसी ने स्किन लाइटनिंग क्रीम दी, स्किन गोरी हो जाएगी। अब उसके क्या होता है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट देगा वो, मगर साथ में स्किन को डैमेज कर देगा, आपका स्किन का जो बैरियर है ऊपर वाला उसको उड़ा देगा, साथ में बालों फेस पे बाल आने लग जाएंगे, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी धूप से। सो दीज आर द साइड सम साइड इफेक्ट्स। और साथ में क्या होता है, फिर ऐसी स्किन पे काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपने स्किन का बैरियर डिस्टर्ब कर दिया है बाय यूजिंग समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड देन उसके बाद जब मैं कोई माइल्ड मॉइस्चराइजर या क्लिंजर कुछ भी देती हूँ तो वो जल्दी काम ही नहीं करता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो स्पेशली एक्ने के लिए यू शुड नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन। अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, आज की तारीख में इफ यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर आप ऑनलाइन दिखा लो एंड दे विल बी पीपल टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो एक्ने में आपकी डाइटरी हैबिट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल, कि अगर आप मीठा खा रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो दैट हैज टू बी कट डाउन।
1: ऑलराइट, बिल्कुल सीखा। अच्छा एक और चीज मैम, आजकल जैसे आपने भी देखा होगा, इवन तो देख ही रहे, आजकल सभी देख रहे हैं कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का चल रहा है आजकल, लोग ये करा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा क्रेज भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड भी बन गया है और काफी बढ़ भी रहा है ये, बट एक्चुअली क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है?
0: परमानेंट इफ यू आर लुकिंग एट कि जिंदगी भर वो बाल रहेंगे, नो दैट
1: डजंट हैपन।
0: या सो द हेयर जो आपके पीछे डोनर एरिया से निकाले जाते हैं, फ्रंटली उनको ट्रांसप्लांट या लगा दिया जाता है स्लिट्स बना के। अब उनकी जो लाइफ स्पैन है, जनरली अगर आप उनका अच्छा केयर करते हैं तो समवेयर अराउंड 8 to 10 years वो रहते हैं। एंड उसमें भी ऐसा नहीं है, वो देखिए हमने बीज लगाया है, अगर बीज लगा के तो उसमें खाद नहीं डालेंगे देन ऑल्सो देयर आर चांसेस दे कैन फॉल ऑफ अर्ली। सो आपको उसकी भी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, साल में एक या दो सेशन मेंटेनेंस के आपने लेने रहते हैं जीएफसी या पीआरपी के, एंड व्हाटएवर मेडिकेशन आपका डॉक्टर ने बताया है वो आपको ऑन एंड ऑफ लेना रहता है।
1: Alright, very nice. अच्छा मैम, अगर मैं आपसे वही एक आम इंसान के बारे में बात करूँ, सपोज दैट कोई इंसान है जो सुबह से शाम तक बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, बट शाम को एटलीस्ट हर किसी के पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो खुद के लिए टाइम निकाल सकता है और वो इस बात से डिनाई भी नहीं कर सकता इनफैक्ट। सो मुझे लगता है कि अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ, लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, बट वो दो तीन चीजें ऐसी क्या कर सकता है जिससे उसकी स्किन भी हेल्दी रहे, उसके बाल भी हेल्दी रहे और उसकी पर्सनैलिटी भी शाइन करे, कॉन्फिडेंट बढ़े, अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहें पर्सनालिटी को?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल विच आई पर्सनली रेन, देखिए नथिंग कैन रीप अ गुड फिट पर्सनालिटी, दैट इज इंसान जो कि हेल्दी है और फिट है, दैट इज योर वर्कआउट एक्सरसाइज। जैसे आप मुंह में खाना डाल रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट आपका शरीर हिलाना है, सो प्लीज मूव योर बॉडी, क्योंकि द मोमेंट आप अगर फिट हैं और अगर आप एक कमरे में वॉक इन करते हैं, द कॉन्फिडेंस यू होल्ड, नो बोटॉक्स, नो फिलर, नो लाइपोसक्शन कुछ आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता जो कॉन्फिडेंस आपकी एक फिट बॉडी आपको दे सकती है। सेकेंडली योर वट एवर आप मुंह में डाल रहे हैं, देखिए आज की तारीख में एज आई यू सेड इंस्टाग्राम आप खोलो, ओवर नॉलेज है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके कौन से इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है और आपको पता है कौन से नॉन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है, मतलब कि प्रोसेस्ड सबको पता है खराब है, सबको पता है मैदा खाना नहीं है, सबको पता है कि पैकेट से निकला हुआ खाना हेल्दी नहीं है. वी ऑल नो दिस कि हरी सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए, जो हम लोग क्लास वन से पढ़ रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. शाम को वो समोसे आए, हाँ भाई लाओ लेकर खाते हैं. तो दैट इज हाउ इंडिया की वर्ल्ड की सबसे हाइएस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन बन चुके हैं.
1: Exactly.
0: डिस्ग्रेसफुल एंड शेमफुल थिंग.
1: एब्सोल्युटली.
0: सो नथिंग टू बी प्राउड ऑफ. एंड सेकेंडली न्यूट्रिशनल, एज इन आप अपने मुंह में जो भी डाल रहे हैं प्लीज देखिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है.
1: वैल्यू क्या है, करेक्ट.
0: या एंड थर्डली आई वुड से जस्ट यूजिंग द बेयर मिनिमम विच सूट्स यू. लाइक आपको सब नहीं लगा लेना है कि मैं सब देखा सब कर लिया. बेसिक यूज करने सामान यूज करिए टू लुक आफ्टर योरसेल्फ विच इज अ बेसिक पार्ट ऑफ ग्रूमिंग. जैसे एक सनस्क्रीन हो गया मेडिकेटेड, एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर, एक मेडिकेटेड फेस वॉश. ये तीन चीजें अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगी बट 60-70% योर लाइफ विल बी अंडर कंट्रोल.
1: That's very amazing, ma'am. बहुत ही wonderful तरीके से आपने explain कर दिया and very very quickly आपने बता दिया, मतलब unbelievable, incredible, ma'am. Lovely talking to you, ma'am. एक question, this is my personal question, so I want to ask you कि जैसे आजकल ना बालों में dandruff की problem बहुत हो रही है और कई लोगों को लगता है कि hair fall अगर हो रहा है, dandruff हो रहा है, तो हम अगर daily shampoo करेंगे तो ये काम हो जाएगा.
0: Okay, so dandruff generally जो होता है हमारा excess में sebum या oil secretion होने के कारण होता है.
1: All right.
0: और एक तरह की फंगस होती है जिसका नाम होता है मेलेसीजिया. ये फंगस सीबम या ऑयल पे थ्राइव करती है. उसका खाना है सीबम, तो और कुछ खाना

0: when you're going out, तो उसपे धूल मिट्टी बैठ जाती है.
1: Correct.
0: So scalp is dirty. तो उसको क्लीन करना है. गंदा स्कैल्प रखेंगे हेयर फॉल ज्यादा होगा. ऑल्सो जो लोग हेयर फॉल गो थ्रू कर रहे होते हैं वो हेयर वॉश ही नहीं करते हैं चार चार दिन सात सात दिन, क्योंकि मैम मैं बाल छूता हूँ तो और बाल झड़ता है भाई. फिर ऐसा क्या हो, ऐसे हेयर फॉल बढ़ जाता है. सो केटाकोनाजोल बेस्ड मेडिकेटेड शैम्पू 2% केटाकोनाजोल आप यूज कर सकते हैं. ऑल्टरनेट डे हेड वॉश करना चाहिए विथ ल्यूकवॉर्म और कोल्ड वाटर. गर्म पानी मत यूज करिए.
1: ओके ऑलराइट. मतलब इससे हम काफी हद तक फिर हम बच भी पाएंगे. इनफैक्ट
0: इससे काफी बच सकते हैं. इससे ये इवन अगर आपको डैंड्रफ नहीं है, केटाकोनाजोल बेस्ड शैम्पू अगर वंस अ वीक आप यूज करते हो फॉर योर स्कैल्प, जो भी बिल्डअप हो जाता है हम लोग की स्कैल्प में वो भी क्लीन करता है.
1: करेक्ट. ओके सी मैम, अच्छा एक और चीज, ये तो हमने ये तो नेचुरल प्रोसेस की बात हमने करी ली. अगर मैं बात करूँ डाइट की थोड़ा सा, अगर आप इसकी तरफ अगर हम बढ़ना चाहें, आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है कि नेचुरल डाइट बॉडी में डालना बहुत जरूरी. जैसे आजकल खीरा है, तरबूज, खरबूज, इन सब चीजों को कितना असर पड़ता है हमारी स्किन पे, हमारे बालों पर.
0: सी नेचर इज अ ब्यूटीफुल थिंग. आप देखेंगे जैसे जैसे वेदर चेंज होता है नेचर की सब्जियां और फल चेंज हो जाते हैं. आप वाटरमेलन खा लीजिए, हाइड्रेट हो जाएंगे, आप फुल हो जाएंगे.
1: करेक्ट.
0: ठीक है, आपका हाइड्रेशन पार्ट, फाइबर पार्ट आपको फ्रूट से बहुत अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि पता है कि भूख कम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू समर्स. एंड आपको थोड़ा सा प्रोटीन का अपना इनटेक का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग की इंडियन डाइट में ज्यादा प्रोटीन कभी भी था ही नहीं. सो हम लोग को प्रोटीन की मात्रा हमेशा खाने में रखनी है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे बाल और स्किन बना प्रोटीन से है. तो आप अगर वेजिटेरियन है तो सत्तू को अपने डाइट में इंप्लीमेंट करिए मॉर्निंग इवनिंग. सत्तू का पाउडर आता है. देखिए नॉन वेजिटेरियन के पास बहुत सोर्सेज है. वेजिटेरियन के ऊपर मैं बात करूंगी ज्यादा.
1: करेक्ट.
0: जैसे कि आपकी दाल हो गई, दाल आप खाइए. ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का, बट कुछ तो मिलेगा.
1: करेक्ट.
0: सेकेंडली छोले हो गए, सफेद छोले, काले चने, योर कड़ी जो दही के अंदर बेस पे बनी हो, और योर राजमा, लोबिया. तो अलग अलग दिन एक एक चीज इनमें से जरूर लीजिए. देन सोयाबीन की वड़ी, तो ये अपने खाने में डाइट में हर रोज बनाइए. एंड इवनिंग्स के टाइम अगर आप एग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट दो अंडा खा सकते हैं, दो से तीन एग व्हाइट्स. और इसके साथ अगर आप फ्रूट्स ले हो, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो इन योर एवरीडे डाइट, खीरा, ककड़ी, योर वाटरमेलन, मस्क मेलन इन योर फ्रूट्स, जो बेरीज आती है जो वाइटमिन सी रिच होती है, आंवला अगर डाल सकते हैं आप हर चीज में, किसी भी फॉर्म में, जूस में ले लीजिए, मुरब्बा ले लीजिए, अचार ले लीजिए, कुछ भी, एक पूरा आंवला खाइए. सो आपका स्किन ऑटोमेटिकली अंदर से क्लीन होके ग्लो करेगा.
1: That's very nice, ma'am. That's very nice. Ladies and gentlemen, boys and girls, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर दशा सिर्फ लोगों का इलाज नहीं करती है, बल्कि इनफैक्ट वो एक इंस्पायरिंग, जिसे कहते हैं ना इंस्पायरिंग वाली फीलिंग्स अंदर से आना, इंस्पायर होना, वो एक अमेजिंग लेडी है. मैम इतना सारा कैसे आप मैनेज करते हो, मतलब खुद की लाइफ के लिए भी प्रोडक्टिविटी और मतलब सबके लिए इतना सारा कुछ करना, मतलब अनबिलीवेबल. कैसे मतलब इतना एनर्जेटिक है, अभी भी आप इतना एनर्जी साउंड कर रहे हो.
0: I am already working in the clinic. I have one patient already lined on, two people waiting outside.
1: Oh my God.
0: But your point is this, that see, मैं सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, I practice what I preach. मैं जितनी कहानी सुना रही हूँ चार लोगों को, मैं अपने ऊपर भी पर्सनली वो यूज कर रही हूँ. That is why I know how it works. मुझे पता है उसका क्या रिजल्ट है और वो कैसे काम करता है.
1: That's very nice, ma'am. And I think मुझे लगता है कि हर एक women कुछ special कर सकती है अगर वो कुछ अच्छा ठान ले तो करने का.
0: True, आज की तारीख में women, men, they are all doing the same.
1: 100%.
0: So, ऐसा कोई वो specific कब है नहीं रहेगा.
1: ट्रू. अच्छा मैम मैं एक चीज के बारे में जानना चाहूंगा, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैंने जब मैंने कल आपसे बात करी थी तो आपने एक स्माइल के बारे में बात करी थी कि घूमी हुई स्माइल ठीक करना एंड जिनकी चिन शेप में नहीं होती है वो इंप्रूव करना, फेस का वॉल्यूम वापस लाना, वो सब कुछ कैसे मतलब थोड़ा सा उसके विषय में अगर मैं जानना चाहूँ
0: तो बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ फेशियल एस्थेटिक्स ओनली जो मेरी एक्सपर्टीज है. तो जैसे किसी के गम्स दिख रहे होते हैं स्माइल करते समय, उसको हम गम्स को नीचे ला सकते हैं, हल्का सा बोटॉक्स ट्रीटमेंट या बॉटुलिनम टॉक्सिन को डाल के आपके लिप्स नीचे आ जाते हैं. इट इज अ 2 मिनट्स प्रोसीजर, हार्डली कॉस्ट यू 3,000 to 4,000 rupees एंड आपके लिप्स जो गम्स दिखते हैं हंसते हुए वो चले जाते हैं. आपकी चिन कई बार होती है पीछे है, आपकी फेशियल प्रोफाइल में अगर आप साइड प्रोफाइल देख रहे हैं तो चिन थोड़ी सी पीछे आ रही है तो फोटोज में अच्छा नहीं लगता है, या आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे अच्छा नहीं लगता है. सो वी डू समथिंग कॉल्ड एज अ डर्मल फिलर. इमीडिएटली यू सी रिजल्ट्स विद इट एंड वो आपको अगले एक साल तक लास्ट करता है एक सेशन आपका. एंड सिमिलरली ऐसी और चीजें होती है, जैसे आप स्माइल कर रहे हैं तो नाक आपकी फ्लेयर हो रही है तो हम हल्का सा स्प्रे बॉटुलिनम टॉक्सिन देते हैं और आपके नोज को पतला कर देते हैं. इट लुक्स लाइक कि आप

0: सर्जरी कराई है, बट सर्जरी नहीं होती है, 5 मिनट का काम होता है जिसको हम नेजल फ्लेयरिंग का बोटॉक्स बोलते हैं।
1: सो
0: दीज आर सम ट्वीक ट्रीटमेंट्स जो आपकी स्किन को और फेस को काफी एस्थेटिक बना सकता है।
1: That's very nice, ma'am. कितनी सारी चीजें आजकल आ गई, लोग सिर्फ AI पे ही निर्भर रह गए। भाई AI से आगे भी दुनिया आ गई। आई नो AI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है हमारे आसपास जो कि हमें पता ही नहीं है। इनफैक्ट
0: True.
1: Yeah. Well, thank you so much, Dr. Dasha ma'am. अपना टाइम आपने हमारे लिसनर्स को दिया, थैंक यू सो मच एंड लवली टॉकिंग टू यू। एंड सच बताऊँ तो मुझे तो आपसे बहुत सारी बात करनी थी, लेकिन कैसे 20 मिनट हो गए, अनबिलीवेबल।
0: सीरियसली थैंक यू सो मच। आई नो हम लोगों को 10 मिनट बात करनी थी, वी आर ऑलरेडी डन 20 मिनट्स। थैंक यू सो मच आनंद, आई लव
1: सेम हियर मैम, सेम हियर। थैंक यू फॉर योर प्रिविलेज टाइम, थैंक यू। जाते जाते कोई एक मैसेज जो आप कन्वे करना चाहती हैं तमाम ऑडियंस आपकी आवाज सुन रही है रेडियो पर?
0: जस्ट बी फिट एंड बी योर ऑसम सेल्फ, दैट्स ऑल आई वांट टू से टू एवरीवन।
1: दैट्स वेरी नाइस मैम, वंडरफुल मैसेज।
0: आप मुझे सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ ऑन FM मुरादाबाद एंड आई एम डॉक्टर दिशा जग्गी एंड यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ डॉक्टर दिशा जग्गी।
1: लवली टॉकिंग टू यू मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय मैम।
0: थैंक यू, बाय बाय,
1: नाइस डे मैम, थैंक यू।
0: बाय-बाय
1: गाइस, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे किसी और अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के साथ, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन, स्टे कनेक्टेड।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
7: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
6: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
7: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
6: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
7: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
8: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
9: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: प्यार कर।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला की दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाहिर सी बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात होती होगी की तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ अचारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं तो कितने भक्ति अब शायद माइंड में रहा होगा, अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से में पानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आँच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई के किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए गए हैं।
0: जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उछे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है।
1: और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, लड़वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

प्योर एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, हैप्पी मंडे मॉर्निंग। कैसे हाल है हमारे दोस्तों की, बताइए बताइए। ओहो, मंडे का दिन है, ऑफिस जाने का मन तो नहीं था लेकिन जाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, जब बीच में वीकेंड स्टार्ट होता है ना, संडे और सैटरडे और संडे, तो दो दिन तो बड़ी खुशी होती है कि चलिए ऑफिस नहीं जाना है, मस्ती करेंगे, ढेर सारा फन करेंगे, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, लेट नाइट पार्टी करेंगे। बट लेकिन जैसे ही संडे की नाइट आती है तो मंडे की टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि मंडे कल है और फाइनली ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम है, फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है एंड मेरा ऐसा मानना है कि हर एक नए दिन की वैल्यू समझिए, क्योंकि बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। इसीलिए आज को पूरी पॉजिटिविटी, पूरी कॉन्फिडेंस और एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, आज को बेहतर बनाइए, क्योंकि आज की मेहनत ही कल को खूबसूरत बनाती है। तो इस मंडे मॉर्निंग को सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि नई शुरुआत मानिए, अपने सपनों की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाइए, क्योंकि छोटी छोटी कोशिश ही बड़ी कामयाबी की कहानी लिखती है। कीप स्माइलिंग एवरीवन, कीप शाइन, और अपने इसी मंडे को बना दीजिए सुपर मंडे। मैं आपकी मंडे मॉर्निंग को अमेजिंग बनाने के लिए यहाँ पर आ चुकी हूँ, आपकी अपनी दोस्त आरजी खुशी, और ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। वक्त हुआ है 10:13 और करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी एक्टिविटीज, आपकी मॉर्निंग को बनाएंगे सुपर डुपर लाउड। और दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस ब्यूटीफुल शो में कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। इस पर अपनी गुड मॉर्निंग विश कीजिए, मैसेज पहुंचाइए, कुछ थॉट है, कोई बात है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी, आपकी दोस्त यहाँ पर हाजिर हो गई है आपकी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए। आप प्यारी सी स्माइल तो कीजिए और एक मैसेज पहुंचाइए। फिलहाल मैं एक अमेजिंग ट्रैक आप तक पहुंचाती हूँ। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लिसनर्स।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. और देखिए, मैं कहीं लापता नहीं हुई हूँ, मैं आप ही के साथ हूँ आप सभी का फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला. और ये अमेजिंग ट्रैक आपने सुना के साथ में पलक मुच्छल की बड़ी खूबसूरत सी आवाज फ्रॉम द मूवी एक था टाइगर. लवली ट्रैक आपने सुना. और दोस्तों, आपके बैक टू बैक यहाँ पर मैसेज भी आ रहे हैं. आई एम रियली हैप्पी, आई एम सो हैप्पी. मुझे बहुत खुशी हो रही है जब सुबह सुबह आपके मैसेज देखते हैं, दिन बन जाता है दोस्तों. वैसे वक्त मैं बता देती हूँ, 10:23 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ. 13 जुलाई की तारीख है, दिन है मंडे का, बहुत ही खूबसूरत सा. और हमारे पास यहाँ पर जो मैसेज आए हैं, मैं उनको भी रीड कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आए हैं, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. और ये मैसेज हमें पहुँचाती है नीतू सिंह जी लाइन पार से. और सच में आपको सुनकर बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आप सबकी मॉर्निंग को और भी ज्यादा अच्छी बना देती हैं. थैंक यू सो मच नीतू मैम, ये तो आपका प्यार है. और आपने जो ट्रैक सुना, ये नीतू जी की पसंद का ही था लापता, सब ने एंजॉय किया है. वैसे दोस्तों, श्रोताओं, आपकी जो पसंद होती है ना, वो लाजवाब होती है. नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं गौरव टेलर जी नवीन नगर मुरादाबाद से. और कहते हैं, खुशी जी आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर. और मंडे का भी सब्री से हमें इंतजार होता है, क्योंकि आपसे मिलने का, बातचीत करने का यहाँ पर अवसर मिलता है. तो मैं तो फाइनली मंडे का बेसब्री से इंतजार करती हूँ. और जो भी थकावट होती है ना, वो मंडे आते ही दूर हो जाती है, क्योंकि आप सबका प्यार हमें खींच लेकर आता है स्टूडियो की. खुशी चलो जल्दी से. और यहाँ पर गौरव जी कहते हैं कि आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच सर. उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा विचार हमारे साथ साझा किया है. कहते हैं कि अभिमान कहता है कि किसी की भी जरूरत नहीं, अभिमान कहता है कि किसी की भी जरूरत नहीं, मगर अनुभव कहता है कि समय के अनुसार धूल के कण की भी जरूरत होती है. एग्जैक्टली राइट सर. तो दोस्तों, अभिमान नहीं करना है, अनुभव करना है. हर चीज से, हर इंसान से हमें सीखना है. और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक इंसान से सब कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन हर इंसान से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं. तो लाइफ में ईगो ना करें, हर इंसान से सीखते चलें, और जिंदगी इसी का नाम है. दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 जुलाई को. कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी आकर. अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद खुशी लौटकर आने वाली है. आज क्या कुछ स्पेशल है सब आपको पता लगेगा. ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. मुझे पता है हमारी बहुत सारे श्रोता तो इस समय नाश्ता कर रहे हैं और कुछ जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं, बहुत गर्मी हो रही है. फाइनली काम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आराम से बैठकर रेडियो सुनेंगे, है ना? ये मन में चल रहा है. चलो मुस्कुराओ, अभी मैं लौट कर आती हूँ बस.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे. हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना. आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त.
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा.
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता.
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए.
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना. पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर. 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर. किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी. 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस. उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक. आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद. कॉल करें 7055070552.
6: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
7: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
4: अरे तो परेशान क्यों होना, है ना धानिया नर्सिंग होम. यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ. बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे. और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है. धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद. कॉल करें 9012069764.
8: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने ये सुना प्यारा सा ट्रैक, अमेजिंग गाना, मोहित चौहान साथ में श्रेया घोषाल जी दे रही थी साथ। अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं एवरी मॉर्निंग आपके साथ कनेक्ट होती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगता है, तभी आपके यहाँ पर लगातार प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। और दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज कौन कौन से स्पेशल डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका सभी को इंतजार होता है। दोस्तों, आज 13 जुलाई को इंटरनेशनल चूरमा डे मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चूरमा दिवस आज 13 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हमारी पारंपरिक देशी खुराक, स्वाद और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहचान दिलाना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में यूके में रहने वाले हरियाणा के जज्जर निवासी रोहित अलावत ने की थी। एंड दोस्तों, चूरमे की खासियत आपको पता है, चूरमा राजस्थान और हरियाणा की पहचान माना जाता है। यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि परंपरा, अपनापन और देसी स्वाद का प्रतीक है। खास अवसरों पर, त्योहारों पर और पारंपरिक आयोजनों में इसे बड़े प्रेम से बनाया जाता है। और दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम जी जाते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर खाटू श्याम जी मंदिर में, बाबा श्याम जी के मंदिर में चूरमे का भोग बाबा श्याम जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। श्रद्धालु बड़े श्रद्धा से देसी घी से बना चूरमा अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि प्रेम और भक्ति से अर्पित किया गया चूरमा बाबा श्याम की कृपा का माध्यम बनता है। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज की मॉर्निंग, आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी चूरमा खाया है या फिर बनाया है? जी हाँ, क्या आपने दोस्तों कभी देसी घी वाला चूरमा खाया है? अगर खाया है तो बताइए सबसे स्वादिष्ट चूरमा आपको कहाँ का लगा। फटाफट से अपने मैसेज हमें पहुंचाएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। आज इंटरनेशनल चूरमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक बारी मैं ना आपको अपनी एक स्टोरी बताने वाली हूँ, पर अभी नहीं, जब लौट कर आऊंगी तब बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर मैसेज भी आ गए हैं आपके, तो मैं उन मैसेज को जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। दोस्तों, मुझे आप बताएगा कि आपने कभी चूरमा खाया है? अब आप सोच में पड़ गए हो ना, सोचने की कोई वो नहीं है, मतलब बताना है आपको। बहुत सिंपल सा, खाया है तो बताइए, नहीं खाया है तो भी बताइए, ठीक है? और हमारे पास जो मैसेज आए हैं मैं उनको क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा आदाब, बोल कीजिएगा। बिल्कुल सर, एक्सेप्ट किया हमने आपका आदाब। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं हमें दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी। साथ में इनकी पूरी फैमिली भी इस वक्त रेडियो का आनंद ले रही है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, रामपुर से रेहाना जी का। और शबनम जी हैं, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, बबली अंजान जी का, गीता कश्यप, ललिता जी, लक्ष्मी कश्यप जी का, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। खुशी तो हमेशा हैप्पी रहती है और पूरा प्रयास भी करती है कि आप सभी खुश रहें। आपको खुशी देने के लिए यहाँ पर खुशी आ चुकी है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर कश्मीर से आया है, महराजुद्दीन जी का, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और ये कहते हैं जो आपने ट्रैक प्ले किए बहुत ही अच्छे थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, हमने चूरमे की बात की है, मीठी मीठी अब बातें हमने कर ली है, मीठी कितनी सारी बातें की है, तो क्यों ना एक मीठा सा गाना भी हो जाए आज की मॉर्निंग। बने की शुरुआत मीठे ट्रैक के साथ करते हैं। चलो ये प्यारा सा गाना सुनिएगा, मैं बस लौट कर आती हूँ। बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये गाना आज की मॉर्निंग तो बनता है।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

सुबह सुबह इतने खूबसूरत गाने आप सुनेंगी तो कैसे ना दिन आपका खूबसूरत हो जाएगा, बताइए दोस्तों। गुड मॉर्निंग, खुशी आपके साथ है और ये है आपके अपने सिटी का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। टाइम हुआ है 10:52 और ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। इस प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें रिहाना जी ने भेजी थी। और दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल चूरमा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और अपने श्रोताओं से हमने पूछा है कि क्या आपने कभी चूरमा खाया है। तो अभी तक तो हमारे श्रोताओं के जवाब बहुत कम आ रहे हैं, आ तो रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों चूरमा बहुत स्वादिष्ट होता है और बनाना भी इतना टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। दोस्तों चूरमा कैसे बनाया जाता है, इसकी बहुत आसान विधि है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, वैसे हमारे श्रोताओं को पता है बट मैं फिर भी बता देती हूँ, मेरा दिल है ना मानता नहीं है। तो दोस्तों जैसे मोटे गेहूं के आटे में थोड़ा सा घी मिलाकर उसको सख्त आटा गूंद लिया जाता है, इसमें इसकी मतलब मोटी मोटी बाटियां बनाकर तंदूर ओवन या फिर कढ़ाई में धीमी आंच पर अच्छी तरह सेक लें। फिर उसको ठंडे होने के बाद क्या करना होता है, बाटियों को तोड़कर बारीकी से पीस लें। इसमें देसी घी, बूरा या पिसी हुई शक्कर एंड गुड़ भी ऐड कर सकते हैं आप, और गुड़ का जो चूरा होता है पाउडर होता है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। एंड उसके बाद इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम, पिस्ता, जो ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहते हैं उसे अच्छी तरह से मिलाकर स्वादिष्ट चूरमा तैयार किया जा सकता है। कितना सिंपल है ना बनाना, देसी स्वाद की खुशबू, परंपरा की मिठास और अपनी संस्कृति का एहसास, यही है चूरमा। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चूरमा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भी मतलब आपको छोटी सी अपनी याद मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों जब मैं पहली बार खाटू श्याम जी गई थी राजस्थान, तो वहाँ पर बाबा श्याम जी को मतलब चूरमे का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है और मुझे चूरमा मतलब पहले बनाना भी नहीं आता था। तो फिर क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, तब मुझे चूरमा ठीक से बनाना नहीं आता था, तो बस मुझे पता चला कि बाबा श्याम जी को चूरमे का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो मैंने मन में ठान लिया कि अब मैं बनाकर ही रहूँगी चाहे कैसा भी हो। तो मैंने पूरे प्यार से श्रद्धा से पहली बार चूरमा बनाया, मन में बस यही भावना थी कि ये भोग बाबा श्याम तक प्रेम के साथ पहुंच जाए। जब मैं वहां चूरमा लेकर खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची और बाबा श्याम को उसका भोग लगाया तो मन को एक अलग ही सुकून और खुशी मिली। बाद में जब हमने वही प्रसाद ग्रहण किया तो सच मानिए वे मेरे लिए सिर्फ चूरमा नहीं था बल्कि आस्था, प्रेम और विश्वास का स्वाद था। इसीलिए मैं हमेशा मानती हूँ कि किसी भी प्रसाद की सबसे बड़ी मिठास उसकी सामग्री में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले प्रेम और श्रद्धा में होती है। तो अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि बताइए एवरीवन, क्या आपने कभी चूरमा खाया है? अब तो बता ही दोगे आप। और अभी हमारे पास यहाँ पर मैसेज भी लगातार आ रहे हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है शबीना खान जी का, रहमत नगर मुरादाबाद से, और बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज इन्होंने भेजा है, साथ में फ्लावर्स भी भेजे हैं। थैंक यू शबीना, कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं, आप बहुत अच्छे सॉन्ग सुनवा रही हैं, थैंक यू। एंड इन्होंने बड़े प्यारे सा गुड मॉर्निंग हमें विश किया है। दोस्तों सुप्रभात, आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण स्वस्थ व प्रसन्न रहें। वाओ थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना, तो कैसे हम उनको शामिल ना करें दोस्तों। हाँ इतना प्यार छिपा होता है आपकी बातों में कि मैं मजबूर हो जाती हूँ पढ़ने के लिए।
उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका शो हम सुन रहे हैं, आपको बहुत दिल से सुनते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत ही प्यारा होता है। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं सोनू कुमार जी सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से, थैंक यू सोनू जी। अगला मैसेज हमारे पास आया है रणवीर सिंह जी का मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। कहते हैं कि जिनके स्वभाव में प्रेम बसा हो उनके दरवाजे पर खुशी खुद चलकर आती है। ओहो हो, क्या बात है सर। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भी हमें भेजी है, हम पूरी कोशिश करेंगे सर उसको प्ले करने की, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। दोस्तों मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपनी बातें अपनी थॉट हम तक पहुँचाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। और एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले गाना आप सभी के लिए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी, मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

दोस्तों, खुशी आपके साथ है और समय मैं आपको बता देती हूँ, 11:10 हो चुके हैं। 13 जुलाई की तारीख है आज और आपसे एक सवाल तो हम पूछेंगे ही, लेकिन आपको बता देते हैं कि आज और क्या कुछ खास है। दोस्तों, आज का दिन नेपाली साहित्य के लिए बेहद खास है क्योंकि आज मनाई जा रही है भानु जयंती, जो नेपाली भाषा के आदि कवि भानुभक्त आचार्य जी की जयंती के रूप में हर साल मनाई जाती है। भानुभक्त आचार्य जी का जन्म 13 जुलाई 1814 को नेपाल के तनहु जिले में हुआ था। उन्होंने नेपाली भाषा का आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साहित्य को आम लोगों की भाषा से जोड़ा। उनका सबसे बड़ा योगदान था रामायण का संस्कृत से सरल और सहज नेपाली भाषा में अनुवाद। उस समय संस्कृत हर किसी की समझ में नहीं आती थी, लेकिन भानुभक्त जी ने रामायण को ऐसी भाषा में लिखा कि आम लोग भी उसे पढ़ और समझ सकें। उनकी रचनाओं में केवल भक्ति ही नहीं बल्कि समाज, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की झलक मिलती है। और आज नेपाल ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले नेपाली समुदाय द्वारा भानु जयंती बड़े उत्सव से मनाई जाती है। इस अवसर पर कवि, पाठ, साहित्यों की सांस्कृतिक कार्यक्रम और रामायण वाचन जैसे कई आयोजन किए जाते हैं। दोस्तों, आदि कवि भानुभक्त आचार्य जी को नमन करें और याद रखें, दोस्तों भाषा तभी जीवंत रहती है जब वह हर दिल तक पहुंच जाती है। किसी की भी भाषा की सबसे बड़ी खूबसूरती तब होती है जब वह ज्ञान को हर इंसान तक पहुंचाने का माध्यम बन जाए। तो आज इनकी जयंती पर हम उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपके भी मैसेज आ रहे हैं खूबसूरत। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रिहाना जी का, ये रामपुर से अपना मैसेज हमें पहुंचाती हैं। शुभनम जी, साथ में राहत अली जी हैं, नेहा हैं, लाइबा काजमी हैं और कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें भी लिखी हैं एवरी मॉर्निंग की तरह, कि मिल जाती है कितनों को खुशी, मिल जाती है कितनों को खुशी, बढ़ जाते हैं कितनों के गम। मैसेज इसलिए भेजते हैं हम ताकि ना मिलने से भी अपनी दोस्ती ना हो कम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आपकी और हमारी दोस्ती कभी कम नहीं होगी, बल्कि ये तो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। अगला मैसेज हमारे पास रिहाना जी का आया है रानी नागर से और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। इतनी सारी फ्रेंड्स, इतने सारे हमारे लिस्नर कनेक्ट होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगला मैसेज हमारे पास आया है बबली अंजान जी का, गीता कृष्ण जी का और ये कहती हैं, मैम गुड मॉर्निंग, देखिए हमने तो चूरमा नहीं खाया है मगर आप हमें गाना सुनवा दीजिएगा, इसी से हमारा मुँह मीठा करवा सकती हैं आप। ओके सर, ठीक है, ये प्यारा सा गाना मैम आपको सुनवाते हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं खुशी जी, कैसे हाल है आपके? बहुत बढ़िया है हम। नईमूल अकरम जी का मैसेज आया है सिरसवा दोराहा से, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, नूर है, सकावत भाई है और खुशी जी आपको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास राधिका का आया है, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग डियर, हम बहुत अच्छे हैं। और हमारे पास कुछ प्यारे प्यारे वॉइस नोट भी आए हैं तो मैं उनको आकर क्विकली प्ले करूंगी, बट अभी एक प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद आपसे भी बातें करेंगी।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

वीण घट में जोत है जोत में घट जो खोजे बाहर वो भीतर ही बसे।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं अपने सिटी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। दोस्तों कहते हैं ना कि जहाँ अटूट आस्था होती है वहाँ हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है, और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण इस समय बाबा केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहा है। दोस्तों साल 2026 की केदारनाथ यात्रा ने एक नया इतिहास रच दिया है। महज 2.5 महीने के भीतर 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। लगातार बारिश, कठिन मौसम और पहाड़ी चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था जरा भी कम नहीं हुई। बाबा केदारनाथ के दरबार में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। तो अगर आपके मन में भी बाबा केदारनाथ के दर्शन की इच्छा है तो जब भी जाइए मौसम की जानकारी लेकर जाइए, प्रशासन के सभी सलाहों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर वॉइस नोट भी आए हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि वॉइस नोट भी हमारे पास आए हैं, उनको भी हम प्ले करते हैं क्योंकि इंतज़ार मैम को भी है कि मेरी आवाज़ कब रेडियो पर ऑनियर होने वाली है। तो चलिए सुन लेते हैं मैम की मधुर आवाज़ क्या पहुँचाती है आज की मॉर्निंग। और दोस्तों आप भी अपने मैसेज मुझे पहुँचा सकते हैं बिना किसी देरी के। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896।
1: राधे राधे खुशी, आप कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ खुशी। आज 10 बजे आपका प्रोग्राम सुन रहे थे जो अयोध्या पर आप प्रोग्राम कर रही थी, बहुत अच्छा लगा खुशी। हम लोग जनवरी में अयोध्या गए थे रामलला का दर्शन करने। मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल और सुंदर बना हुआ है। जब हम लोगों ने रामलला का दर्शन किया तो अंदर से इतना प्रसन्न मन हुआ कि वो मैं आपको बता नहीं सकती। और आप भी कभी जाइएगा दर्शन करने रामलला का। और अयोध्या का तो एकदम काया पलट हो गया है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन देखने लायक है, इतना सुंदर बना है कि आप देखोगी तो इतना मन प्रसन्न हो जाएगा कि वाह, अपना उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बन रहा है। और योगी जी ने एकदम वहाँ का काया पलट दिया है, काम बोल रहा है उनका, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और आप भी जब कभी दर्शन करने जाइएगा तो आप खुद ही देखेंगी।
0: बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा वॉइस नोट पहुंचाया और आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इतनी प्यारी सी आवाज़ में जब आपने इतना प्यारा संदेश हमें दिया है तो हम ज़रूर अयोध्या जाएंगे श्री राम लला जी के दर्शन करने के लिए। अच्छा दोस्तों, अब बारी किसकी है एक सवाल की जो कि मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ। आपको उसका राइट आंसर मुझे पहुँचाना है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों अब वक्त है जी के चैलेंज का। आप मुझे बताइए भारत की किस खूबसूरत शहर को, जी हाँ भारत के किस खूबसूरत शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, आज का यही मेरा सवाल है। मुझे जल्दी से मैसेज कीजिएगा। दोस्तों भारत के किस खूबसूरत शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, फटाफट अपने मैसेज पहुंचाइए। नंबर है 9837896896। अपने सही जवाब के साथ और अपने नाम के साथ आप मुझे मैसेज पहुंचाइएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, मुझे यकीन है कि आप जल्दी से बता पाएंगे। अगेन रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, भारत के किस खूबसूरत शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है ये आपको मुझे बताना है। आप कंजूसी बिल्कुल भी मत करो, जल्दी से अपना मैसेज पहुंचाओ, राइट आंसर हम इंतजार कर रहे हैं। तब तक और मैसेज यहाँ पर आए हैं उनको भी मैं शामिल कर देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी, साथ में इनके दोस्त भी हैं रईस दूल्हा अंसारी जी। और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताइएगा आपकी हालचाल कैसे हैं। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, राम राम जी खुशी जी, आपको भी जय श्री राम। अजीत कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी कांट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं एवरी मॉर्निंग की तरह। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, शीतल कश्यप जी का, एंड ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो चलिए दोस्तों इसी बात पर सुनते हैं एक शानदार सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे बहुत सारी गपशप। आप मुझे बताइएगा जो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपको पता है, आप कंजूसी नहीं करेंगे मैसेज पहुंचाने में, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। चलो अभी गाना सुनो, मैं आती हूँ वापस।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

बिल्कुल दोस्तों, आपका और हमारा साथ वैसे ही बना, ऐसे ही बना रहेगा। देखिए दोस्तों, आज 13 तारीख है, 7वां महीना है, तो 13-7 मतलब आपका और हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे, बना रहे, और ये साथ ना हमेशा निभाना, ठीक है। अभी मैं आपको समय बताती हूँ, 11:47 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी, और अब वक्त हो गया है दोस्तों आज के वेदर अपडेट का। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार आज 13 जुलाई 2026 को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से अधिक भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। दोस्तों, दिल्ली NCR में फिलहाल उमस भरा मौसम बना हुआ है, लेकिन आसपास के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना भी है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मुरादाबाद की मौसम की अगर बात करें तो दोस्तों, अधिकतम जो तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस लगभग रहने वाला है, एंड न्यूनतम रहने वाला है 26 डिग्री सेल्सियस, और नमी काफी अधिक है। हवाएं हल्की गति पर रहेंगी, सावधानी रखें, बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्ते से बचें, पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा में अतिरिक्त सतर्कता बरतें, छाता, रेनकोट और जरूरी दवाइयां साथ में रखें। एवरीवन, मैं आपकी अपनी दोस्त हमेशा आपके साथ हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मौसम चाहे धूप का हो या बारिश का, अपनी सेहत और सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए, और जुड़े रहिए FM मुरादाबाद 89.6 के साथ, जहाँ पर खबरें भी पहुँचती हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, मैंने आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आज की मॉर्निंग, चलिए एक बार और मालूम कर लेती हूँ। शायद हमारे श्रोताओं को पता हो लेकिन वो सुन ना पाए हो, तो मैं आपको बता देती हूँ बिना किसी देरी के एक प्यारा सा सवाल। दोस्तों, गुलाबी रंग की पहचान रखने वाला भारत का वे कौन सा शहर है जिसे पूरी दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है? जल्दी से अपना जवाब पहुंचाइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके प्यारे प्यारे जवाबों का। और हमारे पास यहाँ पर तमाम मैसेज आ गए हैं, पर हम उनको अभी शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंतजार और करवाएंगे आपको। चलिए अभी सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप अपने राइट आंसर पहुँचाइए, अपने दिमाग की जो घोड़े हैं उनको थोड़ा सा कसरत कर लीजिए, थोड़ा सा दौड़ाइए। बैठे बैठे थोड़े से आप सोच रहे हैं कि क्या करें, तो दिमाग चलाएंगे ना आप, तो आपका जो माइंड है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो अभी सुनेंगे प्यारा सा गीत, पुराना है लेकिन बहुत प्यारा है।

दोस्तों, अगर आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो बता देती हूँ, मैं सबके चेहरे पर रहती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे सबके चेहरे पर, हाँ जी, खुशी फेस से झलकती है ना। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और दोस्तों, अभी हमने आपसे एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। जी हाँ, जी के चैलेंज का सही जवाब लगभग हमारे सभी श्रोताओं ने दिया है, सभी ने दिल खुश कर दिया हमारा। क्या बात है दोस्तों, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। और सबसे पहले हमारे पास राइट आंसर पहुँचाया था, ये हाँ, सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाया था राइट आंसर, ये हमें अलका वर्मा जी ने बुद्धि बिहार से, पिंक सिटी जयपुर। एग्जैक्टली राइट आंसर यही है दोस्तों। आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था गुलाबी नगरी, जी हाँ, गुलाबी रंग की पहचान रखने वाला भारत का भी कौन सा शहर है जिसे पूरी दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आंसर हमारे पास भेजा है अलका वर्मा जी ने, पिंक सिटी जयपुर, जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है शबीना खान जी का, ये भी राइट आंसर के साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं। कहती है मैम, पिंक सिटी है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली राइट डियर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास डॉक्टर विनीता सिंह जी ने मैसेज पहुँचाया है जयपुर। उसके अलावा अगला मैसेज हमारे पास आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, एवरी मॉर्निंग हम आपको सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद ग्राम बिजना से रिजवान खान जी, और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर। खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज हमारे पास आया है डॉक्टर अरोड़ा चंदन नगर मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अरे वाह, क्या बात है,

कि मेरी मसल्स भी गई हैं टुडे बेटी की, बेटी को कथक डांस की परफॉर्मेंस 15 जुलाई को है, तो वो भी गई हुई हैं अरिवा जयपुर। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से आपकी डॉटर को सर। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज आया है और ये मैसेज हमें पहुंचाती है संगीता जी। कहती हैं मैम गुड मॉर्निंग, राइट आंसर है जयपुर, कुपिंग सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो खुशी मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। लाइन पर सी मैसेज हमें पहुंचाती है लेकिन नाम नहीं बताती है, ये गलत बात है, ऐसे कंजूसी मत किया करो, देखो वरना हम आपके पैसे कट कर लेंगे थोड़े, ये मत किया करो आप। तो चलो दोस्तों, फिलहाल आज आपसे कनेक्ट होकर बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा और आप सभी ने सही जवाब हमें पहुंचाए। एंड आपके लिए दिल से मैं क्लैपिंग करना चाहूंगी, ये बहुत बहुत बधाई है एवरीवन, आपने बहुत अच्छे जवाब हमें पहुंचाए हैं। ऐसे ही बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 और अपनी सुबह को खूबसूरत बनाते रहिए खुशी के साथ। लेकिन फिलहाल अभी खुशी को दीजिएगा जाने की अनुमति, जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा ना, अगर जाऊंगी नहीं तो दोबारा कैसे आऊंगी। हाँ तो चलो अभी फिलहाल तो चलती हूँ, लेकिन 3 से 5 में जरूर मिलूंगी आपसे, मुलाकात करेंगे फिर से, अगेन सी यू सून, बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आने वाली है हमारे रेडियो पर, तो आप कहीं मत जाइए, लगातार सुनते रहिए, बने रहिए, चिपके रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। फिलहाल अच्छा तो हम चलते हैं, मिलेंगे आपको 3 से 5, नमस्कार।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: प्रस्तुत कर सकते हैं कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है, जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं सब कुछ होगा डिजिटल जाइए ईकेसीसी पोर्टल ekcc.nabard.org
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद से
1: संपर्क कीजिए
2: नियम और शर्तें लागू

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से। और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जब मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए, डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग टीडी का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो टीडी का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
0: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे, क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1 हजार की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आज पोलियो ड्रॉप हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
0: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
1: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
6: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे RJ आनंद को। प्रोग्राम में आप सभी का फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद, और आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक खास मेहमान को इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है। जरूर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का सबसे अनमोल हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम उन्हीं की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हीं जरूर बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय चंदा, कॉर्निया स्पेशलिस्ट CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए।
7: थैंक यू आनंद, मेरा नाम डॉक्टर संजय चंदा है
6: जी।
7: मैं CL गुप्ता आंखों के संस्थान में कॉर्निया डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हूं।
6: जी सर।
7: मेरी ट्रेनिंग LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में हुई, जहां पे मैंने हाई वॉल्यूम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी, रिट्रैक्टिव सर्जरी और कैटरेक्ट सर्जरी में काफी दक्षता हासिल करी है।
6: अरे वाह, ब्यूटीफुल। सर ने बहुत ही मतलब प्यार के साथ जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया है मुरादाबाद वालों को। तो सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको हमारे FM स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है, मुरादाबाद के रेडियो में आके कैसा लग रहा है आपको?
7: जी जी, मैं बहुत खुश हूँ, आज अपने आप को बहुत गर्व भी महसूस करता हूँ।
6: अरे वाह, वेरी नाइस,
7: हम आपसे जुड़ सके हैं और इसके जरिए हम बाकी लोगों से भी अपने प्रिय बाकी सबसे
6: खुशी। क्या बात है, थैंक यू सो मच संजय जी। सर आप यहाँ पर इतना कीमती समय निकल कर आए हैं डॉक्टर संजय जी। सर मैं आपसे यहाँ पर डेफिनेटली सवाल जवाब करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैंने अपने लिसनर्स के साथ किया था, उनसे मैंने साझा करी कि हमारी शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत चीज होती है हमारी आंखें, जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं ना, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले यही बताइए कि हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारी आंखें, जिनसे हम पूरी कायनात पूरी ये दुनिया देखते हैं खूबसूरत।
7: जी आपने बखूब कहा कि आंखें हमारी एक महत्वपूर्ण इंद्रियों में से है।
6: बिल्कुल,
7: और सटीक जानकारी समय पे चेकअप और अपनी सूझबूझ के जरिए हम अपनी आंखों की सेहत को लंबे समय तक अच्छी सेहत में रख सकते हैं। इन विषयों पे हम आपसे चर्चा करेंगे।
6: बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए हम साथ डॉक्टर संजय चंदा जी मौजूद हैं, आज आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स जब बात आती है हमारे CL गुप्ता इंस्टीट्यूट की, तो डेफिनेटली आंखों की बातें होना तो बनता है। फिलहाल डॉक्टर साहब आपका हम वंस अगेन वेलकम करेंगे, और लिसनर्स चलिए सर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अपनी रूटीन में डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए।
7: देखिए आनंद, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें आंखों की सेहत को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग नहीं देखना चाहिए।
6: ट्रू,
7: 100%। डेली अच्छी नींद लेना, पौष्टिक आहार करना, समय पे आंखों की चेकअप करवाना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय पे स्क्रीन पे काम करते हैं, वो अपनी आंखों को मसले नहीं और टाइम टू टाइम अच्छे ब्रेक ले, रिलैक्स हो। जो कड़ी धूप में आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, वो अपनी धूप में प्रोटेक्शन करें। बच्चे या युवा जो लंबे समय तक अपनी आंखों की चेकअप नहीं कराए, वो अपने रिफ्लेक्टिव करेक्शन की अच्छी जांच कराए। एट द सेम टाइम हमारे लिए ये भी जरूरी है कि आप पौष्टिक अच्छे खाना खाएं, जिसमें से विटामिन ए रिच जाए, जैसे दूध हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, या फिर वो सारे जो आंखों की सेहत के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें आती है कि जितने लाल पीले आपको फ्रूट्स या सब्जियां दिखे, जिनमें से पपाया, मैंगो, कद्दू, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं।
6: अच्छा, कैरेट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है?
7: जी जी, आपने सही कहा, कैरेट्स एक विटामिन ए रिच एक अच्छी सब्जी और अच्छी हमारी आंखों की हेल्दी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। टाइम टू टाइम इसका भी आप सेवन करते हैं तो हमारी आंखों को विटामिन ए की पर्याप्त परिमाण मिलती है, जिससे आंखें बिल्कुल सेहतमंद रहती है।
6: डॉक्टर साहब कहा जाता है गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो क्या सच में ये जेन्युइन है?
7: जी जी जी, गाजर में अच्छी परिमाण में विटामिन ए है, और विटामिन ए हमारे विजुअल साइकिल को बनाए रखने में बेहद मदद करती है। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है केवल गाजर ही नहीं, जो आपको गाजर ना मिले तो सारे लाल पीली सब्जियां जिसमें सारी भरपूर परिमाण में विटामिन ए होती है, उन सारी चीजों का, फ्रेश वेजिटेबल्स का, अच्छे से सेवन करिए, इससे आंखों की सेहत अच्छी बनी रहेगी।
6: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को, प्रोग्राम आपका फेवरेट है हेलो डॉक्टर। और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर संजय चंदा जी, जो कॉर्नियो स्पेशलिस्ट हैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में, हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाल के आए हैं और सवालों की जो ढेर सारी मैंने एक पूरी चिट्ठी रखी हुई है आपके लिए, एंड आई एम श्योर आप इन क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली देंगे। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मेरे नहीं है, हमारे लिसनर्स के भी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको पता है डॉक्टर साहब आजकल ना कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनमें चश्मे लगने का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या इसको रोका जा सकता है?
7: जी आनंद, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हमारा ये मानना है कि देखिए आज के बच्चे और युवा बहुत ज्यादा अपना टाइम लैपटॉप मोबाइल टीवी स्क्रीन पे बिताते हैं, तो इससे क्या होता है इनकी आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई, बाहर खेलना कूदना और ये वक्त बिताना उनका बिल्कुल कम हो गया,
6: कम हो गया है, राइट।
7: देखिए एक 2024 में जर्नल में आर्टिकल आई है जिसपे उन्होंने अनुमान लगाया कि 2050 तक लगभग आधी मानव जाति 50% ह्यूमन पॉपुलेशन चश्मा लेकर पहन के बाहर घूमते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ आप और हम जब सड़क चलेंगे हर दूसरे आदमी की आंखों में चश्मा होगा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के दिन अगर हम चाइना में देखें तो कक्षा 10 में पास होते हुए बच्चों में 100 बच्चों में से केवल 10 ही बच्चे ऐसे नॉर्मल होंगे जो बिना चश्मे से 90% चश्मे पहन रहे। और हमें उन देशों से भी सीखना चाहिए जो आर्थिक तरीके से पूरे सशक्त है, जैसे मैं ये उदाहरण देना चाहूंगा जैसे स्वीडन। आज से कुछ सालों पहले उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई कि वो पेपरलेस हो चुके और 100% डिजिटल रिवोल्यूशन को अपनाया, सारी पढ़ाई लिखाई जॉब और सारी चीजों में उन्होंने डिस्प्ले स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। आज के जमाने में जितने युवा निकले न केवल उनकी मेमोरी रिटेंशन कम हो गई, उनकी अटेंशन स्पैन कम हो गई और सारे सबको चश्मा लगना चालू हो गया। ये एक सरप्राइजिंग घटना है कि जिससे हमें सीख लेनी चाहिए कि एक्चुअली अब उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से ये नया मुहिम चलाया कि अब उनको वापस पेन एंड पेपर पे वापस जाना है। और एट द सेम टाइम हमें भी ये सोचना होगा कि इन सारे चीजों के पीछे अल्टीमेटली गोल क्या है, आप अपने मानव जाति को क्या चश्मे के साथ देखना चाहते हैं या उतना स्वस्थ देखना चाहते हैं। देखिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी ये कहती है कि कोई भी बच्चा अगर 2 साल से नीचे है तो उसकी स्क्रीन टाइम एब्सोल्युटली 0 होनी चाहिए, उसके हाथों में बिल्कुल कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर 2 से 5 साल के बीच में तो दिन में महज 30 मिनट या उससे ज्यादा नहीं। इसका रिलेवेंस ये कि देखिए एक्सेप्शंस भी है, आजकल वर्किंग वुमेन है अपने बच्चों को घर रख के जाते हैं तो अपने मम्मी नाना नानी से कुछ समय के लिए तो वीडियो कॉल में जरूर वो मिल सकते हैं।
6: एब्सोल्युटली।
7: और आगे की मुहिम ये कि हमारे सेल गुप्ता आंखों के अस्पताल में हमने मायोपिया क्लिनिक बनाई है। मायोपिया क्लिनिक में उन बच्चों को अब दिखा जाता है जिसमें उनके चश्मे चढ़ते हैं, उनके लिए हम ग्लासेस देते हैं ताकि वो 100% अच्छी रोशनी दिख पाए, न केवल वो रोशनी को अच्छा एंजॉय कर पाए पर हमारे पास वो सिस्टम है जिससे हम उन बच्चों को ढूंढ निकालते हैं जिनमें मायोपिया प्रोग्रेस होने की चांसेस है, जिसमें चश्मे के नंबर बढ़ने की चांस। ऐसे हालात में हम उनको अगर चुनिंदा बच्चों को DIMS जो कि डिफोकस इंड्यूस मायोपिक सेगमेंट ग्लासेस देते हैं, लो डोज एट्रोपिन की आई ड्रॉप्स देते हैं, इनसे दिखा गया कि आगे जाके उनके चश्मे के नंबर बढ़ने की तादाद कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मुझे पूछते हैं कि ये क्या तरीका रहेगा जिससे हम आंखों के नंबर कम कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन टाइम कम करना होगा, बच्चों को धूल मिट्टी धूप में खेलने देना होगा और जिनमें चश्मे चढ़ गए हैं उनको जरूर आंखों के चेकअप के लिए अस्पताल तक आंखों की स्क्रीनिंग या चेकअप के लिए आना पड़ेगा,
6: लगातार उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर विजिट करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही कमाल की जानकारी जो है आज आपको मिल रही है हमारे स्टेशन के जरिए। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, और आज हमारे साथ संजय चंदा जी मौजूद हैं स्टूडियो में जो ढेर सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपकी आई से जुड़ी आज हम बात कर रहे हैं। हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है हमारी आंखें जिस पर हम बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, तो आज बस उसी सारी प्रॉब्लम्स जो आप बड़ी क्वेश्चंस भी हमें भेजते हैं आज उन्हीं को हमने सोचा सर के साथ में जो है हम पूछेंगे और सर से उन सारे सवालों के जवाब लेंगे। इस वक्त सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर संजय जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसी बीच एक और सवाल लगातार आपको भी पता है मोबाइल लैपटॉप टीवी और तमाम सारी टेक्नोलॉजी जिस पर आजकल हमारा यूथ बहुत समय बिताता है, क्या लगातार हम जब स्क्रीन पे रहते हैं तो इससे हमारी आंखों पे कोई फर्क पड़ता है? जो मोबाइल की लाइट है, जो लैपटॉप की लाइट है, जो हमारी स्क्रीन की लाइट है, वो कैसे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है?
7: जी देखिए इसके 2 पहलू है।
6: जी
7: आजकल ज्यादातर लोग युवा या प्रोफेशनल लोग सभी ज्यादातर वक्त अपना डिस्प्ले मॉनिटर्स पे काम करते हैं।
6: बिल्कुल।
7: बच्चे कहिए वो स्कूल के होमवर्क या फिर प्रोफेशनल लोग करिए लंबे घंटों तक डिजिटल आई स्ट्रेन के शिकार है। डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वो स्थिति है जिसमें आप लंबे समय कंप्यूटर पे बिताने के कारण आपकी आंखें ड्राई हो जाती है, जैसे सूखापन, आंखों में जलन होना और धुंधलापन की शिकायत होती है। और यही जब लंबे समय तक चले तो आंखों में साथ साथ आपको सरदर्द होने लगती है, कंधे में दर्द, और इसके साथ अलग अलग तरह की शिकायतें आनी शुरू होती है आपको।
8: जी जी।
7: तो देखिए इसके दो पहलू है, पहली बात है एक तो मनोरंजन और दूसरी बात है जरूरत। आज अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर बच्चों ये एक लत लगी हुई है कि वीडियो गेम, कार्टून और इन चीजों पे वो बहुत जरूरत से ज्यादा वक्त बिताते हैं।
8: एडिक्शन होने लग गई है।
7: बिल्कुल बिल्कुल। और जरूरत एक ऐसी चीज है जिसमें हम चीजों को चाहते हुए भी अवॉइड ना कर पाए।
8: बिल्कुल।
7: क्योंकि जमाने के साथ साथ एडवांस रहने के लिए आप टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नकार नहीं सकते।
8: एब्सोल्युटली सर।
7: अब ऐसे हालात में हमारे पास एक ही तोड़ बचता है, जो लंबे समय तक स्क्रीन पे बचे हैं वो 20-20-20 रूल को फॉलो करें। हर 20 मिनट पे एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपकी आंखें जो कंस्टेंटली एक जगह स्क्रीन पे फोकस कर रही है वो साइकिल ब्रेक होगा। और देखिए आप और हम जैसे सहज भाषा में बात कर रहे तो हर मिनट में जाने अनजाने हमारी पलकें लगभग 17 या 18 बार ब्लिंक कर रही है।
8: ओके।
7: लेकिन जब हम ध्यान से एक ही जगह पे फोकस कर रहे हैं तो पूरे मिनट में केवल वो 2 या 3 बार ब्लिंक करती है।
8: करेक्ट।
7: इससे ये होता है कि आंखों के सामने आए हुए जो आंसू के परत है पूरी तरह से सूख जाते हैं और ये सारी समस्या उससे जुड़ी हुई है। आंखों का थक जाना, लाल हो जाना, बर्निंग सेंसेशन आना, ये सारी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की शिकायतें हैं। देखिए कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को डील करने के लिए या डिजिटलाइज स्ट्रेन को डील करने के लिए आपको नियमित आंखों की चेकअप की जरूरी होगी। अगर सूखेपन की शिकायत होगी तो आपको डॉक्टर के पास आके लुब्रिकेंट की दवाइयां इस्तेमाल करनी होगी, आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करना होगा। अगर डिस्प्ले यूनिट पे लंबे समय पर आप है तो ब्लू कलर ग्लासेस का इस्तेमाल करना होगा जो आपकी डिजिटलाइज स्ट्रेन को कम कर सकती है। इसके साथ ही आपकी सिटिंग पोजीशन जिसे हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स, आपकी स्किन की ब्राइटनेस इतनी कम होनी चाहिए कि आंखों को तकलीफ ना दे। सिटिंग पोजीशन ऐसी हो ताकि आपकी आंखों के लेवल से नीचे डिस्प्ले यूनिट हो। एक ही साथ अपने बैठने की कला, कंप्यूटर स्क्रीन को एटलीस्ट एक हाथ दूरी पे रखें, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अगर इन चीजों को बारीकी से हम ध्यान दें, आपके डिस्प्ले यूनिट या कंप्यूटर सिस्टम के आसपास मॉइस्चर बनाए रखने के लिए अगर ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें, और एक ही साथ हम ये भी ध्यान दें कि कोई तेज गति में चलता हुआ एसी या पंखा आपके चेहरे या आंखों पे डायरेक्टली हवा ना डाले, इन सारी चीजों को अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो डिजिटल आई स्क्रीन या लैपटॉप या स्क्रीन से आते हुए दिक्कतों को हम ओवरकम कर सकते हैं।
8: देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आपके साथ साझा करी है। लिसनर्स, इस वक्त आप आनंद के साथ हैं और ऐसी तमाम सारी जानकारियां जो है आज लगातार आपको मिलती रहेंगी इस प्रोग्राम में। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना सवाल 9837968। मेरे स्टूडियो का नंबर है, इस स्टूडियो के नंबर पे आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, आज हम सर से ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मानसून का मौसम है और ऐसे में जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारी आंखों के लिए हम है खतरनाक हैं, लेकिन हम अक्सर अवॉइड करते हैं। मॉनसून का मजा लेने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई बार हम बारिश से आते हैं, हमारी आंखें लाल होती है, हम अवॉइड कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मली पानी आंख में चला गया, इसलिए सच में मॉनसून में भी हमारी आंखों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
7: बिल्कुल बिल्कुल आनंद, आपने जो पॉइंट उठाया, मॉनसून और ये बारिश हमारे लिए सजा भी है और मजा भी।
8: ये तो टैगलाइन बनी, सजा और मजा।
7: जैसे मई जून के महीने में कड़ाके की गर्मी होती है और तुरंत बारिश,
8: राइट,
7: बारिश के बाद सडनली टेम्परेचर कम हो जाना, ऐसे ही माहौल में प्रचंड परिमाण में चारों और एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में ये वायरसेस का फैलना चालू होता है।
8: जी, जी।
7: इसमें सबसे कॉमन है वो एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस, जिसे भाषा में हम कहते हैं कि आई फ्लू। ऐसे जब लोगों को आई फ्लू हो जाए, आंखों में लाली होना, आंखों में पानी आना, सूजन आना और एक ही साथ में धुंधलापन होने की शिकायत होती है।
8: जी जी।
7: आई फ्लू एक ऐसी स्थिति है जिसमें छुआछूत की परिस्थिति रहती है।
8: ओके।
7: आपको ये ध्यान देना होगा कि इसी बरसात के मौसम में हम देखते हैं ज्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर कोई भी प्रतिष्ठानों में जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इनमें एक दो लोगों को अगर आई फ्लू हो जाए, साथ में सबको एक ही साथ वो देती हुई जाती है, एक के बाद एक सबको होता रहता है। इसका सबसे कॉमन कारण है ये कम्युनिकेबल डिजीज है। आपको इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होगी, बार बार आंखों को छूना नहीं है, हैंड वॉश करते रहना है, जिनकी आंखें लाल हो उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, उनके इस्तेमाल किए हुए तौलिए, गमछे या प्लेट, इन सारी चीजों को दूरी बनानी है, और अगर आंखें लाल के साथ होने साथ साथ आपको दर्द भी होता है तो डॉक्टर की चेकअप जरूर करानी है। कॉमन आई फ्लू के सिवा कुछ चीजें और है, जैसे लोग मैदानों में कीचड़ में अगर फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, ऐसे में कोई कीचड़ आंखों में आ जाए तो माइक्रोस्पोरिडियल कंजंक्टिवाइटिस, ये भी एक स्थिति है जो आंखों में रोशनी धुंधलापन और यही फ्लू जैसे लक्षण लाते हैं। अक्सर इन चीजों में डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो दो दिन से ज्यादा आंखों में दर्द दुखन लाली लाए, तो आप बेझिझक आपकी आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही मानसून का सीजन है जो हमें इस सारी चीजों में दिखते को मिलता है कि सबसे ज्यादा आंखें इन्हीं चीजों से परेशान रहती है।
8: देखिए मानसून में आप डेफिनेटली एंजॉय कीजिए, बारिश में भीगना सभी को पसंद है, आप जरूर भीगिए, आप चाय पकौड़ों का भी आनंद लीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी आंखों की हेल्थ का भी विशेष कर ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है और इसको रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने अभी आपके साथ बहुत सारी बातें साझा करी, तो उन बातों को अवॉइड नहीं करना है, ये बहुत ही काम की चीजें हैं। छोटी छोटी चीजें अक्सर हम इनको अवॉइड करते हैं, बट वही चीजें होती हैं जो बाद में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलें लेकर आ जाती हैं। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मेरा सवाल रहेगा, मोतियाबिंद और काला मोतिया, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या काला मोतिया बिना लक्षण के भी हो सकता है? कई लोगों में ये मिथ होता है कि नहीं, बिना सिम्टम्स के तो होगा ही
7: नहीं। जी जी जी आनंद, जब हम जन्म के साथ आते हैं कुदरती तौर पर हमारी आंखों की जो लेंस होती है वो बिल्कुल पानी की तरह स्वच्छ या पारदर्शी होती है, कांच की तरह, जिसमें 100% रोशनी आर पार जाती है और हमें साफ दिखता रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, लगभग 50 के दशक में वही जो पारदर्शी ह्यूमन क्रिस्टलिन लेंस है वो धीरे धीरे सफेद बनने चालू होती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो मोमबत्ती जैसी सफेद बनने लगती है। अब क्या होता है, जो पहले 100% रोशनी आंखों के अंदर जा रही थी, केवल 10% या 20% रोशनी पहुंच पाती है और इससे आंखों में धुंधलापन जाता है। यही है सफेद मोतिया या जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट एक बार उम्र के साथ बन जाए तो उसकी आई ड्रॉप, चश्मे, गोलियां और एक्सरसाइज से कोई इलाज नहीं हो पाता। इसका एक ही तरीका है कि आपको ऑपरेशन करा के सही चश्मों का इस्तेमाल करना। जबकि ग्लूकोमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों की ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। अक्सर ये प्रेशर से जुड़ी हुई हालात होती है जिसमें आंखों में टे हुए आंखों की प्रेशर जो बढ़ी हुई रहती है नसों को इतनी डैमेज कर देती है कि उसके रोशनियां कम हो जाती। अब सवाल ये कि ऐसी हालात में इसके कोई लक्षण नहीं होते
8: जी।
7: जब तक आपकी आंखों की रोशनी उतनी ना कम हो जाए कि आपको महसूस हो कुछ गड़बड़ हो, तब तक अपनी ये ग्लॉकोमा काफी आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए इसे थीफ ऑफ विजन भी कहा जाता है या रोशनी की चोर भी कही जाती है। हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि अगर आपके परिवार में कोई ग्लॉकोमा के पीड़ित है, जैसे मम्मी, पापा, भाई बहन, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आंखों की चेकअप करके ग्लॉकोमा को ढूंढने निकालना। और कोई भी व्यक्ति जो 40 साल की उम्र से ऊपर है उनकी नियमित साल में एक बार चेकअप जरूर हो, ताकि अगर ग्लॉकोमा उनमें छुपी हुई हो तो वक्त से पहले न केवल हम जांच से ढूंढ निकाले बल्कि सही इलाज करके उनको घटती हुई रोशनी से रोक सके।
8: डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने साझा करी, थैंक यू सो मच। एक और सवाल मेरे जहन में है, मैं चाहूंगा सीधा आपसे पूछ लेता हूँ बिना इधर उधर बातें घुमाए। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का जो मतलब आंखों की रोशनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो इसके पेशेंट होते हैं उनकी आंखों पर क्या इसका कोई फर्क पड़ता है सर? और कितने समय में उसको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए अगर वो मरीज इससे ग्रस्त है तो?
7: जी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों ही एक ऐसी परिस्थिति है जो उम्र के साथ लगभग सबको आती रहती है।
8: ठीक है,
7: अब ऐसी परिस्थिति में ये दोनों ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन आंखों की रक्त नलिका या फिर ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। डायबिटीज में छोटे छोटे ब्लड वेसल से लीक होने लगते हैं जिसके कारण पर्दों में या फिर रेटिना में खून के धब्बे आ जाते हैं। आंखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैकुला, पर्दे का एक अंग, उसमें सूजन आ जाती है जिसे डायबिटिक मैकुलर एडिमा कहते हैं। अक्सर प्रेशर बढ़ने के कारण खून की नसें जो अंदर में फट जाती है जिससे खून और रक्त प्रवाह रुक जाती है, इसे वास्कुलर ऑक्लूशन कहते हैं, जो कि ब्रांच रेटिनल वेन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूशन हो सकती है। आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको बीपी और शुगर की डायग्नोसिस बनी है, अगर आपकी नियमित चेकअप नहीं हुई, तो साल में एक दफा जरूर आंखों की पर्दे की चेकअप करें क्योंकि ये पर्दे को नुकसान देती है। और अगर पहले से ऑलरेडी आप डायग्नोस हो चुके हैं कि आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी या बीपी के कारण कुछ परिवर्तन आ चुके हैं, तो डॉक्टर के कहे अनुसार आपको साल में हर 6 महीने में या उनके कहे मुताबिक और ज्यादा चेकअप की भी जरूरत।
8: ओके, बहुत ही बेहतरीन। डॉक्टर साहब, अगर आंखों में चोट लग जाए या आंखों में धूल, केमिकल या कोई बाहरी चीज चली जाए तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए और इसका असर क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इस पे भी आप बताइए। जैसे कॉर्नियल अल्सर क्या है, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा।
7: जी जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है क्योंकि बच्चे और बड़े युवा सब में हमने कभी ना कभी आंखों में चोट को महसूस किया है। अब ऐसी परिस्थिति में सभी हम ये थोड़े हक्के बक्के रह जाते कि आगे हमें क्या करना है। देखिए, छोटे धूल कण और धूल मिट्टी आंखों में आ जाए तो उसे साफ पेयजल से आप इसे आंखों को साफ करिए। अगर इससे ज्यादा कुछ है, मान लीजिए आंखों में नुकीले कुछ चीजें चुभ गई है और उससे आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसमें आपको आंखों के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आना ही जरूर पड़ेगा ताकि आप इसे कोई जाने अनजाने में आंखों को कुछ एक्स्ट्रा नुकसान ना दे दे। देखिए केमिकल पड़ जाना भी बहुत एक स्वाभाविक तरीका है, जैसे बच्चे खेलते खेलते हुए फेविकॉल गिरा देते हैं, वॉल की पेंटिंग चल रही है वो टर्पेंटाइन ऑयल गिरा देते हैं, चूने आंखों में लगा देते हैं। दिवाली में हमने देखा कि सबसे ज्यादा उन्होंने कार्बाइड गन से अपनी आंखों को इंजरी किया। अक्सर बड़े अपनी वॉशरूम या टॉयलेट क्लीन करते हुए तेजाब आंखों में गिरा देते हैं। ये हर्पिक जैसी चीजें जिससे टॉयलेट क्लीन कर जाते हैं वो भी आंखों में गिर जाए तो बहुत खतरनाक नुकसान आंखों को दे सकते हैं। देखिए ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो बेझिझक आप अपने सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आंखों को ज्यादा समय तक एटलीस्ट 15-20 मिनट अच्छे से धोइए और बिना कोई वक्त गवाए आप एटलीस्ट डॉक्टर के चेकअप में आइए ताकि इसके जुड़े हुए आगे जो नुकसान है उसको हम तुरंत झेलने से बच सके।
8: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा करी। डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू, और सच में आप बहुत ही तमाम ऐसी खास जानकारियों और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज आप हमारे रेडियो के जरिए तमाम शहरवासियों को आप साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इंस्टीट्यूट का जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट टाइम और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट हमारे साथ शेयर किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब ये लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्या है, लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के उम्मीदवार कौन होते हैं और इसमें उन्हें क्या लाभ मिलता है, थोड़ा सा इसके विषय में भी आप बताइए।
7: जी आनंद, लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी वो प्रक्रिया है जिससे हम आंखों के सामने कॉर्निया की शेप बदल देते हैं। इसका मेन फायदा ये है कि जो लोग लंबे अरसे से चश्मा पहन रहे हैं,
8: हाँ जी,
7: और वो चाहते हैं कि वो अपने चश्मे हटाकर बिना चश्मे से अपनी पूरी रोशनी देख पाए। देखिए लोगों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, जैसे कुछ लोगों का शौक है कि मुझे स्विमिंग, हैवी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट खेलना है। कुछ लोगों के लिए ये जरूरी है कि मेरी शादी है, मेरी शूटिंग है जिसमें मेरा चेहरा सुंदर दिखना है। कुछ लोगों की ये जरूरत है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है आर्मी, डिफेंस, पुलिस, नेवी और मेरा एग्जाम फिट आया, लेकिन अब मुझे मेडिकल फिटनेस में इतना दिखाना है कि मेरी रोशनी बिना चश्मे से फुल 6x6 या 100% है। ऐसे हालात में उन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल एक नायाब तरीका है जिसमें हम लेजर की प्रक्रिया से आंखों की पुतली में ऐसी परिवर्तन लाते हैं जिससे आप जो भी माइनस नंबर हो, प्लस नंबर हो, उसे लेसिक पीआरके जैसी पद्धति से आपकी रोशनी को फुल बिना चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस से पूरी रोशनी दिलाने की प्रयास करते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि जो भी कैंडिडेट अपनी ये ऑपरेशन कराना चाहे वो अपनी आंखों की स्क्रीनिंग करे। इसमें हम मेनली ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी पुतली में उतनी ताकत है कि वो इस तरह के ऑपरेशन को झेल जाए। अक्सर पुतली के मोटापे पे ये निर्भर करता है। अगर वो लेसिक या पीआरके के लिए सुटेबल ना निकले तो उनमें दूसरी पद्धति जैसे आईसीएल जैसी पद्धति से हम पूरी रोशनी दिला सकते हैं। अक्सर इसके लिए ये जरूरी होता है कि उनकी उम्र 20-21 साल से ऊपर हो और पुतली में अच्छे मोटापे हो। सो लेजर डिफेक्टिव सर्जरी की पद्धति से हम उन सारे तमाम लोगों को वो नई उम्मीदें देते हैं जो लंबे समय तक कॉन्टेक्ट लेंस और मोटे चश्मे पहनकर थक चुके हैं और अपनी कॉन्फिडेंस और जिंदगी को वापस पाना चाहते हैं।
8: बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। डॉक्टर साहब मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, इसी बीच नेत्रदान बेसिकली क्या है और कौन है जो अपनी आंखों को दान कर सकते हैं और नेत्रदान से किस प्रकार के मरीजों को जो है मतलब लाभ होता है?
7: जी आपने ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए नेत्रदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों की मृत्यु के पश्चात वो अपनी आंखें किसी और को दान दे जाते हैं ताकि उनकी जिंदगी में दोबारा रोशनी बन सके।
8: बिल्कुल।
7: देखिए भारत में आज के दिन लगभग 13-14 लाख लोग ऐसे हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के शिकार है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक ऐसी अंधता है जिसमें आंखों की काली पुतली जो पारदर्शी होती है उसमें किसी प्रकार की सफेदी आ जाती है। वो अलग अलग कारणों से हो सकती है, कभी घाव लग जाना, चोट लग जाना या जन्मगत आए हुए कुछ कृत्रिम या विकृतियों के कारण उनकी आंखों की पुतली स्वच्छ नहीं रह पाती। देखिए नेत्रदान कोई भी कर सकता है मृत्यु के पश्चात। इसके लिए कोई भी उम्र का, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला, कोई भी लिंक हो, इसमें किसी तरह की परहेज नहीं होती। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1919 पे आपको फोन करना है। वो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर से जो कोऑर्डिनेटर होते हैं आपके सबसे नजदीकी आई बैंक को सूचित करते हैं। जब भी आपके प्रियजनों की किसी मृत्यु होती है तो आप उनसे संपर्क करें। जो नजदीकी आई बैंक के टेक्नीशियन है वो बेझिझक आपके घर पहुंच जाएंगे और हम आपकी आंखों में से कॉर्निया, केवल नेत्रदान में हम आंखों की कॉर्निया को ही लेते हैं जिसमें चेहरे में किसी किस्म की विकृति नहीं होती, ना ही कोई खून बहता है और ना ही चेहरा खराब लगता है। ऐसे हालात में आए हुए उन दो पुतलियों से हम एटलीस्ट दो लोगों की जिंदगी को नई रोशनी दे सकते हैं। अब ये नेत्रदान के फायदे उन लोगों को होता है जो कॉर्निया रिलेटेड ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं। तो नेत्रदान एक महादान है बाकी सब दानों में, जिसमें हमारी आज के दिन में जो इंडिया की मौजूदा स्टेटिस्टिक्स है, इसमें साल में 30,000 से ज्यादा नए पुतली की जरूरत वाले मरीज जुड़ते चले जा रहे हैं, जबकि ट्रांसप्लांट केवल 20 या 25 लोगों को हो पा रहा है। तो नेत्रदान की आज के दिन में हमें बहुत आवश्यकता है, जिसमें लोगों की जागरूकता कम होने के कारण हम इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आग्रह करूंगा कि वो नेत्रदान के विषय में अपनी जागरूकता बढ़ाए और अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1919 पे जरूर कॉल करें, ताकि एक अंध व्यक्ति की जिंदगी में हम दोबारा कॉर्निया ब्लाइंडनेस से जुड़ी हुई तक उन कमियों को कमियों को निकाल के हम उनकी अच्छी रोशनी दिला सके।
8: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जो है एक संदेश भी था सोशली लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छा आपने जो है कहीं ना कहीं इसको ये भी आपने एक संदेश दे दिया कि सिर्फ आंखें हमारे लिए नहीं होती, हमारे जाने के बाद किसी और की जिंदगी को भी वो रोशन कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कर दिखाइए कुछ ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो वो चीज आप भी कर सकते हैं, बस जरूरत है सही जज्बे की, है ना। और डॉक्टर साहब इसी बात के साथ मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, कॉर्निया प्रत्यारोपण के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कॉर्निया प्रत्यारोपण या कॉर्निया ट्रांसप्लांट के विभिन्न तकनीकों में कौन सी एक ऐसी नेत्रदान और कितने मरीजों को इसका लाभ हो सकता है?
7: जी देखिए, आधुनिक उपकरणों से आज के दिन नेत्र प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज के दिन हम केवल ये चुनना चाहते हैं कि जिनकी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है पुतली की कौन सी लेयर उसमें प्रभावित है, जो परत प्रभावित है हम सिलेक्टिवली केवल उसी परत को बदलने की काबिलियत रखते हैं। मान लीजिए कोई मरीज है, बचपन में लगे हुए चोट के कारण उनकी जो सफेदी है केवल आगे की लेयर पे है, ऐसे परिस्थिति में हम एंटीरियर लेमेला केराटोप्लास्टी करते हैं, जिनमें पहले हो चुके मोतियाबिंद ऑपरेशन या पुतली की अंदरूनी लेयर जिसे एंडोथेलियम कहते हैं उसकी कमजोरी के कारण अंदरूनी लेयर में कुछ कमजोरी आ गए, तो सिलेक्टिवली केवल 10 से 15 माइक्रोन की अंदरूनी लेयर बदलते हैं जिसे एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कहते हैं, जिसके तरीके डिसेक डिमेक हो सकते हैं। और जिनको पूरी कॉर्निया टोटली आपकी सफेद हो चुकी है या पूरी के सारे लेयर्स पड़ चुके हैं उनके हम फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करते हैं। तो एक दान में मिली कॉर्निया से आगे की लेयर से हम एक आदमी की आगे की परत को बदल सकते हैं, उसी दान में मिली पुतली की पीछे के लेयर से एक दूसरे बंदे की पीछे खराब हुई लेयर को बदल सकते हैं, अब उनके दान में मिली पुतली में जो स्टेम सेल होते हैं उससे किसी ऑकुलर सर्फेस रिकंस्ट्रक्शन में भी हमें मदद मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर समझे कि एक पुतली एक कॉर्निया से शायद हम दो से ज्यादा लोगों की जिंदगी में उजाले की उम्मीद रख सकते हैं।
8: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर संजय चंदा जी जो कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, तमाम जानकारियां उन्होंने आज आपके साथ हमारे मुरादाबाद के लिसनर्स के साथ साझा करी। इनफैक्ट मुरादाबाद के बाहर भी लोग हमें सुनते हैं, तमाम सुनने वालों के साथ ये छोटी छोटी जानकारी जो शायद मुझे और आपको पता भी नहीं थी वो तमाम जानकारियां आज डॉक्टर संजय जी ने हमारे साथ साझा करी। सर आपका FM मुरादाबाद RJ आनंद दिल से थैंक यू करता है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वंस अगेन वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके एंड बहुत अच्छे से आपने इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया। जाते जाते हमारी तमाम मुरादाबाद की जनता को या जो लोग हमें मुरादाबाद के बाहर भी सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे जाते जाते, अपनी ओर से कोई एक मैसेज जो आपको लगता है बहुत जरूरी है जनता के लिए?
7: देखिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि आंखें और ये विजन की सेंस एक दुर्लभ इंद्रियों में से है जो हमारे पास एक बहुत बेशकीमती है। अब हमें इस चीज की जिम्मेदारी अपनानी होगी कि आपकी रोशनी के लिए आप अपना बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखें और साथ ही में समाज में जो लोग डिप्राइव्ड है जिनकी रोशनी कम है उनके प्रति भी थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाए। नेत्रदान जैसी चीजों को आप बहुत ज्यादा बढ़ावा दीजिए। हम ट्रांसप्लांट करने में सक्षम है लेकिन हमें ट्रांसप्लांट के लिए उचित परिमाण में कॉर्निया नहीं मिल पा रही, जिसके लिए सोशल अवेयरनेस एक बहुत जरूरी चीज है। आप जितनी ज्यादा अवेयरनेस करेंगे उतनी ज्यादा हमें आई डोनेशन मिलेगी, उतनी ही ज्यादा जिंदगियों में हम रोशनी भर पाएंगे। और जब जब हमें मायोपिया लेसिक लेजर रिफ्रेक्टिव सर्जरी इन सारी चीजों की जरूरत होगी आप जरूर याद करिए, वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट के साथ सीएल गुप्ता आंखों के इंस्टीट्यूट में ये सारी उपलब्धियां हैं और आप हमसे जरूर मिले जब जब आपकी ये जरूरत होगी, हम आपको बेशक बिल्कुल दिल से पूरी सर्विसेज देंगे। और इसके साथ आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार और मैं सबको सभी स्वस्थ रहे अच्छे रहे, आपका दिन शुभ हो।
8: थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय चंदा जी, कॉर्निया स्पेशलिस्ट सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में मौजूद थे। डॉक्टर संजय चंदा जी का हम दिल से थैंक यू करना चाहते हैं। आज तमाम जानकारियां उन्होंने एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के माध्यम से हमारे तमाम लिसनर तक पहुंचाई, ये छोटी छोटी जानकारियां। मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको ये जानकारियां जरूर पसंद आएंगी और डेफिनेटली आप इन जानकारियों को अपनी लाइफ में जरूर ऐड करेंगे। श्रोताओं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, अक्सर जैसे कि मैंने पहले भी कहा भूल जाते हैं, तो हमें इन जानकारियों को बिल्कुल नहीं भूलना है। और जैसे कि डॉक्टर संजय चंदा जी ने बहुत ही उपयोगी जानकारियां आपके साथ साझा की, आंखों की देखभाल के बारे में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी बातचीत डेफिनेटली पसंद आएगी श्रोताओं। तो आप अपनी आंखों का और भी बेहतर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे जाने की इजाजत, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक छोड़ के जा रहा हूं। वंस अगेन थैंक यू करना चाहता हूं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट सेशन हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर संजय चंदा जी, आपका भी दिल से थैंक यू। सो गाइस चलिए बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नए सेगमेंट में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
5: ओहो ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
6: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे एफएम मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
4: पहले कनेक्शन तो एक हो जाए।

0: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
0: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
1: हाँ, यही कहने वाली थी मैं।
0: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
1: और स्टूडियो में है ना तभी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
0: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गाँव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गाँव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियाँ सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि

0: हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। आजकल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना। हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
0: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
1: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। 2 साल के बाद हरियापुर गाँव में फिर से वो गाँव हरा भरा लगने लगा, नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
0: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
1: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
0: वो हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल, जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
0: हाँ, बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
1: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों,
0: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
1: बिल्कुल,
0: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
1: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है,
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती थी वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पे कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपनी प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते हैं ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते हैं, पानी ऐसे बहा देते हैं जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इंजनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो वो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट होता है। वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से यू आर लिस्निंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी, साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा के वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों के वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए,
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: This side Arjuna FM मुरादाबाद 89.6 और हम फिर से लेकर आ गए आप सभी के लिए महिला मंच। आपको ही पता है कि रीना अकेली नहीं आती है मेरे साथ।
4: आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। और बहुत ही खूबसूरत है हमारे शो का नाम महिला मंच, और इस महिला मंच में हम फिर से हाजिर हो गए दोनों। हाँ जी रीना जी, और खुशी तो आपके साथ रहती ही है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय जो है, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही खास है, जहाँ हम बात करते हैं समाज और जिंदगी से जुड़े उन मुद्दों की जो घर से जुड़े होते हैं। आज का विषय हमारा है लड़कियों की जिंदगी बचपन से शादी तक।
5: बिल्कुल सही कहा तुमने। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई लड़की 25 साल की होती है, घर परिवार और समाज की बातें शुरू हो जाती हैं। अब तो शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई है।
4: हाँ यार, ऐसा मैंने भी सुना है अक्सर आसपास में। धीरे धीरे ये बातें तानों में बदल जाती, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और लड़की भी सोच में पड़ जाती, क्या सच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ शादी ही है।
5: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हम समझेंगे कि एक लड़की की जिंदगी में बचपन, पढ़ाई, सपने, शादी और

0: शादी के बाद की जिम्मेदारियाँ किस तरह से बदल जाती हैं।
1: बचपन और सपनों की दुनिया। हर लड़की का बचपन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी भी बच्चे का। वो भी सपने देखती है, डॉक्टर बनने का, टीचर बनने का, कुछ बड़ा करने का।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन कई बार समाज की सोच उसके सपनों को छोटा कर देती है। लड़कियों को अक्सर कहा जाता है, ज्यादा मत पढ़ो, आखिर शादी ही तो करनी है, घर का काम सीखो, यही काम आएगा।
1: लेकिन सच में ये तो कि हर लड़की को अपने सपने पूरे करने का हक है। अगर उसे सही मौका मिले तो वह अपने परिवार और समाज दोनों का नाम रोशन कर सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब हम बात करेंगे 25 साल और शादी का दबाव। महिला मंच में ही हम बात करते रहेंगे, बस श्रोताओं आप हमारे साथ बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। तो जैसे ही लड़की की एज 24 से 25 साल के आसपास होती है, घर घर में एक ही बात शुरू हो जाती है, अब इसके शादी कर दो। रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, सबकी नजरें लड़की की ओर और उनके परिवार पर होती हैं।
1: हाँ रीना, ये बात तो सही कह रही हो आप। कई बार तो ताने भी सुनने को मिलते हैं, अभी तक तो शादी हुई नहीं, लड़की घर में बैठी है। इन बातों से सिर्फ लड़की ही नहीं, उसके माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं।
0: लेकिन हमें यह समझना होगा कि शादी कोई मजबूरी नहीं बल्कि जीवन का एक बड़ा फैसला है, और यह फैसला लड़की की खुशी और उसकी इच्छा से होनी चाहिए। क्यों, सही कहा ना खुशी मैंने?
1: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद लड़की की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक घर छोड़कर उसे दूसरे घर में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, नया माहौल। कई बार उसे हर छोटे बड़े काम के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पूछ कर करना पड़ता है।
0: ये तो तुमने 100% सही बात कही है। ऐसे में लड़की को कई बार लगता है कि उसकी आजादी कम हो गई है, लेकिन अगर परिवार समझदार हो और लड़की को सम्मान दे तो शादी के बाद की जिंदगी भी खुशहाल और सुंदर हो जाती है। तो श्रोता हो, आप आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ यूं ही आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं लड़की की पहचान और आत्मनिर्भरता के बारे में। आज के समय में सबसे जरूरी है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो वह हर परिस्थिति में सामना कर सकती है।
1: एग्जैक्टली राइट रीना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शादी हो या ना हो, लड़की की पहचान सिर्फ किसी की बेटी, बहू या पत्नी होना नहीं है, उसकी अपनी भी एक पहचान है, उसके अपने सपने हैं। और समाज को ये समझना होगा कि लड़कियां बोझ नहीं बल्कि ताकत होती हैं।

0: अब हम जानने वाले हैं समाज के लिए संदेश। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियों को ताने देने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का मौका देना चाहिए। अगर हम लड़कियों को सम्मान और बराबरी देंगे तो समाज भी मजबूत बनेगा।
1: तो दोस्तों, आज हमने साझा की एक लड़की की जिंदगी, बचपन से लेकर शादी और उसके बाद तक की कितने बदलावों से गुजरती हैं। जरूरत है कि हम लड़कियों को समझने, उनका साथ दें और उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका दें, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा
0: लेते हैं और कल मिलेंगे हम सेम टाइम एंड सेम जगह।
1: तब तक के लिए साथियों, सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार
0: नमस्कार श्रोताओं।

याया ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित

0: के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो 6 लाख लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुछ नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
4: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हर बार की तरह हम इस महिला मंच में और भी एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और इस शो में मैं अकेली नहीं हूँ, मैं RJ रीना और मेरे साथ RJ खुशी है, जहाँ हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजिटल सुविधा की जो आने वाले समय में आपकी मेडिकल फाइल, आपकी जांच रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची और आपके इलाज रिकॉर्ड को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। क्या आपने कभी अस्पताल में पुरानी रिपोर्ट्स ढूंढने में परेशानी झेली है? क्या कभी डॉक्टर ने कहा कि पुरानी जांच फिर से करानी पड़ेगी क्योंकि रिपोर्ट्स नहीं मिली? अगर हाँ, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे आभा आईडी क्या है, क्यों बनाई गई, कैसे बनती है, क्या यह आयुष्मान कार्ड से अलग है, इसके फायदे क्या है, डेटा कितना सुरक्षित रहता है और इससे जुड़े कई मिथकों का भी सच जानेंगे। तो बने रहिए RJ रीना के साथ और RJ खुशी के साथ। RJ खुशी से जानना चाहती हूँ कि मैं आखिरकार आभा आईडी है क्या?
1: श्रोताओं, आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए, खुशी एंड रीना दोनों कुड़िया यहाँ पर आती हैं आपके लिए एवरी डे कुछ ना कुछ खास लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं आभा आईडी क्या होती है, रीना जी का सवाल है। तो और श्रोताओं, आपका भी यही सवाल होगा ना कि आभा आईडी क्या है? बहुत सारे श्रोताओं को पता है, कुछ ऐसे भी हमारे श्रोता है जिनको नहीं मालूम है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। साथियों, आभा आईडी का पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 अंकों की एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी है। यह आपकी मेडिकल पहचान बनाती है। इसके माध्यम से आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अब आसान उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है जिससे आपकी पहचान होती है, उसी तरह आभा आईडी आपकी स्वास्थ्य पहचान है। अब श्रोताओं, मेरा भी आपसे एक सवाल है, क्या आपने आभा आईडी का नाम पहले सुना था? अगर सुना था तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है? मैं आपको बताती हूँ, आप निश्चिंत रहो। मैंने कहा ना आपसे, जिनको मालूम है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी बल्ले बल्ले, क्योंकि हम उनको बताने वाले हैं आभा आईडी की जरूरत क्यों पड़ती है। पुराने समय में फाइल खो जाती थी, रिपोर्ट बार बार बनवानी पड़ती थी, इलाज का रिकॉर्ड अलग अलग अस्पतालों में बिखरा रहता था। डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए की गई है। सोचिए, अगर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक सुरक्षित डिजिटल खाते में उपलब्ध हो जाए तो इलाज कितना आसान हो सकता है। आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड में अंतर क्या है, ये बताने के लिए रीना यहाँ पर है। पर बताने से पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

तो देखिए श्रोताओं, हर दस्तावेज का अपना अलग अलग काम होता है। ठीक उसी तरह आप आईडी और आयुष्मान कार्ड में भी दो अलग अलग चीज है। नाम में आयुष्मान शब्द आने की वजह से बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानेंगे पहले आयुष्मान कार्ड के बारे में। सो हम सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। आयुष्मान कार्ड यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ा हुआ कार्ड है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है तो वह आयुष्मान कार्ड के माध्यम से तय नियमों के अनुसार कैशलेस इलाज

हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से व्यवस्थित रखने में मदद करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपकी अनुमति से उन्हें आसानी से देखा जा सके। तो शो आइए हम इसके कुछ मिथकों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और जानेंगे और भी ढेर सारी बातें। तो सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं। सुनते रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम आपका शो फेवरेट लेकर हाजिर हैं महिला मंच। आज हम बात कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में, आभा आईडी के बारे में और अभी हमने बात की थी मिथक के बारे में। तो दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, जहां नई चीज आती है वहां उसके बारे में तरह तरह की बातें भी फैलने लगती हैं। कोई कहता है ये सही नहीं है, कोई कहता है मत बनवाओ, तो कोई बिना पूरी जानकारी के ही दूसरों को सलाह देने लगते हैं। आभा आईडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज हम ऐसे ही कुछ मिथकों की बात करेंगे ताकि सही और गलत का फर्क साफ हो जाए। सबसे पहला मिथक है आभा आईडी बनवाने में पैसे लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में कोई कहे कि भाई आभा आईडी बनवानी है तो 300 या 500 रुपए लगेंगे, तो क्या आप मान लेंगे? असलियत ये है कि आभा आईडी बनवाना पूरी तरह निशुल्क है और अगर कोई इसके नाम पर पैसे मांगता है तो सावधान हो जाइए, हो सकता है वह गलत जानकारी दे रहा हो, आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। दूसरा मिथक है एवरीवन, ये सिर्फ आयुष्मान कार्ड वाले के लिए नहीं, ये भी पूरी तरह गलत है। मान लीजिए किसी परिवार में एक व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है और दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, क्या दूसरे व्यक्ति की हेल्थ हिस्ट्री महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है, इसीलिए आभा आईडी हर भारतीय नागरिक बना सकता है। अब तीसरा मिथक, सरकार मेरी सारी मेडिकल जानकारी बिना पूछे देख लेंगी। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन सच ये है कि आपकी स्वास्थ्य जानकारी पर आपका अधिकार होता है। किसी डॉक्टर या अस्पताल को आपका रिकॉर्ड देखने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत होती है, यानी फैसला आपके हाथ में है कि आप किसके साथ अपनी जानकारी साझा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से पहले सही जानकारी जरूर लें, जागरूक बनिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही निर्णय लेने में मदद करती है। रीना, आप मुझे कल एक महिला की कहानी सुना रही थी, तो हमारी श्रोताओं को भी उनके बारे में बताइए।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे फिर बताएंगे। तो श्रोताओं बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: क्या बात है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही शानदार गाने के बाद फिर से कनेक्ट हो गए हैं और एक छोटी सी कहानी जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए श्रोताओं, इस कहानी को हम शुरू करते हैं, यानी कि छोटी सी कहानी जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए श्रोताओं, इस कहानी को हम शुरू करते हैं, यानी कि मुरादाबाद के पास एक छोटे से गाँव में सीमा नाम की महिला रहती थी। दो बच्चों की माँ, घर की जिम्मेदारियां और खेत का काम। दिन कब शुरू होता था और कब खत्म उसे खुद भी नहीं पता चलता था। एक दिन उसके बेटे को तेज बुखार हो गया। वह उसे अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर ने पूछा, पहले कभी ऐसा हुआ था? कोई पुरानी रिपोर्ट्स हैं? सीमा ने बैग खोला, कुछ कागज थे लेकिन जरूरी रिपोर्ट घर पर रह गई थी। डॉक्टर को इलाज शुरू करने में थोड़ी कठिनाई हुई और कुछ जांच दोबारा करानी पड़ी। कुछ महीने बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई। उन्होंने लोगों को आभा आईडी के बारे में बताया। पहले तो सीमा ने भी सोचा, ये भी कोई नया कागज होगा, मुझे इसकी क्या जरूरत। लेकिन जब पूरी जानकारी मिली तो उसने अपनी आभा आईडी बनवा ली। कुछ समय बाद उसकी सास की तबीयत अचानक खराब हुई। इस बार अस्पताल में डॉक्टर ने पूछा कि क्या डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध है और परिवार की सहमति मिली। वहां डॉक्टर को इलाज समझने में सुविधा हुई। घर लौटते समय सीमा ने अपने पति से कहा, अगर हमें पहले सही जानकारी मिल जाती तो शायद पिछली बार इतनी परेशानी नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम समय रहते सही जानकारी ले, डिजिटल सुविधा तभी उपयोगी होगी। तो श्रोताओं, जब हमें सही जानकारी होगी तभी हम अपने सारे काम आसानी से करवा पाएंगे। इसीलिए आभा आईडी आयुष्मान कार्ड बनवाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: तो दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए। दोस्तों, आज हमने जाना आभा आईडी केवल एक कार्ड नहीं बल्कि भविष्य की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव है। यदि आपने अभी तक आभा आईडी नहीं बनवाई है तो सही जानकारी लें और अधिकृत माध्यम से इसे निशुल्क बनवाएं। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसी तक को भी ये जानकारी पहुंचाइए। मैं अब आपसे लेती हूं जाने की अनुमति। मिलेंगे हम अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
0: सुनते रहिए
1: FM मुरादाबाद
0: 89.6।
1: रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहिए।
1: बाय बाय,
0: टेक केयर।

0: है।
1: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
4: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
4: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
5: मुरादाबाद
3: से संपर्क कीजिए।
4: नियम और शर्तें लागू।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सस्तीकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश, जहां गाने सिर्फ बजते नहीं है, दिलों को कभी रोमांटिक, कभी इमोशनल, तो कभी फुल ऑन मस्ती। बस जरूरी यह है कि हर पल को मुस्कुराकर एंजॉय किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, किसी को भी नहीं पता होता है नेक्स्ट पल कैसा होने वाला है, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम है किसी को। तो जो पल हमारे पास है, जो टाइम हम जी रहे हैं, उसको क्यों ना हम हैपनिंग बनाएं, यूटिलाइज करें उसको। जब हम खूबसूरत बनाएंगे तो आने वाला टाइम भी खूबसूरत ही होगा। और हमारे साथ में हमारे कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप भी अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं आज, तो मुझे बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हैं

0: जाते हैं और बढ़िया हो जाते हैं।
1: जी आपने कहा कि आज काफी समय के बाद आपका कॉल लगा है, बहुत प्रयास करते हैं कॉल लग नहीं पाते हैं, लेकिन आज आपने डिसाइड किया कि आज मेरा फर्स्ट कॉल होगा और देखिए जो आपने सोचा वही आपके साथ हो रहा है।
0: बिल्कुल हुआ।
1: कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है और आपने मेहनत की।
0: मेहनत का फल तो है ही सुबह ही प्यास बुझाई बाबल की किताब में थी वो हमारे जमाने में कविता।
1: जी जी जी कौन सी कविता थी जरा सुनाइए हमें।
0: वो कौवे वाली कविता थी, वो कंकड़ डालता था गागर में।
1: हाँ।
0: तो कहानी ऊपर आता था।
1: जी जी जी जी तो, वो कहानी मैंने भी पढ़ी है।
0: तो आप भी ज्यादा एजेंट हैं क्या?
1: नहीं नहीं नहीं सर, लेकिन वो बुक में आती थी ना स्टोरीज वगैरह हम लोग पढ़ते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अगर हमें जहाँ से सीखने को मिलता है ना तो सीखना चाहिए, फिर फर्क नहीं पड़ता कि क्या उम्र है हमारी।
0: जी जी जी तो अच्छी बात है, तो सीखना चाहिए।
1: हाँ जी
0: बढ़िया जी। वो पुरानी जो किताब है थी अब्बल की एक, दुम की दो, तीसरे की तीन,
1: जी
0: तो बहुत सारी कविताएं ऐसी थी कि वो हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ही बोला, दिलवा दे मां मुझे उनका एक मोटा एक भी बोला, दलसन चलती हवा रात हुआ जाड़े से मरता हूँ, टिटुर टिटुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ।
1: बहुत खूबसूरत है।
0: माँ ने जवाब दिया, कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी दो फुट मोटा, बड़ा एक दिन हो जाता और किसी दिन छोटा, अब तू ये बात बता तेरी नाप किस रोज लेवाए, समझे?
1: जी
0: माँ बेटा बोला सीधे एक झिंगोला माँ जो हर रोज बदन में आए। हाँ तो ये कविता भी बहुत शानदार थी उस जमाने में, रविदास के दोहे होते थे।
1: हाँ जी
0: हाँ जी हाँ जी। तो आप सुना दो गाना आज फिर कुछ।
1: हाँ बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
0: आज तो खुशी में सुना दो राजा जानी फिल्म का।
1: अच्छा
0: एबीसीडी छोड़ो।
1: ठीक है सर सुनवाते हैं गाना आपको।
0: हाँ एबीसीडी छोड़ो मैंने सुना जो।
1: ठीक है आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद सर।
0: आपको भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कॉल लगाते रहिए, आपका भी कॉल लग जाएगा। खुद पर यकीन रखिए, मेहनत करते रहिए, बाकी हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका और प्रार्थना भी कर रहे हैं ईश्वर से कि आपका कॉल भी लग जाए।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं आपके साथ आपकी खुशी, आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ। हेलो फरमाइश, जी हाँ, ये फोन इन कार्यक्रम है। एवरीवन, आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, अपने फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा। जो मोबाइल इस वक्त आपके हाथ में है, हाँ जी, उसी पर हमारा मोबाइल नंबर आपको डायल करना है। और जब आप नंबर डायल करेंगे तो सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और मेरे साथ में अभी नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
1: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर सोना मार्ग।
0: जी बताइएगा, कश्मीर से आप बात कर रहे हैं सर, कैसा मौसम है वहाँ का?
1: आज यहाँ मौसम बहुत गर्मी है, कल यहाँ पे पानी बहुत बरसा था।
0: कल बारिश हुई थी?
1: हाँ, कल दो दिन से बारिश था, आज यहाँ मौसम अभी धूप है, बहुत धूप।
0: अच्छा, ओके, आज गर्मी हो गई है, कल मौसम बहुत अच्छा था, बारिश थी, तो कैसा लग रहा है? मतलब परिवर्तन होता है, कभी तो ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है।
1: जब यहाँ बारिश पड़ता है तब ठंड हो जाता है, जब धूप आ जाता है फिर गर्मी भी आ जाता है।
0: जी जी जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर मौसम का लुत्फ उठाना चाहिए, चाहे बारिश हो या गर्मी हो।
1: जो जी भी बारिश वगैरह आता वो खेत के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: हाँ जी हाँ जी, फसलों के लिए अच्छा रहता है।
1: मक्का के दिल्ली
0: जी जी जी जी बिल्कुल, फसलों के लिए भी वर्षा बहुत जरूरी है, बारिश जरूरी है। और मुझे लगता है कि बारिश के साथ साथ धूप भी जरूरी है, दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है।
1: मैडम, धूप भी आ जाएगा तभी मौसम अच्छा लगता है।
0: जी जी जी बिल्कुल सर, बताइएगा, आज आपने कॉल किया है तो क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं सर?
1: आपकी पसंद है?
0: अच्छा, ठीक है सर, सुनवाते हैं आपको हम साजन मूवी से एक प्यारा सा गीत। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: आपका भी
0: धन्यवाद। ठीक है सर, अपना ध्यान रखिए अच्छे से और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। तो दोस्तों, अभी सुनते हैं कुमार सानू जी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में, प्यारा सा ट्रैक, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम ही से करता है। और ये प्यारा सा गाना सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइए, हमें फोन लगाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराते हुए आप सब बहुत अच्छे लगते हैं।

0: एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाई एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश शो, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी साजन से, अलका याग्निक जी साथ में कुमार सानू जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गाना, मेरा दिल भी कितना पागल है, और ये गाना जितना खूबसूरत है ना, उतना ही खूबसूरत आप सभी का प्यार भी है। क्योंकि दोस्तों पता है, वो आपका जो प्यार है ना, वो हमें फोन कॉल के जरिए एंड आपकी फरमाइशें और आपके अपनेपन से भरी बातें यही एहसास दिलाती हैं कि हेलो फरमाइश सिर्फ एक रेडियो शो नहीं, बल्कि हम सब के दिलों को जोड़ने वाला एक प्यारा सा रिश्ता है। और आपका यही प्यार, यही अपनापन हमें हर दिन मुस्कुराते हुए आपके साथ जुड़ने की ऊर्जा एनर्जी देता है। एंड दिल से आप सभी का शुक्रिया एवरीवन इतने प्यार के लिए। और आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं अभी, राइट नाउ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बात करते हैं अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हाँ जी, कैसी हैं आप बताइएगा।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ दी, आप बताओ आप कैसी हो।
0: मैं भी ठीक हूँ, क्या नाम है आपका।
1: दी, मैं आपका बीकानपुर जिला मुरादाबाद से रुकैया फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा रुकैया, कैसी हैं आप।
1: बहुत अच्छे हैं दी, और आज मेरी कॉल लगी है तो मैं और ज्यादा अच्छी होगी।
0: अरे वाह, आप कब से ट्राई कर रहे थे कॉल लगाया आपने अभी।
1: वैसे तो दी मैं तो लगाती नहीं हूँ, ऐसा होता है ना कि मुझसे तो कॉल लग नहीं पाती अब। तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर से ट्राई कराती हूँ, तो वो एक ही बार में मुझे कॉल लगा करके दे देती है।
0: ओके, अच्छा कभी आपके हाथों से क्यों नहीं नंबर लगता है, वाई मतलब आप ट्राई करते हो तो क्या होता है।
1: यार पहले तो मुझसे लगता था, बट अब की बार पता नहीं क्यों नहीं लग पाता।
0: अच्छा ओके, तो आप अपने दी को बोलते हैं कि आप मुझे कॉल लगा कर दीजिए।
1: हाँ दी, वो लगा देती है
0: और कॉल लग भी जाता है ना।
1: और एक ही बारी में उनका कॉल भी लग जाता है।
0: ओके, तो उनकी मतलब उनका जो रेडियो के प्रति प्यार ज्यादा है क्या।
1: शायद दी, हो सकता है।
0: हाँ तभी तो एक बारी में उनका वो कॉल लगा लेती हैं। वैसे ये बताइएगा, अभी आपके परिवार में सब ठीक है।
1: हाँ जी, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप बताओ स्टूडियो में सभी कैसे हैं।
0: हाँ जी, स्टूडियो में सब बहुत ही अच्छे हैं, सारे प्रेजेंटर्स अपने कामों में व्यस्त हैं।
1: और भी बारिश हुई नहीं उधर।
0: नहीं बारिश तो नहीं हो रही है।
1: गर्मी तो नहीं हो रही ना।
0: गर्मी हाँ है,
1: बहुत ज्यादा है ना।
0: बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टूडियो में तो नहीं पता चलता है, जब बाहर जाते हैं तब एहसास होता है कि हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है।
1: हाँ जी, वैसे तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है।
0: तो आप बताओ डियर, आज क्या सुनना चाहते हो आप।
1: जी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड दरक्षा फातिमा के लिए।
0: हाँ बताइएगा।
1: मैंने साम साम रखे तेरे ध्यान जराते जोड़े।
0: ओहो हो, क्या बात है भाई।
1: जी वो ना मतलब उनसे मैंने अभी बात की थी। तो उन्होंने मैंने उनसे बोला कि आप कॉल करोगी ना रेडियो पे, तो बोली हाँ मैं भी करूंगी। तो देखो उनका कॉल अभी लगा नहीं है, मेरा लग गया।
0: अच्छा तो आप दोनों पहले डिसाइड करके रखती हो क्या।
1: हाँ जी, पहले हम लोग डिसाइड करते हैं उसके बाद कॉल लगाते हैं।
0: अच्छा तो फर्स्ट कॉलर आप ही हमारे, मतलब अभी आपने ही कॉल कर लिया है, तो आपकी फ्रेंड सुन रही होंगी, वो भी मुस्कुरा रही होंगी है ना।
1: हाँ जी वो सुन रही है। अभी बताया वो मुस्कुराती हुई बहुत क्यूट लगती है।
0: हाँ तो वो मुस्कुरा रही है, अब और ज्यादा मुस्कुराने लगी है आपने जैसे ही बोला। बताएगा
1: छोटी तारीफ नहीं कर रही हूँ, वाकई में मेरी दोस्त बहुत ज्यादा क्यूट है। और पता है वो दिल की तो इतनी अच्छी है ना, बहुत ही ज्यादा।
0: हाँ इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए।
1: हाँ
0: वो सबसे जरूरी है। अच्छा ये बताओ आप मुझे कि आज आपने कॉल किया है तो आपने पहले से डिसाइड किया था ये गाना, या अभी रैंडमली आपने डिसाइड किया है।
1: नहीं दी, मैंने पहले से तो डिसाइड नहीं किया था, बट अभी मैंने सोचा कि मुझे ये वाला सॉन्ग सुनना चाहिए।
0: अच्छा ठीक है, तो और कुछ कहना चाहते हो आप बताओ मुझे।
1: दी मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगी।
0: या ऑफ कोर्स, बताइएगा सुनाइए क्या कहना चाहती हैं आज आप।
1: मोहब्बत की शम्मा जला के तो देखो, मोहब्बत की शम्मा जला के तो देखो, जरा दिल की दुनिया सजा के तो देखो। तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा हमसे नजरें मिला के तो देखो।
0: अरे वाह क्या बात है, आज कैसे शायरी सुना दी आपने। आप तो बोलते हो कि मैम मुझे नहीं आती है शायरियाँ।
1: नहीं दी, मुझको आती नहीं है, बट बस मेरे दोस्त ने बोला तो उनकी बात में टाल नहीं सकती ना।
0: अच्छा ये बात है।
1: हाँ दी, उन्होंने बोला था तो मुझे सुनाना पड़ा।
0: देखिए दोस्ती का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है, उन्होंने कहा और आपने फटाक से रेडी कर लिया। हाँ हाँ ये सच्ची दोस्ती होती है, और इस दोस्ती को ऐसे ही हमेशा आप और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, एंड हमेशा खुश रहिए और ये प्यार से गाना सुनिएगा, ठीक है।
1: मुझे तो ऐसा लगता है जितने दिन बीतते जा रहे हैं ना, इतनी दोस्ती हम दोनों की गहरी होती जा रही है।
0: हाँ ऐसे ही होना चाहिए रिश्ते में।
1: तो आओ कुछ नाम और लेना।
0: हाँ हाँ श्योर बताइएगा।
1: मेरी सिस्टर है फिरोज फातिमा, और आसिया फातिमा, नजमा आती, राबिया आती और नरगिस आती है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड दरक्षा फातिमा,
0: ठीक है।
1: और सभी सुनने वाले।
0: ओके सभी के साथ सुनवाते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू दी, बाय
0: बाय, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। ये मौका आपको भी मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे खुशी जी तो सभी से बात कर रही है, हमारा कॉल कब लगेगा। तो आप ट्राई कीजिए, जब आप कोशिश करेंगे तभी तो आपका कॉल भी लग जाएगा ना।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है और मुझे पता है कि अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं. एंड देखो, सुनने के साथ साथ टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ. कभी आप सोच रहे हो कि अभी तो बहुत सारा टाइम है, जल्दी जल्दी से कॉल लगा लेते हैं. टाइम तो है लेकिन पता नहीं चलता कैसे कंप्लीट हो जाते हैं 2 घंटे. तो इसलिए बता रही हूँ, वक्त अभी हुआ है 3:42. आपके पास वक्त है, जल्दी से कॉल लगाओ. पता चला कि टाइम ही कम्प्लीट हो गया और आप सोच रहे हो, ओहो खुशी जी आज तो आपसे बात ही नहीं हुई है. तो ये मौका है, इसे मिस मत कीजिए, जल्दी से कॉल लगाइए. और अभी बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलर से. कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है, उनसे बात करके जानते हैं उनका नाम और कहाँ से बात करें वो सब पता करते हैं. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश.
0: हाय, क्या नाम है आपका?
1: हाय, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ. खुशी मैम से मेरी बात हुई काफी दिनों के बाद, से मैं और भी अच्छी हूँ.
0: थैंक यू सो मच डियर. अपना नाम तो बताओ, इतनी स्वीट सी आवाज है आपकी.
1: मैम कहते हैं कि मैं बागों की गुलगुल हूँ सबा में होना काम है मेरा.
0: वाह वाह वाह.
1: बागों की गुलगुल हूँ सबा में होना काम है मेरा. हिंदू मुसलमान एक है, लोगों को यही पैगाम है मेरा. और चांद सितारे करते हैं उससे बातें, इसीलिए तो शमा परवीन नाम है मेरा.
0: क्या बात है. वैसे आप मुझे बताओ, शमा चांद तारों से बातें करती हो? ओके अच्छा लगता है ना, मैं भी चांद से बातें करती हूँ.
1: करती हूँ बातें. और जब वो बादलों में बिल्कुल छुपी खेलता है, कभी आता है कभी जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है.
0: अच्छा लगता है. एग्जैक्टली. कभी मैं भी अकेली होती हूँ जब मैं आसमान की तरफ निहारती हूँ और चांद खूबसूरत सा अपना दीदार कराते हैं, तो हम भी उनसे कुछ बातें शेयर कर लेते हैं. अच्छा लगता है ना चांद को देखना.
1: बहुत अच्छा लगता है.
0: देखो हमारे और आपके कितने विचार मिलते हैं ना. आपको भी पसंद है चांद को देखना, मुझे भी पसंद है. मैं भी बातें करती हूँ, आप भी बातें करती हैं. और बताइएगा, सब खैरियत से हैं आपके यहाँ पर?
1: मैम बहुत ही अच्छी है और आपको हम सुन रहे हैं. आपकी जो बातचीत है बहुत ही अच्छी लग रही है.
0: थैंक यू सो मच, ये तो आपकी मोहब्बत है. और बताइएगा अभी आप क्या कर रहे थे कॉल लगाने से पहले?
1: कुछ नहीं मैम, बस आपको सुन रहे हैं, लेटेस्ट में नंबर ट्राई कर रहे थे और जैसे रुकैया फातिमा आपसे बात कर रही थी उसके बाद हमारी कॉल आ गई, हमें अच्छा लग रहा है.
0: ओके चलो, ये तो
1: फातिमा जी की लाइनें बहुत अच्छी लगी.
0: हाँ बहुत गौर से आप सुन रही थी, अब समझ में आ गया है हमें. यही तो होता है ना रेडियो का कनेक्शन, रेडियो से प्यार, कि हर एक बात को ध्यान से सुनना. तो बताइएगा आप क्या सुनना चाहती हैं आज?
1: मूवी का नाम रहेगा सनम बेवफा. गीत से बोल रही है, मुझे अल्लाह की कसम सुनकर प्यार हो गया.
0: इसमें तो कोई डाउट नहीं है डियर, आप प्यार तो बहुत ज्यादा करती हैं हमसे, ये तो हम जानते हैं.
1: और मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगी और रुकैया फातिमा जी को, निकल फातिमा जी को, अफरोज फातिमा जी को और लाइवा फातिमा जी को.
0: अरे वाह, इतनी सारी बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं आपकी, हमें बताया भी नहीं आपने.
1: निकल फातिमा जी से अक्सर कॉल करती है, बहुत प्यारी बातें करती है हमारे रेडियो नंबर पे.
0: ओके चलिए, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके डियर. आप भी अपना ख्याल रखिएगा और सुनिएगा प्यारा सा गीत.
1: मैम दो लाइनें कहना चाहूंगी.
0: हाँ जी इरशाद.
1: आप 5 लोगों के लिए कहना चाहूंगी. मैम कहते हैं कि अपनी नजरों से मुझको कभी गिरने ना देना, अपनी नजरों से मुझको कभी गिरने ना देना, मरना भी चाहूँ तो मरने ना देना. और बादशाह बना के रखेंगे अपनी जिंदगानी का, पर तुमने अपने दिल की गलियों से किसी को गुजरने ना देना.
0: क्या बात है भाई शमा, बहुत खूबसूरत.
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम. ऐसे ही प्यारी प्यारी सी लाइनों के साथ हमारे साथ हमेशा कनेक्ट हुआ करो. एंड बाय, टेक केयर, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. मोस्ट वेलकम, बाय
1: बाय.
0: तो चलिए एवरीवन, ये तो हमारी प्यारी सी लिसनर थी, इनसे बातचीत हो गई है. अब अगला नंबर आपका है तो जल्दी से कॉल लगाइए. आप मोबाइल नंबर है 9837896896 और सुनिएगा ये प्यारा सा गाना.

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई जिग करो स्वच्छता की जिद करो

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. शो चल रहा है हेलो फरमाइश. और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी सनम बेवफा से. मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया और आपको बहुत प्यार है एफ एम मुरादाबाद से, ये बात तो मैं जानती हूँ. और आप सोच रहे होंगे कि खुशी जी ये बात कैसे जानती हैं. श्रोताओं, आपके इतने सारे कॉल्स आते हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, तो उसी से हम समझ जाते हैं कि हमारे श्रोता हमसे बहुत प्यार करते हैं. और अभी भी देखिए कैसे कॉल लगाने में सभी श्रोता बिजी हैं. आप ऐसे ही ट्राई करते रहिए, आपका कॉल भी लग जाएगा एवरीवन. अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी सर. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका?
1: शाकिर बोल रहे हैं, करोला मुरादाबाद से.
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया. मैं आप सुनाइए कैसे हैं
0: आप? हम भी बहुत ही अच्छे हैं. इस वक्त कार्यक्रम में व्यस्त हैं. आप बताइएगा आप क्या कर रहे हैं अभी?
1: काम हो रहा है. मैम काम कर रहे हैं पीतल का.
0: अच्छा, पीतल का. दोबारा से बताइएगा.
1: पीतल का काम करते हैं, थाली और गिलास बनाते हैं पीतल में.
0: अच्छा ओके, तो हमारे लिए भी कुछ बनाइएगा सर. अरे थैंक यू, आपने कहा, दिल से शुक्रिया आपका. इतनी मेहनत आप करते हैं. और रेडियो से कब से जुड़े हैं, मतलब कितना समय हो गया आपको? कैसा लगता है कार्यक्रम में फिर मुरादाबाद के?
1: 3 साल हो जाएंगे मैम. रेडियो से मैं सुनता हूँ और कॉल को बहुत कम करता हूँ
0: ना. जी कॉल तो आप इसीलिए कम करते हैं ना ताकि और श्रोताओं को भी मौका मिले, राइट?
1: लगाते हैं ना तो लगता नहीं है, कॉल बहुत ही बिजी रहता है, तो काम में बिजी हो तो अपने कार्यक्रम सुनते रहते हैं.
0: जी जी, तो आज आपका कॉल लगा है, कैसा लग रहा है आपको बताइए हमें.
1: मैम बहुत खुशी की बात होती है, बहुत खुशी होती है,
0: बहुत खुशी होती है. चलिए ये खुशी आप हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिए. बताइएगा आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, इतनी खुशी का मौका है.
1: साजन मूवी का गीत सुनना मैम, तो शायर है.
0: आप शायर हैं? ओके. अच्छा शायरी वगैरह शायरियाँ करते हैं आप? शायरी वगैरह आती है आपको?
1: ना शायरी नहीं आती, वो सादा मिजाज़ी.
0: अच्छा अच्छा, तो बस गाना सुनने का शौक है आपको?
1: जी हाँ.
0: ठीक है, ये आपको गीत सुनवाते हैं. शुक्रिया आपने कॉल किया सर. मोस्ट वेलकम. तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज फ्रॉम द मूवी साजन से. मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए. आलस बिल्कुल भी मत कीजिए और हाँ ये मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि जो टाइम आपके पास अभी है वो दोबारा नहीं आने वाला है. तो अपने टाइम को यूटिलाइज करो यार, जल्दी से कॉल करो, मैं इंतजार कर रही हूँ. फिलहाल ये गाना सुनो.

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो चल रहा है हेलो फरमाइश, और अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। फिर से हम हाजिर हो गए हैं आपका फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश। और दोस्तों, जिंदगी में अगर मुस्कुराने की वजह ढूंढ रहे हो ना, तो अपने पसंद के गाने सुनिए। यकीन मानिए, दिल खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, क्योंकि गानों में ना वो मैजिक होता है जो आपके दिल को सुकून देता है और खुशी भी देता है, दोनों चीजें। तो इस मौके को ना आप भी मिस मत करो, फटाफट से मुझे कॉल करो। अभी मैं बात करती हूँ अपनी नेक्स्ट कॉलर से, जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दी।
0: हाय, क्या नाम है आपका?
1: मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही
0: हूँ। दरक्षा फातिमा, इतने प्यार से आपने बोला हेलो दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बताइए।
1: थैंक यू दी, मोस्ट वेलकम।
0: हाँ, इतने प्यार से आप बोलोगे तो कैसे नहीं खुशी को अच्छा लगेगा। बताओ, आपकी दिल की आवाज ना सीधा मेरे दिल तक आकर मतलब टच करके गई है।
1: हाँ मैम, आप तो आज तो तुम बिल्कुल बहुत अच्छी मेरे दिल की बात पकड़ ली हो एकदम।
0: हाँ चलो, कुछ तो काम आ रहे हैं हम फाइनली। बताइएगा आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी मैम, जिला मुरादाबाद ग्राम गोदी से बोल रही हूँ।
0: ओके, और आज बड़ा खुश है आप, क्या बात है, इतने चिक्स आपके जो पिंक हो गए हैं, इसका रीजन बताइए हमें।
1: नहीं, आज मेरी बेस्टी ने बात करी ना पहले। हाँ? मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: ओके, ये रीजन है खुशी का। हाँ
1: जी,
0: चलिए हमेशा ऐसे ही आप खुश रहिए, बताइएगा।
1: मेरी दो बेस्टी है ना, वो इतनी अच्छी बात करती है, कसम से आवाज गुंजा रही थी इनकी जब बात कर रही थी।
0: हाँ वो तो सही कह रहे हो आप,
1: इतनी बेस्ट बात करती है मैम, क्या बताऊ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रुकैया बात करती है। तो
0: वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ ना रेडियो का। हाँ मुझे पता है, पूरे घर में आपकी आपकी दोस्त की आवाज गूंजती है और आपको बहुत खुशी होती है और सबको भी सुनवाती है कि देखिए अम्मी कॉल आया है मेरी फ्रेंड का।
1: हाँ मैम, मैं अम्मी से बता दी हूँ कि अम्मी देखो मेरी दोस्त बात कर रही है।
0: हाँ हम समझ सकते हैं आपकी खुशी को।
1: मैम वैसे तो दोस्त बात करती है तो बहुत ही खुशी होती है।
0: राइट, लेकिन रेडियो पर जब कॉल करते हैं कोई हमारा प्यारा सा दोस्त और हमारे बारे में बताए तो और अलग मतलब खुशी होती है, अलग फीलिंग्स होती है। राइट
1: जी मैम, बिल्कुल।
0: तो आप बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहती हो?
1: आज मैं रुकैया फातिमा के लिए सुनना चाहती हूँ
0: जी,
1: तेरा मेरा रिश्ता पुराना।
0: ओके, और क्या कहना चाहती हो आप?
1: और मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह हमारी दोस्ती हमेशा यही कायम रहे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से भी यही प्रार्थना है। अच्छा ये बताओ कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो अभी?
1: मैं आपसे मैं बात कर रही हूँ और इस टाइम मैं बैठी हूँ बस।
0: अच्छा ओके, तो कॉल लगाने का पहले डिसाइड किया था कि पहले मैं लगाऊंगी या पहले मेरी फ्रेंड लगाएगी?
1: हाँ मैम, वैसे हमने दोनों में बात तो हो गई थी कि दरक्षा तू कॉल लगाएगी, मैंने बोला मैं कहिए तू कॉल लगाएगी, तो बोला हाँ दोनों लगाएंगे।
0: अच्छा अच्छा लगता है ना ये डिस्कशन आप लोग करते हैं, फिर कॉल लगाते हैं रैंडमली, जिसका भी कॉल लगता है फिर ध्यान से सुनते हैं।
1: हाँ मैम, हम मंदिर को कॉल लगाते हैं पहले, हम दोनों बात कर लेते हैं कि तुम और हम दोनों कॉल लगाएंगे।
0: हाँ।
1: तो इंशाल्लाह हमारी कॉल लगती है
0: जी। ये ना दिल से दिल का रिश्ता है और आप इतने प्यार से कॉल लगाती हैं तो देखिए आपका कॉल भी जल्दी से लग जाता है।
1: हाँ मैम बिल्कुल, एकदम कॉल लगता है मेरा भी और रुकैया का भी।
0: हाँ और कुछ कहना चाहते हो डियर, बताइए आप मुझे।
1: मैम मैं अपनी दोस्त को आई लव यू कहना चाहती हूँ।
0: अरे वाह, ये जो आई लव यू सबसे स्पेशल है।
1: हाँ मैम, अगर उनकी कॉल अब लगती है तो उसका जवाब मुझे मिल जाता, मगर मेरी कॉल बाद में लगी है ना।
0: कोई बात नहीं, इंतजार करो, आपको रिप्लाई भी मिलेगा।
1: हाँ मैम, वो मैसेज कर देंगी मुझे।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैसेज नहीं करना है उनको, नेक्स्ट वीक वो कॉल करके इजहार करेंगी इसका, ठीक है?
1: हाँ मैम, नेक्स्ट बार इजहार करेंगी तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: हाँ बिल्कुल, वो सुन रही होंगी तो जरूर कॉल करेंगी। बाकी मैं ये प्यारा से गाना आपको सुनवाती हूँ। थैंक यू सो मच आपने कॉल किया।
1: आई मिस यू मैम।
0: आई मिस यू टू।
1: बाय बाय
0: बाय। तो चलिए एवरीवन, हम सुनते हैं ये प्यारा से गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। अगर आप ऑन द वे कार में हैं इस वक्त सुन रहे हैं मुझे तो मुस्कुराइएगा, माना कि ऑफिस में बहुत काम था, आप थक गए थे, लेकिन अब प्यारी सी चेहरे पर प्यारी सी स्माइल भी कर दीजिए, ये थकान दूर हो जाएगी। और ये प्यारा सा गाना सुनो, मैं आती हूँ वापस अभी।

0: उठो नहीं, उठो नहीं, उठो नहीं,
1: लेटे रहो, लेटे रहो, जो भी हुआ लेकिन तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

0: देख रही हूँ, मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। तेरी सबसे वापस भेजी जगह वही है, एक ढूंढ तेरा इतनी बार इस्तेमाल करे।
1: मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिलें जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और राइट नाउ वक्त हुआ है अभी 4:16। आपके पास अभी बहुत सारा वक्त है, कॉल लगाइए जल्दी से, मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप चाय बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन कॉल लगा सकते हैं आप। अभी फिलहाल बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है?
1: दुनिया की सबसे
0: हाँ
1: प्यारी चाय पीनी है,
0: yes?
1: तो हमारे ऑफिस में आ जाइए।
0: ओके, और वो चाय कौन बनाता है सबसे प्यारी चाय, बताइए जरा हमें रीना जी।
1: आई डोंट नो।
0: ओ माय गॉड,
1: हमारी ऑफिस की
0: मैम।
1: यस
0: या, और उनका नाम भी
1: नहीं,
0: अच्छा ओके, ये छिपा के रखते हैं ना, राज को राज ही रहने देते हैं। चलो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
0: हाय, कैसे हैं आप? हाँ जी,
2: हम अच्छे हैं, बताइए।
0: मैं बहुत ही अच्छी हूँ। आपसे बात करके अपना गुड नेम भी बता दीजिएगा, इतनी प्यारी सी आपकी आवाज है।
2: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम।
2: मेरा नाम है स्वाति।
0: स्वाति, ओके, आप कहाँ रहती हैं स्वाति जी?
2: मैं 9th मुरादाबाद में रहती हूँ
0: जी। और बताइएगा, आप कह रहे थे कि मैं रात से प्रयास कर रही हूँ कॉल लगाने का, ट्राई कर रही हूँ, और अब जाकर कॉल लगाए तो कैसा लग रहा है आपको इतने ही टाइम के बाद?
2: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है,
2: मुझे छोड़ दी थी कि मुझे बात नहीं हो पाएगी।
0: OMG, यही नहीं करना था। क्योंकि कहते हैं ना, हाँ टेल मी।
2: मैंने सोचा एक बार और ट्राई करते हैं, अगर ठीक है तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं।
0: हाँ शायद मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई करने में क्या जा रहा है यार, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, है ना
2: जी।
0: और वही स्वाति जी ने किया, देखिए उनको सफलता भी मिल गई है
2: जी। हाँ, ये सबसे अच्छी बात लगी है
0: जी। तो बताइएगा कैसे हैं सब आपकी फैमिली में मैम?
2: बहुत अच्छे।
0: ओके, और पीछे बच्चे भी शरारती कर रहे हैं?
2: बहुत ज्यादा शरारती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा।
0: ओके, प्रीत भी शरारत कर रही है?
2: ये बाथरूम में पानी में खेल रहे

0: ओके मम्मा कितना भी डांट लें लेकिन बच्चों को असर नहीं होता है। वो कहते हैं मम्मा जितना हम डांटोगे हम उतनी शरारती करेंगी।
1: उतनी शरारती करेंगे।
0: बहुत नटखट होते हैं लेकिन बहुत प्यारे भी होते हैं।
1: जी ये तो है। अब इनसे पूरा टाइम कट जाता है, पूरा दिन पता नहीं चलता कहाँ कैसे चला गया।
0: हाँ या अच्छा लगता है। और आप बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहती हैं मैम?
1: हमें गाना सुनना है, बात बताओ ना बाबू जी, समझाओ ना बाबू जी,
0: अरे वाह ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं आपको।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और छोटी प्यारी सी बीबी का भी। ओके मैम नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय। इतना स्वीट बाय। थैंक यू। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा एवरीवन। मोबाइल नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस प्यारे सी गीत को भी सुनिएगा। बस मैं वापस आती हूँ लौट कर आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए एंड दिल से मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप दिल से मुस्कुराते हैं तो यकीन मानिए आधी टेंशन तो वहीं ख़त्म हो जाती है।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: हाय गुड इवनिंग माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने ये ट्रैक सुना है जवानी तो इश्क होना है। तो हमने कहा चलो हम जल्दी से वापस जाते हैं, अपने श्रोताओं से फिर से कनेक्टिविटी बनाते हैं क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं। खुशी जी अभी तक नहीं आए हैं, मैं आ गई हूँ और हमारे साथ में एक बड़ी प्यारी सी लिसनर भी कनेक्ट हो गई है, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग, कैसे हाल है आपके बताइए।
1: मेरे हाल बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हैं।
0: हाँ जी मैं तो अच्छी हूँ, आपकी मुस्कुराहट को फील करके और अच्छे हो गए हैं।
1: बिल्कुल, मैं फ्रॉम प्रोग्राम से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से लाइव आज में बात कर रही हूँ, आपकी रेगुलर लिस्नर।
0: हाँ जी, लेकिन ये रेगुलर लिस्नर बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी है।
1: हाँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं सिर्फ थोड़ा। काफी टाइम बाद मेरी बात हो रही है, तो अच्छा फील हो रहा है मुझे।
0: हाँ वो आपकी मुस्कुराहट में ना झलक रही है वो खुशी, समझ रहे हो।
1: आज जब अपनी किसी से बात होती है और काफी टाइम के बाद बात होती है तो फिर अलग ही वाइब आती है। हाँ। और मेरी तो काफी लंबे टाइम बाद बात हो रही है,
0: वही ना,
1: महीने के समथिंग हो गया होगा।
0: या आई रिमेम्बर यार, और पता है जब इतने लॉन्ग टाइम के बाद बात होती है ना तो बहुत सारी चीजें हम सोच के रखते हैं, डिसाइड करते हैं ये बात करेंगे, ये बोलेंगे, वो करेंगे, लेकिन टाइम पर क्या होता है सब कुछ मिस कर जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा
1: मैं
0: होता है,
1: नहीं। मेरे मुंह में जो भी आता है मैं बोल देती हूँ बिना किसी बेझिझक के कि हाँ मुझे ये बात करनी यार।
0: अरे वाह, फिर तो अच्छा है यार, इतना सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: हाँ दोस्तों के सामने कभी सोचने की जरूरत पड़ती कि ये मेरे दोस्त है मैं इससे कैसे बात करूँ, क्योंकि वो तो अलग से हो गया ना कि हाँ हम थोड़ा सोच के बैठेंगे, और जहाँ पे बेस्ट फ्रेंड हो तो वहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं।
0: हाँ वो डायरेक्टली होना चाहिए, जो भी है दिल में साफ कह दो, है ना।
1: हाँ,
0: जैसे आप कह देती हैं
1: बिल्कुल, मैंने तो आपको बता दिया।
0: हाँ बिल्कुल, और बताइएगा फैमिली में सब कैसे हैं आपकी लाइबा।
1: मेरी फैमिली में सब बहुत अच्छे। आप बताइए, मुझे आपसे बहुत सारी शिकायत है, आपने मेरी कॉल नहीं रिसीव करी रात।
0: ओहो हम माफी चाहते हैं, आप अपनी शिकायतों को प्लीज थोड़ा सा अब स्किप कर दीजिएगा, अब तो हमने आपका कॉल रिसीव कर लिया ना, आप तो मान जाइए।
1: बिल्कुल मैं मान जाती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा ना, स्पेशल सा जो लगे कि हाँ लाए भाई एक स्पेशल लिस्नर है।
0: अच्छा तो बताइए क्या करना होगा। बोलो बोलो।
1: कुछ ज्यादा नहीं, जो मैं सॉन्ग बताऊंगी आपको वो सिंगिंग करना है बस, जैसे कि आपका फेवरेट सॉन्ग है।
0: अच्छा ओके, हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ, बट इतनी अच्छी आवाज तो नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है लाइबा।
1: नहीं नहीं वॉइस बहुत प्यारी है भाई, किसी से भी वोट करा लो यही बोलूंगी कि हाँ खुशी मैम की वॉइस बहुत प्यार, मुझे तो बहुत पसंद है आपकी।
0: तभी आप खींची चली आती हो ना सहारनपुर से सीधा मुजफ्फरनगर से सीधा मुरादाबाद।
1: मुजफ्फरनगर से सीधा मुरादाबाद। हाँ। मुरादाबाद से सीधा कपूर।
0: हाँ अच्छा ये बताओ आप मुझे कि अभी आपके यहाँ का मौसम कैसा है।
1: बहुत गर्मी है, दो दिन पहले काफी अच्छा मौसम था, हाँ लगा बारिश हो रही है तो सर्दी आ गई, लेकिन वही वाली बात है ना, जुलाई है तो वो सर्दी नहीं आने देगी।
0: अभी तो ऐसा ही वेदर रहेगा, कभी बारिश हो जाएगी तो कभी गर्मी हो जाएगी।
1: हाँ मुझे थोड़ा गर्मी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी क्या कहता है कि मंथ चल रहा है तो
0: मैनेज करना पड़ता है। हाँ
1: हाँ मैनेज कर रहे हैं बस,
0: कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है ना, प्रकृति के साथ हमें खुद को चेंज करना पड़ता है। मानसून तो स्टार्ट है, मानसून में ना ऐसा ही होता है, कभी तो गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, फिर लोग कहते हैं लाइबा कि ओहो बारिश बस अब बंद कर, बस कर यार बंद हो जा, इतना तो इतना ही बारिश हो जाती है कि घर से बाहर निकलने के लिए मुश्किल हो जाती है।
1: हाँ मेरे यहाँ पे सेम यही कंडीशन थी, कितनी बारिश थी ना कि मुझे मतलब मेरा दो दिन भी लाइब्रेरी ऑफ था और मुझे भी लगा कि हाँ बारिश नहीं रुकेगी, लेकिन वही है फिर सेम मौसम जैसा हो गया। आपको कौन सा वेदर पसंद है वैसे।
0: मुझे तो हर वेदर पसंद है, एक्चुअली डिपेंड करते हैं। हाँ मुझे हर मौसम में ढलने की आदत है, चाहे बारिश हो बरसा, बारिश हो सर्दी हो या फिर गर्मी हो, हर मौसम मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा गर्मी, नॉर्मल वेदर अच्छा लगता है।
1: यानी कि जून जुलाई पसंद नहीं है।
0: हाँ जुलाई का महीना, सावन का महीना अच्छा लगता है, रिमझिम बारिश भी होती है, ठीक है, चारों तरफ हरियाली होती है, प्रकृति इतनी खूबसूरत लगती है।
1: कल आपने पेड़ लगाए? मैंने
0: हाँ कल हमने पेड़ लगाए।
1: भी लगाए अपनी लाइब्रेरी में, बहुत क्यूट क्यूट थे। हाँ
0: अरे वाह, आपकी तरह क्यूट होंगी वो भी। अच्छा
1: जरूर पूछूंगी। वैसे मेरी अंतर्यामी बेस्ट फ्रेंड कैसी है? बाकी
0: वो भी ठीक है
1: और सारे अच्छे हैं आज?
0: हाँ जी, सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और सारे लिसनर भी बहुत अच्छे हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं।
1: वो तो हो गई भाई, जो एफएम मुरादाबाद सुनेगा ना ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लोग बस फीवर लेकर आते हैं कि हमें फीवर हो रहा है, लेकिन आपकी वॉइस सुनते ही ठीक हो जाते हैं। यार
0: ओके, हम क्या मेडिसिन है, कोई दवाई है, हम बताओ हमें कि हमारी आवाज सुनते ही लोग ठीक हो जाते
1: अभी
0: हैं।
1: तो अभी
0: अच्छा अलाइवा,
1: तो हाँ
0: हाँ हाँ बोलो।
1: नहीं आप बोलो, आप कुछ कह रहे थे?
0: नहीं मैं बोल रही थी कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हो, जरा मुझे बताओ यार।
1: मैम मूवी का नाम है क्रेशर,
0: हाँ
1: उसमें एक सॉन्ग है।

0: सावन आया है, मोहब्बत बरसा देना, सावन आया है।
1: ओके, सावन आने वाला है और मोहब्बत भी बरसने वाली है, थोड़ा इंतजार करो।
0: इतनी प्यारी से दोस्त है उसको क्या जरूरत। और वैसे भी इस सॉन्ग की एक स्पेशल सी लाइन है कि क्रिसमस से चुराया मैंने, वो सॉन्ग स्पेस के डेडिकेट रहेगा दोस्त फातिमा को, वो लाइन।
1: ओके, और कुछ कहना चाहते हो आप जाते जाते?
0: हाँ, मेरी दोस्त है डिस्ट्रिक्ट सॉम्बल से हैं शबनम जी।
1: ओके,
0: और ये सॉन्ग आपको भी डेडिकेट रहेगा, आपका ब्यूटी आपको फेवरेट सॉन्ग है।
1: हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आपका भी फेवरेट है ना?
0: नहीं की आप शिकायत है?
1: नहीं नहीं शिकायत मत करो यार, देखो मुझे अच्छा नहीं लगेगा आप शिकायत करोगे तो, मैं सुना देती हूँ ठीक है? इतना अच्छा तो नहीं आता है यार, बट हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी सी।
0: बिल्कुल।

0: आगे मुझे नहीं आता है, सॉरी यार।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम।
1: बहुत अच्छी है।
0: हाँ, गाना बहुत प्यारा है, लाइनें भी बहुत अच्छी हैं, लिरिक्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, और अरिजीत सिंह की आवाज जो सभी के दिल पर राज करती है।
1: थैंक यू सो मच मेरे लिए आपने सिंगिंग की।
0: मोस्ट वेलकम डियर। हम नहीं चाहते ना कि हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हमसे नाराज हों, हमसे खफा हों, हमसे शिकायत करें।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच, एंड वॉइस भी बहुत प्यारी है।
0: मोस्ट वेलकम यार। अब चलो, दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, सुन लेते हैं गाना। ओके बाय, लवली टॉकिंग टू यू, अपना ख्याल रखो। तो चलो एवरीवन, बहुत सारी बातें हो गई हैं, एंड ये गाना सुन लेते हैं फाइनली, उसके बाद बातचीत करेंगे अभी आपसे।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो दोस्तों, ये प्यारे से गानों के बाद खुशी यहाँ पर आ चुकी है और मैं आपको बता देती हूँ वक्त अभी स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ हुआ है 4:49 और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे जानेंगे उनकी पसंद का गाना। लेकिन अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं एवरीवन, अभी इस वक्त राइट नाउ सोच रहे हैं कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा, फ्री बैठे हैं, ओहो थक गए हैं आज काम करके, तो आप अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए मुझे कॉल करो, मैं आपका कॉल रिसीव करूंगी, आपका गाना भी सुनाऊंगी और गाने के साथ साथ गर्मा गर्म चाय हम पिला देते, लेकिन आप स्टूडियो में होते तो स्टूडियो में तो आप नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ चाय बनाइए, लुफ्त उठाइए, यहाँ मैं गाना प्ले करूंगी। अभी फिलहाल बात करते हैं कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? आपको भी याद, आप नाम बताइए अपना।
1: हमने गाने की फरमाइश करी थी।
0: फरमाइश तो हम आपकी गाने की कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन पहले अपना नाम तो बताइए जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मोहम्मद उस्मान बोल रहा हूँ, पाकुड़ से बात कर रहा हूँ, पाकुड़ से धनुपुरा।
0: अच्छा जी, बताइएगा क्या करते हैं आप सब?
1: जी मैडम, अभी छोटा सा कारोबार है।
0: छोटा सा कारोबार है, छोटा हो या बड़ा, काम तो काम होता है सर, बताइएगा क्या कारोबार करते हैं आप? ओके अच्छा, ईंट जो बनाते हैं जिससे घर बनता है ना?
1: जी जी जी जी जी,
0: अरे
1: घर ही बनता है, कुछ ही बना लेते तो चूल्हा बना देते ही तो का।
0: अच्छा जी सर, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैं तो वो सुन रहा था, मैं सोना सोना को पढ़ के गाना, तो मेरी है ना सोना।
0: ओके, एक ओल्ड गाना भी है सोना, ओ मेरी सोना।
1: हाँ मेरी सोना, हमारी मैडम का नाम सोना है ना।
0: अरे वाह,
1: नाराज रहती है।
0: अच्छा वो नाराज रहती हैं?
1: जी जी।
0: पर वो नाराज क्यों होती हैं? आप उनको सोना चांदी कुछ दिलाते नहीं हो क्या, शॉपिंग नहीं कराते हो मैम को?
1: अरे शॉपिंग तो कराता हूँ, दूसरे दिन कपड़े लाता हूँ दिलवा के मैं।
0: अरे वाह, फिर तो मैम को खुश होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए।
1: पता ना मुझे क्या उसके दिमाग का असर है, कपड़े बहुत बनाता हूँ, जूती और क्या नाम है, क्रीम पाउडर बहुत दिलवाता हूँ, मगर फिर भी नाराज रहती हूँ उससे।
0: अच्छा ओके, तो मैम से पूछिएगा कि आप क्यों हमसे खफा खफा रहती हैं?
1: कोई ऐसी तरकीब बताओ ना, राजी रहते हैं, हंसी खुशी रहते हो।
0: ऐसी तरकीब हम बताएं आपको, देखिए शॉपिंग लड़कियों अगर करती हैं तो वो हैप्पी रहती हैं, बाकी आप उनको समय भी दिया कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान कुछ भी चीज़ें दिला दे वो बात नहीं होती, लेकिन जब इंसान 2 मिनट साथ बैठता है, बातचीत करता है, एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है रिश्ते में।
1: अरे हाल चाल तो मेरे जानता हूँ।
0: अच्छा ओके, अच्छा आपने पास से ही शादी की है? ओके सर, तो ठीक है, ये सोना जी के लिए गाना सुनवाते हैं हम, अब वो आपसे नाराज नहीं होंगी। ओके जी, थैंक यू कॉल करने के लिए उस्मान जी। तो चलिए एवरीवन, सोना जी की पसंद पर ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मोहतरमा, इतने प्यार से आपको सर मना रहे हैं, तो मान जाइए, अब नाराज मत होइए, मुस्कुरा भी दीजिए और ये प्यारा सा गाना सुनिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल ट्रैक के उस पार।
2: क्या मजाक लगा रखा है कि नहीं?

0: देखिए दोस्तों, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत सी है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी से आप खफा हैं तो मान जाइए, कोई आपको इतने प्यार से मना रहा है तो मान जाइए, क्योंकि जिंदगी इतनी प्यारी है, और अगर आप से कोई रूठा है तो उसको मना लीजिए। फिलहाल हम अपने अगले कॉलर से बात कर लेते हैं, पता चला कि वो हमसे नाराज ना हो जाए, तो बातचीत करते हैं उनसे। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग दी।
0: वेरी गुड इवनिंग डियर, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ दी, आप कैसी हो?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ आपसे बात करके, और हैप्पी हो गए हैं?
1: कैसी
0: है दी? जी सब बहुत ही अच्छे हैं, ऑल गुड। आप बताइएगा अपना नाम तो बताओ, आप कहाँ से बात कर रहे हो?
1: फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: निखत फातिमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बताइएगा सब कैसे हैं परिवार में, कैसे हैं बताओ हमका?
1: जी बहुत ही अच्छे हैं सभी।
0: ओके, और आप क्या कर रहे हो अभी?
1: कुछ नहीं थी, आपका शो सुन रही थी।
0: अच्छा, तो आज शाम को डिनर में क्या बनाने वाली हो आप बताओ?
2: नहीं बताएंगे तो मैं आ जाओगी तो?
1: नहीं दी बताएंगे, रीना दी बोल रही है ना पीछे से।
0: हाँ रीना कह रही है कि नहीं बताओ, क्योंकि पता है वो क्यों मना कर रही है, बताओ निखत
1: दी। आज गर्मी है ना, तो मैं लौकी का रायता बनाने वाली हूँ।
0: वाओ, लौकी का रायता हो,
1: हो आज वो ठंडा होता है ना।
0: हाँ वो गर्मी में राहत भी देगा और नाइट में हेल्दी भी है, हल्का लाइट भी है।
1: हाँ दी,
0: और उसके साथ में क्या बनाने वाले हो? खाली रायता पिलाओगे हमें?
1: नहीं दी, रोटी बनाऊंगी ना,
2: चटनी मिर्च वाली।
0: नहीं मैं तो नहीं खाती मिर्च वाली चटनी, मैं तो रोटी खाऊंगी रायते के साथ। ठीक है, आप गर्मा गर्म बनाइएगा, हम आ जाएंगे। ओके
1: हाँ, ओके दी।
0: तो बताओ निखत, आप कौन सा गाना सुनोगे आज?
1: दी मूवी का नाम रहेगा क्योंकि, और उसमें सॉन्ग है दिल के बदले सनम।
0: दर्द दिल ले चुके या दे चुके, ये आप मुझे बताओ।
1: दर्द दिल दे चुके।
0: अच्छा किसको दिया आपने? देखो हमें दर्द नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें प्यार चाहिए।
1: आपको दिया ना?
0: और आपका दिल तो हमारे पास है।
1: हाँ जी, तो आप ही को दिया है।
0: ठीक है, हमने संभाल के रखा है, पर आपका दिल बड़ा नटखट है।
1: क्यों दी?
0: ये इसलिए कहता है कि खुशी जी मुझे ये वाला गाना सुनना है, खुशी जी मुझे वो गाना सुनना है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी, लेकिन बहुत प्यारा है आपका दिल।
1: हाँ जी, आपकी तरह आप भी तो इतनी प्यारी हो ना।
0: हाँ थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, और सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको निखत।
1: ओके थैंक यू दी, बाय।
0: मोस्ट वेलकम, बाय। अपना ध्यान रखो अच्छे से, और गर्मा गर्म जल्दी से रोटियां बनाइए, रायता बनाइए, सबको खिलाइए।
1: ओके दी,
0: और खुद भी खाइए, ये तो मैं भूल ही गई थी बताना भाई, जो मेहनत करके बना रहा है उसको भी तो खाना है। तो चलो दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 10 से 12, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान, ढेर सारा पानी पीजिए, और हाँ अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि फुल स्लीव के कॉटन के कपड़े पहनिए, ताकि आपको मच्छर ना काटें, और अपने बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का खासकर ध्यान रखें, आप अपना भी ख्याल रखें, और यूं ही इंजॉय करते रहें FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। नेक्स्ट कंपनी देने के लिए यहाँ पर रीना जी हाजिर हो चुके हैं, आपकी इवनिंग को बनाएंगी मस्ताना, थोड़ा सा खुद भी हैं वो दीवानी सी, तो आपको भी बनाएंगी दीवाना, लेकिन किन के साथ? प्यारे प्यारे गानों के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।

गिरफ्तार तीन प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विवादित पुस्तकों में पर्सनैलिटीज एंड एजेंट्स ऑफ J&K और ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दों का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमन कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि मुलाकात में संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने और भारत न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से जारी संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर जोर दिया गया। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कर रहे थे। जापान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री कानो कोजी ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की सराहना की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव व्लादिस्लाव बार्तोसिजेस्की और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर सचिव माइकल बरोंस्की से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वियतनाम के फूक्वेक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 186 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर, 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हो गए श्रोताओं और दो घंटे आप सभी के साथ रहने वाली हूँ, इसीलिए दिल और दिमाग को थाम कर बैठिएगा और रेडियो ऑन करके रखिएगा और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब रीना आती है ना तो देखिए धमाल तो वैसे ही मचे जाता है। साथ ही साथ वेट की बात करो तो वो भी मैं घटाने की एक्सपीरियंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट लेवल वाला है। सो आज मंडे है, यानी कि मन का डे, तो जो मर्जी वो करिए, क्योंकि मंडे का मतलब अपनी ख्वाहिश को उजागर करना, यानी कि जो भी आपकी चीज़ें फेवरेट है वो काम करिए, क्योंकि आज मंडे है। फिलहाल दो घंटे के लिए ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं, आज क्या क्या देश दुनिया में हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और आज का स्पेशल डे क्या है, हर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ स्कूल के किस्से जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है और उस चीज़ों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और जो स्टार्टिंग हुआ था क्या हुआ था स्टार्टिंग वो अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा सस्पेंस बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद कनेक्ट होंगे जब बताएंगे आप सभी को, बस आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रही। एक और बिंदास बेधड़क गाना आप सभी के लिए प्ले करती हूँ, और समय की बात करूँ तो देखिए 5:12 हो चुके हैं, बहुत लोगों का इंतजार रहता भैया समय बता दो, समय बता दो, समय बता दो, तो रीना आ गई है बताने के लिए। टाइम टाइम पर पूछते हैं, अरे टाइम बताओ यार। अच्छा गाइज, वो क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, वेट जरा पहले गाना सुन।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद से
0: संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, हरियाणवी ट्रैक। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। समय की अगर मैं बात करूं तो 5:20 हो चुके श्रोताओं, और कल की तारीख हमारे लिए बेहद खास थी क्योंकि कल यानी कि 12 जुलाई को ये कहा गया था कि एक पेड़ माँ के नाम। तो क्या आप सभी ने कल यानी कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया? ये अपने बगीचे में कहीं भी आपने कल एक पेड़ लगाया? अगर लगाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया तो आप लगा सकते हैं गाइस। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 12 तारीख को ही लगा सकते थे, पेड़ तो आप कभी भी किसी दिन भी लगा सकते हो, क्योंकि पेड़ अगर आप लगाओगे तो स्वस्थ आपको हवा मिलेगी, आपका पर्यावरण शुद्ध होएगा और आपके आसपास का वातावरण भी बहुत ही कूल रहने वाला है, फिर आपको भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब वातावरण शुद्ध तो आपको भी सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाना है आपने। और आज की तारीख यानी कि 13 जुलाई बहुत बेहद खास है क्योंकि आज क्या क्या डेज मनाए जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले। फिलहाल यहाँ पर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर का, यानी कि जितनी बारिश होने के बाद ठंड हो जाती है उतनी ही गर्मी हो जाती है गाइस। तो हर दिन का अपना अलग मजा होता है और बस ये समझ के एंजॉय करिए कि आज का दिन है हमारे पास, कल क्या है यार, कल कभी नहीं आता है ना, इसीलिए आज के दिन को एंजॉय करो। और आज का मेरा क्वेश्चन आप सभी से बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे ऑफिस में भी यही हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप सभी से पूछ लिया जाए क्या वो है। सो आज का क्वेश्चन ये है कि आप ऑफिस जाते समय या फिर आप बाहर जा रहे हैं घर से, व्हाटएवर आप कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना फोन भूल जाते हैं तो पूरा दिन आप कैसे एंजॉय कर पाएंगे? क्या आप पूरा दिन फोन के बिना रह पाएंगे? ऑब्वियसली रहना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऑफिस निकल चुके हो और ऑफिस पहुंच चुके हो और फोन घर पर ही है तो आपका मतलब वो दिन कैसा रहेगा, मैसेज करके आपने बताना है। प्यारा नंबर है, आपको भी पता है जी, 9837896896 पर मैसेज करना है। फिलहाल एक मैसेज आ गया है हमारे पास, तो चलिए सुनते हैं।

0: करीना जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? और इनका कहना कि रीना जी 200 से 205 लगा चुके हैं ये पेड़ खेत में, क्या बात जी, वेल डन, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना सारा पेड़ लगाया है। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी, तो श्रोता आप भी मैसेज करके बता सकते हैं। देखिए मैसेज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपकी प्यारी मधुर आवाज रेडियो आपका इंतजार कर रहा है, तो आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। फिलहाल इन्होंने पेड़ तो भैया लगाए हैं, अगर आपने भी लगाया तो आप भी बता सकते हो मैसेज करके। फिलहाल अगला गाना भी भैया बहुत ही शानदार है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं हम आप सभी के साथ। सुनिए जरा इस गाने को,
1: हरियाणवी गाना।
0: हाय हाय, क्या बात है जी, हरियाणवी गाना भाई साहब।

0: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
1: ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते हैं ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
2: अरे

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूं तो 5:32 हो चुके हैं श्रोता। गुड वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हैं और आप सभी का दिल से स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो में। और आज का जो संदेश है आप सभी के लिए है और हम सभी के लिए है, और उस चीज को हमें अपनी जिंदगी में मतलब ग्रहण मतलब हमें सीखना पड़ेगा कि उस कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। इवन सोचिए कि एक बिसलरी की बोतल, आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, टीवी देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसकी न्यूज आ रही है। एक्चुअल में जिस बिसलरी की बोतल पर हम इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, कहीं भी मतलब हम घर से पानी लेकर नहीं जाते हैं और इवन हम बिसलरी के बोतल पानी लेते हैं और पी लेते हैं, हम उस पर इतना ज्यादा यकीन करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता उस पानी के अंदर क्या मिलाया गया है, क्या उस पानी के अंदर नहीं है। सो आप सभी से यही कहना चाहेंगे, बिकती हुई हर चीज चमकती नहीं है और सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो जब भी आप पानी की बोतल खरीदे, बिसलरी के कोई भी बोतल हो, पानी का बोतल, तो उसको आपने सोच समझ कर पीना है। पीने से पहले उस पानी को आपने नीचे जरूर गिरा कर देखना है कि वाकई में उसमें पानी है या पानी की जगह तेजाब है। एक न्यूज जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, यानी कि बच्ची सुनार के दुकान पर जाती है, उसको प्यास लगती है, वो बिस्लरी की बोतल खरीदती है और पानी पी लेती है। एक घूट पीते ही उसकी बॉडी के अंदर का जीव वगैरह जलने लग गया, वो बाहर गई, बेचैन हो गई एकदम, मतलब समझ नहीं आ रहा था उसको कि हो क्या रहा है। जब उस पानी को नीचे डाला गया तो तेजाब था। देखिए, जिस बिसलरी की बोतल को हम पीते हैं, फेंक देते हैं, तो आपको नहीं पता कि उसको फिर से वहीं कूड़े कचरे से उठाया जाता है, उसको केमिकल से साफ किया जाता है, फिर उसमें पानी भरा जाता है। आपको ये नहीं पता कि मैं पानी है कि किसी और बोतल में गलती से कुछ और भी है। इवन आप बाहर का पैकेट वाला खाना है ऑर्डर कर लेते हैं हम घर बैठे बैठे, है ना, तो हर

0: चीज को आपने देख कर मैनेज कर कर आपने खाना है। कोई भी आप चीज लेते हैं तो पहले उसको देखिए उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तभी उस चीज को आप ग्रहण करिए। क्योंकि वो बच्ची तो अब मतलब उसने एक घूंट पानी पिया और वो आज अपनी जिंदगी से खेल रही है। तो इसीलिए हर चमकती चीज सोना नहीं होता भैया। और आप सभी से इवन मैं यही कहना चाहूंगी, आप घर से जा रही है तो जैसे फोन आप नहीं छोड़ सकते हैं वैसी बॉटल क्यों नहीं लेके जा सकते। वो इतनी भारी तो नहीं होती है ना, बल्कि आपका वो प्यास बुझाती है। जब पानी नहीं होगा तो सोचिए आप क्या कर पाएंगे। इसीलिए आज से अपना अपने जीवन में एक चीज तो जरूर सोच लीजिए कि बाहर जाना है फोन के साथ पानी की बोतल होनी चाहिए। चाहे फोन एक टाइम के लिए भूल जाओ भैया, लेकिन पानी की बोतल नहीं भूलना है आपने। कोई भी चीज आप बाहर से खरीद कर खा रहे हो तो सोच समझ कर खा रहे हो। पैकेट वाली जो चीज है उसको सोच समझ कर खरीदिए और सोच समझ कर खाइए कि ये हमारी बॉडी के लिए सही होगा, ये हमारी बॉडी के लिए नुकसान होगा। इस चीज को आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे श्रोताओं। और आज कड़क सवाल मैंने आप सभी से यही पूछा है कि एक दिन आप बिना फोन के रह सकते हैं? रह सकते हैं तो मैसेज करके बताइए, नहीं रह सकते तो भी मैसेज करके बताइए कि आखिरकार एक दिन आपको फोन ना मिले तो आप क्या आप रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। चलिए फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और अगला गाना भी बहुत ही फैंटास्टिक है। देखिए जब मैं बोलती हूँ तो मैं चुप नहीं होती हूँ, बहुत चुल्ली लड़की, मैं बोलती जाती हूँ बोलती जाती हूँ। गाना भी बहुत प्यारा है जी, सोनी द नखरे सोनी लग दे। इसीलिए आपका भी नखरा ऐसा ही होना चाहिए श्रोताओं की बाहर के कुछ लेकर खा रहे हैं तो पहले उसको देखा जाए, चेक किया जाए क्या वो क्लीन है क्या नहीं है, हर चीज आपको चेक।
1: Such a stupid question.

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोता। और 4 दिन की जवानी, अह अह जब 4 दिन की जवानी है, 4 दिन की जिंदगी है, तो हमें टेंशन क्यों लेना है जी। बिंदास होकर एंजॉय करिए, क्योंकि आज तारीख 13/7 यानी कि 13/7 चाहिए, और मन की यानी कि मंडे, तो मन में जो आए वो करिए, लेकिन गलत काम बिल्कुल नहीं करने हैं जी। इस चीज को ध्यान रखिए, पता चले कि आप बोल दे कि रीना मैडम ने बोला था कि गलत भी काम करो, नो, गलत काम काम ने बिल्कुल नहीं करना है। और एक बहुत ही प्यारा अपडेट है मेरे पास, जो कि आजकल जो 16 साल के बच्चे हैं, जो 16 साल के कम एज वाले बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है। अब वो इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया में भी 16 साल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे, वो बैन कर दिया जाएगा। क्योंकि जब भी आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह आपको ये बायो डाटा जरूर मांगी जाती है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ तो मांगी मांगी जाती है, वेरिफिकेशन भी। इनफैक्ट अब ये कर दिया कि वेरिफिकेशन आपने पहले करना पड़ेगा। तो अगर आपने सही बायो डाटा का आप नहीं डाल रहे हैं तो आपकी आईडी देखिए ऑलरेडी ऐसी बैन हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप 16 साल के कम एज के बच्चे हैं और सोशल मीडिया पर अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं तो वो भी बैन कर दिया जाएगा। सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि देखिए पहले बच्चे बड़े आसानी से हर चीज काम मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। पहले के टाइम में यानी कि अब का क्या है, 4th क्लास में बच्चे होते हैं उनको फोन मिल जाता है, लेकिन पहले हम जब 4th क्लास में थे तो इस चीज को सोचकर खुश हो जाते थे कि वाओ यार, यानी कि 5th क्लास में हो जाएंगे तो हमें पेन मिल जाएगा लिखने के लिए, पेंसिल के सहारे हमें नहीं लेना पड़ेगा, तो हम उस चीज से बहुत ज्यादा खुश होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे फोन मिल जाते हैं, सोशल मीडिया पर अकाउंट बन जाते हैं, जो चीजें नहीं देखने को होती, हर चीज की चीजें आती हैं इंस्टाग्राम पर आप देखोगे तो, उसे बच्चे का दिमाग है ना वो थोड़ा यानी कि फोन की तरफ चला जाता है, कुछ नई चीजें सोच नहीं पाते हैं, और ऊपर से पढ़ाई का लोड होता है उनके ऊपर, हर ट्यूशन जाना है, स्कूल का होमवर्क करना है, बहुत कुछ चीज हो जाता है, ऊपर से खुद के लिए खेलने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि होमवर्क करा, अच्छा चलो थोड़ी देर ना फोन चला लेता हूँ, कार्टून देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। सो इससे बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, इसीलिए सरकार ने निर्णय ले लिया है कि 16 साल के जो कम एज के बच्चे वो अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे, अगर बनाते हो तो बैन कर दिया जाएगा। चलिए जी, अभी की बातें इतना ही, और भी आगे बात करेंगे क्योंकि पिटारे में हैं बहुत सारी बातें, वो भी शामिल करेंगे। श्रोताओ फिलहाल कुछ मैसेज आ गए, उनको तो शामिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद करते हैं, ठीक है? थोड़ा सब्र रखिए जी।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओ। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आज की जो तारीख है बेहद खास है, लेकिन मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी अपडेट जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वह ये सच में ऐसा हो सकता है, हो रही बिल्कुल हो सकता है जी। क्योंकि यूपी के सतना में एक ऐसे परिवार में, यानी कि उनके बेटे 14, और अब वो सोच रहे थे कि अगर एक एक बेटे के अगर मैं शादी करूंगा तो सोचिए खर्चा कितना होएगा। यानी कि 14 बेटे थे उनके, 14 बच्चे। तो उन्होंने अपने दिमाग को ना घुमाया, यानी कि आइडिया लगाया, क्यों ना एक ही दिन अगर हम 14 बच्चों की शादी कर दे तो डबल खर्चे से भी बचेंगे, ऊपर से शादी भी हो जाएगी, हर रिश्तेदार भी खुश हो जाएंगे। वाह वाह, बल्ले बल्ले हो गई। और एक ही दिन 14 बच्चों की शादी की, वो भी धूम धड़ाके से, और 14 लड़कों की शादी और 14 दुल्हन घर पर आ गई। सोचिए हर बार का काम एक ही बार में खत्म हो गया, यानी कि फैंटास्ट हो गया। तो भैया पहले के हमने यही सुना था ना कि एक अगर दो शादी कर देते हैं, बड़ी बेटी है बड़ा बेटा है, तो ज्यादा खर्चा ना लगे इसलिए दो को हम शादी कर देते थे। तीन का भी इनफेक्ट देखा है कि एक दिन में तीन की शादी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अब यानी कि जो रीति रिवाज है वो थोड़ा चेंज हो गया, यानी कि 14 बच्चों की शादी कर दी। तो ये भी सही है यार, क्योंकि जितना कितना भी आप खर्चे कर लो, रिश्तेदार कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ यार तूने बहुत अच्छा करा है, कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकालेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा तुमने कैसे मैनेज किया, कैसे शादी की तुमने, यहाँ तक का प्रोसेस कैसा रहा, बिल्कुल भी नहीं। ये जरूर कह देंगे भैया मीठा कम था, सब्जी में नमक कम थी यार, शादी में थोड़ी सी कमी रह गई, ये तो उसको पूरा कर लेना चाहिए, ये जरूर कहेंगे। इसीलिए भाई जो मन करे वो करो, क्यों सोचना किसी के बारे में, वो तब भी आपकी बुराई करेंगे। इसीलिए मस्त रहो, झकास रहो, बिंदास रहो, और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहो इवनिंग मस्ती शो में। चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, आगे प्यारी प्यारी मैसेज मैंने आप सभी से देखी। आज ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप एक दिन बिना फोन के रह सकते हैं। सोचिए अगर एक दिन आपके पास फोन नहीं है तो क्या चीजें अच्छी हो सकती है, क्या चीजें जो बुरी हो सकती है, सोचकर बताइए। फिलहाल हमारे पास मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन हंसारी जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त है सैयद शारिक अली। गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसे हैं? बात अच्छी है जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो। और फोन के बारे में इन्होंने लिखा है, फोन आज के इंसान की जरूरी बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। बिल्कुल, फोन के बिना रहना यहाँ बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे काम फोन से ही हो रहे हैं, ये भी राइट है। किसी से हमने भी बात करनी होती है,

0: किसी का फोन हमारे पास आ सकता है। बिल्कुल जी, इसीलिए फोन से दूर रहना बहुत मुश्किल काम है। और जो लोग आज भी फोन नहीं चलाते उनके लिए मुश्किल नहीं है, और जो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उनको उसको उन लोगों को मोबाइल से दूर रखना, अगर जो फोन चला, इनका कहने का मतलब अगर जो फोन चला रहा है अगर उनसे फोन से अगर दूरी रखेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे। देखिए सर, आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आजकल हर चीज फोन से ही है, या इनफैक्ट गूगल, फोन पे हम चलाते हैं वो फोन में ही, हर चीज डाटा में स्टोर करके फोन में ही रखते हैं। लेकिन फोन को हमें फोन की तरह यूज करना चाहिए। हम दिन रात लगे रहते हैं फोन में। आजकल आपने एक चीज सोची है कि सर में दर्द आजकल कॉमन क्यों बन गया है? हर सेकंड सेकंड पर हर बच्चे बच्चा बोलता है कि मेरे फोन सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि स्क्रीनिंग टाइमिंग है वो ज्यादा बढ़ गई है, बच्चे फोन में ज्यादा घुसने लगे हैं। इनफैक्ट बड़े भी बच्चों को आजकल बहुत कम समय देते हैं, फोन में ही लगे रहते। तो फोन को बस काम के लिए इस्तेमाल करिए, उसके बाद नहीं। क्योंकि देखिए, आज आप फोन से अच्छे से चला पा रहे हैं, जब जैसे जैसे आप बड़े होंगे, एज आपकी बढ़ेगी, आंखों में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, और उसी टाइम हमें सबसे ज्यादा अपनी आंखों की जरूरत होती है। बुढ़ापे के लिए इन आंखों को बचा लीजिए भैया, अभी कह रही हूँ मैं, अभी टाइम है, संभल जाइए। और अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते रीना मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, थैंक यू सो मच जी। मैम, जो फोन घर पर रह जाता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, फिर आपको हम कैसे सुन पाएंगे? अरे अरे, क्या बात है जी, ये भी सही कहा आपने कि फोन घर पर रह जाए तो कैसे सुन पाएंगे। देखिए, ये होती है काम की बात। देखिए, फोन काम के लिए चलाना जरूरी बात है, लेकिन रेडियो सुनना वो भी अलग बात है जी, बिंदास वाली बात है, बेधड़क वाली बात है, क्योंकि आप रेडियो के बिना नहीं रह पाएंगे, और हम जितने आरजेस हैं आप सभी के बिना नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आप सभी के जो इतना प्यार मिलता है यहाँ पर भैया रेडियो पर, वो हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं होता है। और इनका कहना है कि ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू जी, यानी कि सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार मैसेज है आपका, और ये आज गाना भी सुनना चाहते हैं। चलिए जी, आपने राइट आंसर दिया है, फोन के बारे में हमने पूछा है और आपने आंसर भी दिया, तो एक गाना प्ले कर देते, कोई बात नहीं जी। बेधड़क रहिए, बिंदास श्री आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट है जी। तो आपका जो ये गाना है हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे, रिवील नहीं करेंगे कि ये कौन सा गाना है, ये बाकी श्रोताओं के लिए एक मजेदार वाली बात है। मुझे लगता है कि इनके घर में या तो कोई फंक्शन होगा, कुछ होगा, तभी ये गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए इस गाने को सुनवाते हैं और उसके बाद कनेक्ट होते हैं, यानी कि 6 बजे अपनी मुलाकात होगी न्यूज के बाद। फिलहाल के लिए ये गाना, आय हाय
1: ये कुड़िया, नशे
0: दी कुड़िया, आय हाय

0: Tjore at nakahela.
1: सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर ₹275 टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना है। अर्जुरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि देखिए गुनगुनाना जिंदगी में ना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको सुकून देता है। रामलीला मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है और अरिजीत सिंह की आवाज में बहुत ही खूबसूरत। देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि समय की बात करूं तो 6:11 हो चुके श्रोताओं, और आज यानी कि 13 जुलाई अपने आप में बहुत बेहद खास है। सो आज का डे हमारे लिए बहुत स्पेशल है, यानी कि आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चूरमा दिवस। आए हाय, सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। और देखिए हम क्या ना रोटी में या फिर सब्जी में या दाल में हल्का सा घी डाल के यानी कि खाना खाते हैं, लेकिन राजस्थान का ये प्यारा डिश है, वहाँ पर पानी की तरह घी पिया जाता है, यानी कि चूरमा। आए हाय, बेहद यानी कि प्यारा डिश है ये। अगर आपने खाया है तो आप मैसेज करके ज़रूर बता सकते हैं, नंबर है 9823789689। इनफैक्ट इसको बनाना भी बड़ा ही आसान होता है।

लेकिन आजकल पता है जो पुराने डिश है ना वो लुप्त होते जा रहे हैं। हम सभी बर्गर पिज्जा के तरफ जा रहे हैं, यानी कि चूरमा बहुत ही शानदार है, यानी कि गुड़ और रोटी के साथ इसको मैश करके बनाया जाता है और उसमें घी इतना डाला जाता है भैया कि ओ हो, हम कहते हैं ना वीकनेस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। पहले के इंसानों के अंदर वीकनेस नहीं होती थी, एनर्जी उनके अंदर ना बहुत ही हाई लेवल वाला होता था, इतना एनर्जी कि वो कितना भी काम कर ले तभी भी उनकी सांसें ऐसे नहीं होती थी। हम सब क्या थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं, इनफैक्ट एक दो बार जीने की चक्कर भी लगा लेना तभी भी थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि पैड़ियों के हमने चक्कर लगा ली तो भैया कुछ करने के लायक ही नहीं रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनसे पहले बुढ़ापा हमें आ गया है, क्योंकि पहले खाने बड़े सादगी भरा होता था और बहुत ही पौष्टिक होता था। तो अगर आपने चूरमा खाया है तो जरूर मैसेज करके बताइए जी, नंबर है 9823789689। और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्टेड ढेर सारी बातें करेंगे जी, लौट कर आते हैं इसी रेडियो स्टेशन पर। सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आरजे रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। चलिए इसी पर एक गाना बहुत ही शानदार,

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं इवनिंग मस्ते शो में तो 6:22 हो चुके हैं श्रोताओं। और देखिए कितने ही दौलत शोहरत कमा लीजिए, लेकिन उसी दौलत शोहरत में अगर खुशी ना मिले तो क्या ही फायदा उस दौलत शोहरत का। खुशी तो तब मिलती है जब आपका मन तन सुकून भरा हो और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, ऐसा लगे कि वाओ जन्नत मिल गई है। और आज के टाइम में हम इंसानों को हंसाना बड़ा मुश्किल है हमें, क्योंकि आप किसी को हंसा नहीं सकते हो, क्योंकि कोई किसी को एंजाइटी है, किसी कोई डिप्रेशन में है, कोई अकेलेपन से इतना परेशान हो गया है कि उसको भाई परेशान मतलब उसको एजेंटी मतलब उसको इतनी ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है कि कुछ नहीं कह सकते आप। उनको भाई इतनी अंदर खोखलापन हो गया इंसानों के अंदर कि आप किसी को हंसा नहीं सकते हो। आज के टाइम में हंसाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी काम को कि इंसान आलसी हो चुका है, सुस्त हो चुका है, एक्टिव बहुत कम रहता है, क्योंकि उसके पास फोन है, लेटे बैठे उठते जागते फोन पर निर्भर है। फोन देखो बात खत्म, काम नहीं है तो फोन देख रहे हैं। लेकिन सोचिए अगर आपको हंसने के पैसे मिले तो क्या आप हंसेंगे? देखिए पहले अगर आप मैसेज करके बताएंगे तो भी मैं ये न्यूज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपको हंसने के पैसे मिलेंगे तो क्या आप हंसेंगे, तो उसके लिए आपने मैसेज करना पड़ेगा। नंबर है 9823789689। इसके बाद मैं कड़क सवाल भी लेकर आऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको हंसने के क्या मिलने वाले हैं अगर आप हंसते हैं तो। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल मैसेज करके बताइए। फिलहाल एक मैसेज है मेरे पास। हेलो मैम, आई एम अंकित फ्रॉम मुरादाबाद से, आपका ओल्ड लिसनर। हाँ जी मुझे पता है, और काफी टाइम के बाद ये कनेक्ट हुए हैं, काफी टाइम के बाद मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू अंकित, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मैसेज किया और आप सुन रहे हो। एक्चुअली देखिए इनका एक पढ़ाई है, एग्जाम चल रहे थे, तो देखिए एग्जाम में यानी कि फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आजकल पढ़ना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो फिलहाल मैसेज करिए अगर आप हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, तभी बताएंगे एक और प्यारा सा अपडेट आप सभी के बीच। फिलहाल ये जो गाना है ना, वाकई में बहुत अच्छा ये गाना बना है, सच में। ये दिन ना मिलेंगे दोबारा, हंस ले गाले थोड़ा खुशी बांट ले। चलिए फिलहाल इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर बताते हैं।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज यानी कि मैं आपको बताऊं, हंसने के अगर आपको पैसे मिले तो आप हंसेंगे। बिल्कुल हर कोई हंसेगा, है ना, क्योंकि हंसने के पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में हंसना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन यही हंसने का जो ये है यानी कि चाइना में अब एक जॉब बन गया है, हंसिए और पैसे मिलेंगे आपको। वो इसलिए चलाया गया है ताकि लोग हंसे, परेशान रहने हैं, डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी की प्रॉब्लम ना हो उनको, इसलिए वहां पर चाइना में अब हंसने के भी पैसे मिल रहे हैं। सोचिए अगर ऐसी नौकरी मिले तो हर कोई करना चाहेगा, है ना, क्योंकि हंसने के पैसे मिल रहे हैं आपको। तो ये चाइना में शुरू हो गया भैया कि हंसने के आपको पैसे मिलेंगे, भी बहुत सारे जी। तो आज का मेरा कड़क सवाल भी यही होगा आप सभी से कि अगर आपको किसी को हंसाना हो तो आप कैसे हंसाएंगे। पहला पॉइंट आपका क्या होगा किसी को हंसाने के लिए, आज मेरा कड़क सवाल आप सभी से यही है। कोई पहेली नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यही सवाल है कि अगर आपको किसी को हंसाना होगा तो आप उसको कैसे हंसाएंगे। पहला टॉपिक क्या होगा आपका, सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल एक और गाना शानदार, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं। और आज का हमारा कड़क सवाल यही है कि अगर आपको किसी को हंसाने का मौका मिले तो आप उसको कैसे हंसाएंगे।

जचदाए गोरे मुखरे पे आए हाय। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना एंजॉय कर रहे हैं आप आरजुरीने के साथ एफएम मुरादाबाद 89.9 89.6। बार बार देखो मूवी से आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं, और इवनिंग मस्ती शो में है। और यानी कि वेदर अपडेट की बात करूं तो देखिए अभी तो गर्मी रहने वाली है जमकर, लेकिन ये कहा जा रहा है 7 दिन के बाद मौसम फिर से करवटें लेगी और फिर से बरसात शुरू होएगी। लेकिन अभी के लिए यानी कि गर्मी तो बढ़ेगी जी, क्योंकि जुलाई का महीना और जुलाई के महीने में गर्मी उमस ना हो ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। श्रोताओ, तो इसमें बस हमें अपना ध्यान रखना है, समय समय पर पानी पीते रहिए, और नारियल पानी पीना हमारे लिए बेहद बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये तासीर को ठंडा करता है। ऊपर से आप दही छाछ अपने डाइट में शामिल करिए, सीजनल फ्रूट शामिल करिए, और साथ ही साथ आप बाहर के अगर जूस पी रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जिस फ्रूट से वो जूस बनाया जा रहा है क्या वो फ्रूट फ्रेश है, क्योंकि आप पैसे भी तो फ्रेश दे रहे हैं ना, अच्छे पैसे दे रहे हैं, गले सड़े नहीं दे रहे हैं, मरेला गलेला नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि जो जिस फ्रूट से जूस बनाया जा रहा है तो वो फ्रूट्स यानी कि फ्रेश है या नहीं है, ये भी हमारे लिए ध्यान रखना है। और बाहर की चीज़ें जितना आप कम खाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। इनफैक्ट आप जो भी बाहर से चीज़ें ले रहे हैं उसकी एक बार तलाशी ज़रूर करें कि आखिरकार ये सही है या नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आज मैंने आप सभी से कड़क सवाल भी बहुत ही आसान वाला ही पूछा है कि अगर आपको किसी को हंसाने का मौका मिले तो आप उसको कैसे हंसाएंगे, पहला पॉइंट क्या होगा आपके लिए, क्योंकि आज के टाइम में किसी को हंसाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9837896896 पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। फिलहाल एक और शानदार गाना आप सभी के बीच श्रोताओं, और यूं ही आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि एवरी इवनिंग आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट होती हैं 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, जहां बातें होती है काम की और गाने होते हैं आपके पसंद के क्योंकि बहुत शानदार, क्योंकि देखिए जब गाने ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना। तो चलिए एक और गाना, उसके बाद कनेक्ट होंगे और आप सभी के मैसेज की तरफ भी बढ़ेंगे। फिलहाल के

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं, और आरजे रीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है। समय की बात करूं तो 6:50 हो चुके हैं। अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आप दिल्ली घूमने जाने वाले हैं, वो भी लाल किला, तो मैं आपको बता दूं, यानी कि आज की तारीख 13 जुलाई, परसों यानी कि 15 जुलाई, है ना, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक यानी कि लाल किला में कोई एंट्री आपको नहीं मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बंद रहेगा लाल किला, आप वहां घूमने नहीं जा सकते। 15 अगस्त के बाद फिर से यानी कि आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त यानी कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक नहीं जा सकते, एक महीने के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए बंद किया जा रहा है। और आज का कड़क सवाल भी बहुत ही आसान मैंने आप सभी से पूछा था, अगर आपको किसी को हंसाना हो तो सबसे प्यारा पॉइंट, पहला पॉइंट आपका क्या होगा। तो चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास किनका क्या मैसेज आता है।
1: मूव करे करे लक कतल असला भी लोड करे टाले जा छड़ अखा नाल।
0: हेलो, ये विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि हरियाणा वालों को तो ढोकला में ही ढोकला खिलाकर ही हंसा लेंगे। अरे अरे क्या बात है, ले आइए सर स्टूडियो में भिजवा दीजिए, फिर तो देरी नहीं करनी चाहिए, शुभ काम में देरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगले मैसेज की बात करूं तो मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी कनेक्ट होते हैं। जेठालाल जी, किसी को हंसाने के लिए हम उनकी पसंद और मूड को समझेंगे, उनके साथ अपने मजेदार किस्से शेयर करेंगे और मजाक करेंगे, उन पर हंसने के बजाय उनके साथ हंसने का माहौल बनाएंगे, हल्की फुल्की बातें करेंगे। क्या बात है जी, तो देखिए श्रोताओं आप भी मैसेज करके बता सकते हैं अगर आप किसी को हंसाने का मौका मिले तो। बबली अनजान जी, गीता कश्यप, ललिता जी, लक्ष्मी कश्यप हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और इनका कहना कि हम किसी को हंसाने के लिए खूब अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाएंगे। अरे अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, बिंदास गाने सुना रही हूं, थैंक यू सो मच जी। मैम चाय पी लीजिए, गर्मी कैसी यानी कि गर्मी कैसे करा रखी है आपने? अरे अरे क्या बात है जी, गर्मी मौसम अपनी जगह है, कब करवट ले ले ये भी नहीं कह सकते। और इनका कहना है अगर एक दिन फोन ना हो तो मैम हम आपको मैसेज ही नहीं कर सकते हैं, आपका शो नहीं सुन सकते हैं, हमारे पास एफएम रेडियो सुनने के ओके एफएम रेडियो सुनकर हमें इनको पावर मिलता है। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, और आज के समय में हंसाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो चुका है, क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आदमी हंसना ही नहीं चाहता। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी हंसने की कोशिश करिए। देखिए दुख है, दुख के बाद सुख जरूर आता है, और हमें हर दिन को एंजॉय करना चाहिए। आई नो कि परेशानी हर किसी के लाइफ में है, लेकिन इस परेशानी से हम थोड़ा परे तो हो सकते हैं ना, उसी चीज को सोचेंगे तो कितना सोचेंगे, इसीलिए कुछ अच्छा सोचिए। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो राधिका जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि मैं तो किसी को हंसाने के लिए उसके उनकी मन पसंद जगह घुमाने की बातें करूंगी। क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल श्रोता अभी आपके पास मौका है, एक गाने के बाद फिर से लौट कर आते हैं आप सभी के बीच, बस बने रहिए आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ। फिलहाल यहाँ से मैं लेंगी जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ और मैसेज है उनको भी जरूर शामिल करना है। जी, दीपक जी का मैसेज आता है और इनका कहना है कि देखिए मैम, किसी को हंसाना ना बड़ा ही आसान है। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस उस इंसान की आप तारीफ कर दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में तारीफ कौन नहीं सुनना चाहता है। अगर आप थोड़ी सी तारीफ करते हैं ना, तो इंसान वो अपने आप हंसने लग जाएगा। किसी को चलते चलते राहों में, घरों में, बेबजाय हमें किसी की तारीफ कर देनी चाहिए। क्या पता आपकी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वाह, क्या बात है जी, बहुत प्यारी लाइन आपने कही है।
1: दिल के दरिया में कोई बात छुपी रहती है।
0: विकी सागर जी का कहना है कि आज गाने बड़े प्यारे बजा रही हो। जी, आज आपने जो गाने सुने हैं ना, ऐसे गाने मैं सुनती हूँ तो मैंने सुना है, सोचा कि चलिए आपकी भी पसंद ऐसी है ना, तो मैं ऐसे गाने प्ले कर देती हूँ। फिलहाल यहाँ हमारे साथ कनेक्ट होती है अंशिका जी, और इनका कहना है कि मैम, हंसाना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इंसान को हंसाने के लिए उनकी तारीफ बहुत मायने रखता है, और ऊपर से उनकी पसंद की जो भी उनको पसंद है वो आप दे दो, देखिए इंसान के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने बात कही है। और श्रोताओं, इसी के साथ मिलूंगी यहाँ से जाने की इजाजत। आप सभी का इतना प्यार मिलता है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और देखिए, किसी को हंसाना बहुत आसान है, आई नो कि वो थोड़ा परेशान होएगा, इरिटेट होएगा, लेकिन हमारा काम क्या है, आप उसको तारीफ करिए, उनकी तारीफ करिए, उनके जो भी पसंद की चीज़ें हैं उनको आप दीजिए, देखिए कैसे नहीं हंसती है। और सबसे बड़ी बात है शब्द, शब्द बहुत मायने रखते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, ढेर सारी बातें करेंगे, और यूं ही आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए और यूं ही सुनते रहिए। और आपका ये रेडियो है, अपने शहर का रेडियो है, एक सामुदायिक रेडियो है, जो सुबह से लेकर शाम तक आप सभी को एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, हमारे प्यारे प्यारे आर्जे। इसी के साथ मैं लेती हूँ, बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज

0: मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
3: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
2: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
4: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को RBI की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। NCC के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित NCC की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात $232 अरब से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करत नी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणवाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के

0: ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
1: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
0: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
1: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
0: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
1: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही, बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
0: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
1: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
0: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
1: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
0: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
1: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है, वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
0: जी हाँ, तिरंगा बर्फी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
1: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी, तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
0: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
1: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
0: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
1: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
0: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
1: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
0: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
1: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है, ताकि लोग आसानी से खा सके और साथ ले जा सकें।
0: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
1: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
0: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
1: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं, गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
0: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
1: जी हाँ, बनारसी पान।
0: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
1: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
0: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
1: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
0: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
1: अब हम

0: बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए। यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो जी, नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा। और आज यहाँ बात होगी यहाँ की मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी नई।

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी,
1: और सामने बड़ी से भगौड़ी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुँह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पर अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: सही बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का हर संभव मदद मिलती है, लोगों संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ा

0: आवाज दिया जा रहा है।
1: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुँचने की तैयारी कर रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
0: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गांव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
1: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
0: बल्कि वहां के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
1: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
0: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
0: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
1: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
0: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
1: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
0: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
1: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
0: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
1: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
0: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
0: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
1: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
0: प्राची,
1: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय
0: बाय बाय।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: आप कौन?
3: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AI संचालित डस्ट पोर्टल 2.0 और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। उद्योग आधारित प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री से जोड़ने के लिए दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय तथा MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब समाचार विस्तार से। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में AI संचालित डस्ट पोर्टल 2.0, डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से विकसित ये अत्याधुनिक डिजिटल पोर्टल AI की सहायता से निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की वास्तविक समय में निगरानी करेगा। कार्यक्रम के दौरान डस्ट पोर्टल 2.0 का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार AI निगरानी व्यवस्था को अधिक कुशल, सटीक और प्रभावी बना सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI और डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकार अनुपालन प्रक्रिया को सरल, निगरानी को अधिक प्रभावी और एनफोर्समेंट को अधिक पारदर्शी बना रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक निर्माण एजेंसी स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल निर्माण तथा विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की AI की मदद से रियल टाइम निगरानी करेगा।
6: दिल्ली की पॉल्यूशन की समस्या पे AI एनेबल्ड डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट पोर्टल है, जो कि तकनीक की दृष्टि से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से एक बेहतर गवर्नेंस हमें एश्योर करेगा, एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग एश्योर करेगा। धीरे धीरे हम ये चलान भी जो है मैनुअल की जगह सीधा इस पोर्टल के माध्यम से ही उनको चलान भेजेंगे। ये इस पर्यावरण को बेहतर करने की दिशा में रहेगा। मैं बधाई देती हूँ DPCC को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को।
5: इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितनी भी 500 गज से बड़ी इमारत है, उनकी निर्माण के दौरान निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि धूल मिट्टी को नियंत्रित करने के लिए ये पहला AI आधारित पोर्टल है।
7: आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी पोल्यूशन के ऊपर वार करने के लिए DPCC का पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितने भी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कंस्ट्रक्शन के दौरान। कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे जो धूल मिट्टी उठती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहली बार AI एनेबल्ड एक पोर्टल है, जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं।
5: दिल्ली सरकार राजधानी और आसपास के क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नया सफर योजना लागू करेगी। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनके स्थान पर साफ सुथरे BS6 या कड़े उत्सर्जन नियमों का पालन करने वाले वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत आर्थिक प्रोत्साहन, टैक्स में छूट और स्क्रैप से जुड़े लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत दिल्ली सरकार पात्र नए वाहनों पर 100% मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, पात्र पुरानी यूज्ड गाड़ियों की खरीद पर 10 साल के लिए 50% छूट, रजिस्ट्रेशन फीस और स्क्रैप की जा रही पात्र गाड़ियों के लिए रोड टैक्स और फिटनेस पेनल्टी में छूट देने की सुविधा प्रदान करेगी। इस स्कीम से पुरानी कमर्शियल वाहनों के वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैपिंग को बढ़ावा मिलेगा। इस स्कीम का कुल बजट 9,585 करोड़ रुपए है। ये स्कीम पूरी तरह से डिजिटल नया सफर पोर्टल के जरिए लागू की जाएगी। ये स्कीम पात्र लाभार्थियों के लिए 2 साल तक खुली रहेगी। इस योजना पर परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को साफ हवा और ज्यादा मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार ने अपनी प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है। योजना के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना को अगले माह रक्षाबंधन के आसपास शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के लिए पात्रता सभी संबंधी मानक भी तय कर दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक संकल्प नहीं बल्कि विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: बैठक में योजना की पात्रता संबंधी मानकों पर भी चर्चा हुई। निर्णय के अनुसार योजना का लाभ केवल उसी महिला को मिलेगा जिसका परिवार कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली का निवासी हो, लाभार्थी और उसके परिवार के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। परिवार में आयु के आधार पर सबसे बड़ी महिला ही इस योजना की पात्र होगी तथा एक परिवार से केवल एक महिला को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो महिला पहले से सरकार की किसी पेंशन या अन्य किसी आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार जिस परिवार के पास 4 पहियों का वाहन होगा उस परिवार की महिला को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी सेक्टर 9 में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर आयोजित जागरूकता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची के अपडेट की वर्तमान प्रक्रिया के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना था।
9: विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों तथा समयबद्ध सत्यापन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, त्रुटि रहित और अद्यतन मतदाता सूची ही स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला होती है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे इस विशेष अभियान के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करें। श्री गुप्ता ने समयबद्ध सत्यापन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो पात्र नागरिक आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अवसर से वंचित रह सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गुप्ता ने कहा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, युवा स्वयंसेवक तथा वरिष्ठ नागरिक इस अभियान की जानकारी को प्रत्येक घर तक पहुंचाने में सहयोग करें। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज द्वारका स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय कमेटी बैठक में भाग लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, महिला सुरक्षा तथा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा हुई। इसके साथ ही जनहित से जुड़े कार्यों को अधिक प्रभावी, त्वरित और सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली में सहकारिता विभाग के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज RCS कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान विभागीय कार्यों, योजनाओं तथा भविष्य की कार्य योजना को लेकर अधिकारियों के साथ सार्थक चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज केंद्रीय ऊर्जा तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान दिल्ली के शहरी कायाकल्प, सुलभ आवास योजनाओं और ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय DSEU तथा MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड के बीच 5 वर्षों के लिए एक औपचारिक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से उद्योग आधारित प्रशिक्षण को विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री से जोड़ा जाएगा। इससे कक्षा 12 के बाद विद्यार्थियों को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, डिजाइन तथा अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर करियर बनाने का अवसर मिलेगा।
10: इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप युवाओं को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करना है तथा दिल्ली को देश की उभरती हुई ऑरेंज इकोनॉमी का प्रमुख केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि समझौते के अंतर्गत MEL ट्रेनिंग एंड असेसमेंट लिमिटेड पाठ्यक्रम तैयार करेगा तथा विद्यार्थियों को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा। DSEU परिसर परीक्षाओं और विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी निभाएगा। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार की ये पहले समय की आवश्यकता के अनुरूप और विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय स्तर की डिग्री तथा उद्योग समर्थित नीति निर्माण के माध्यम से युवाओं को भविष्य के रोजगारों के लिए तैयार करेंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि समझौते के फलस्वरूप छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार तथा उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
5: दिल्ली विश्वविद्यालय DU और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर DU कुल सचिव डॉ. विकास गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय में साइबर अपराध की रोकथाम, साइबर हाइजीन, साइबर जागरूकता, क्षमता निर्माण, शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान, इंटर्नशिप तथा छात्र सहभागिता को बढ़ावा देना है। वडोदरा के नवरचना विद्यानी विद्यालय के छात्रों ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान छात्रों को संसदीय कामकाज, विधायी प्रक्रियाओं और जनसेवा की जिम्मेदारियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मॉडल टाउन क्षेत्र में लगभग 1100 पौधे लगाए गए। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली वासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन देने के संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ऋषित गर्ग को 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AI संचालित डस्ट पोर्टल 2.0 और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने प्रमुख महिला समृद्धि योजना का आधिकारिक नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना किया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये दिए जाएंगे। दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
11: आगे सैलरी
12: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
13: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
14: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
13: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
15: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: हेलो जी, कैसे हालचाल है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और इस वक्त फिर से हम एक खास मेहमान के साथ स्टूडियो में हमने जो है एंट्री दे दी है, यानी कि मेरी तो एंट्री होगी और मेरे साथ ही साथ एक और बहुत ही कमाल के शख्स हैं, एक बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है जो यहाँ पर आ गई है हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आपसे गुफ्तगू करने। और ढेर सारी वो अपने साथ पूरा एक पिटारा लेकर आई है, ढेर सारी डायरी लेकर आई है, बहुत सारी उनके पास एक पोर्टली है पूरी जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। तो आज कौन है जो खजाने से भरपूर हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में आ चुकी हैं, दस्तक देंगी अपनी आवाज के माध्यम से, आपको आज करेंगी ढेर सारा यू नो एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो लेकर आएंगे, बहुत सारी बातें आपको बताने वाली है, बहुत कुछ सुनाने वाली है। एंड शी इज अल्टीमेट, जिन्हें कह सकते हैं एक पैकेट आज आपको हम देने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है मुझे खुद को भी नहीं पता, आई एम वेरी सरप्राइज। बस इतना पता था कोई आने वाला है, लेकिन वो क्या आने वाला है ये भी नहीं पता था। एंड यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता लगता है कोई गेस्ट को हमें इंटरव्यू करना है तो उसकी डिटेल्स हमारे पास होती है, लेकिन ये जो मैम आई है ना, इनकी कोई डिटेल है ही नहीं हमारे पास। अब जो भी होगा एक्सक्लूसिवली लाइव होगा। सो सबसे पहले तो वेलकम बैक है मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
5: हेलो एवरीवन, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आनंद आपके साथ आकर।
4: थैंक यू सो मच।
5: आप भी का जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि जुड़े रहिएगा, बहुत दिल पसंद नगमे सुनने को मिलेंगे, कुछ दिल को छू जाने वाली नज़में और बहुत सारी बातें दिल से दिल।
4: क्या बात है, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि आज एक नहीं दो दो एंकर आपको सुनाई दे रहे हैं, दो दो अनाउंसर आपको सुनाई दे रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैम बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब किसी की एक तो आवाज इतनी अच्छी, ऊपर से उनकी बात इतनी अच्छी, फिर उनका फ्लो इतना बढ़िया, तो वो पूरा एक नो माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दो एंकर यहाँ पे बैठ के आज श्रोताओं को एंटरटेन करने वाले हैं।
5: सो प्रोग्राम का टाइम एक्सीड हो जाने वाला है।
4: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे मुरादाबाद की जनता को हम जानना चाहती है, मुरादाबाद की ऑडियंस की, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं।
5: मैं जो भी कहूंगी वो आप सब भूल जाएंगे, आपको याद क्या रहेगा, मेरी आवाज या जो कुछ मैं सुनाऊंगी। तो मुझे लगता है हमारी कविताएं, हमारी कहानियां, हमारी नज़में, ये जो हैं हमारे दिल से आती हैं और यही हमारी रूह का रिफ्लेक्शन है, आईना है।
4: एब्सोल्युटली।
5: तो बजाय इसके कि मैं कुछ और इधर उधर का इंट्रोडक्शन दूं जो आप भूलें और आगे बढ़ जाएं, आप कविताओं से शुरू करते हैं और उसके जरिए आप मुझे खुद ब खुद जान जाएंगे। और हाँ, अगर आप मुझे दोबारा सुनना चाहेंगे तो फिर मेरी ये आवाज ही मेरी पहचान होगी।
4: एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है मैम ने कर दिया, एक आपको हिंट दे दिया, एक क्लू दे दिया है कि वो क्या करने वाली है, वो तो वही बताएंगी। तो मैम प्लीज, शालिनी मैम, मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, कुछ आपसे ही शुरुआत हो जाए प्रोग्राम की।
5: बिल्कुल। तो एक छोटी सी बात है कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो उसी के बारे में कुछ लाइनें हैं, एक छोटी सी नज्म है, सुनिए। कि जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा,
4: वाह,
5: जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, मैं तोड़ू उस खामोशी को मुझसे ये हट कर बैठा, तब तब कोई नज्म किसी नन्हे पौधे सी मुस्काई, तब तब अल्फाजों ने धीरे से ली है अंगड़ाई, जब जब रूह खंगाली मैंने, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, मुंह पर उंगली रख कर उनको बिठा दिया खामोश पर, चुपके चुपके से, चुपके चुपके से वो सारे बन गए दोस्त हमराज मेरे, फिर नज्म ढली कविता पनपी, बन गए कहानी राज मेरे, बन गए कहानी राज मेरे।
4: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम। आपने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है अपनी पंक्तियों के साथ, जो आपने अपने आप कुछ किया है, लाजवाब, मतलब ब्यूटीफुल लोग, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आप क्या स्पेशल करने वाले हो। कहते हैं ना, एक कलाकार की सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो जब अपनी कलम से लिखता है तो उसकी लिखाई जो है उसके शब्दों में जब आ जाती है तो माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। वही आज आप कर रहे हो शालिनी जी, थैंक यू सो मच। सो जितने भी लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपको मैम को सुन के डेफिनेटली मजा आने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है, मतलब ये तो कह सकते हैं एक डेमो था, ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैम, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको हमारे स्टेशन में आके कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और स्टेशन में आने से पहले ही मुझसे पूछा जा चुका है, लोगों ने मुझसे पूछा आरजे आनंद के साथ रिकॉर्ड करने वाली हो।
4: क्या बात है, मतलब तो आपको उससे पहले नहीं पता था कि आरजे आनंद भी कोई एफएम पर है?
5: नहीं, मुझे पता था क्योंकि मैंने सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने फैंस भी हैं आपके।
4: मैम ये तो बस कह सकते हैं ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं और जब हम मेहनत करते हैं तो वो लोगों को धीरे धीरे पसंद आने लगता है, जैसे कि अभी आपका काम हमारे लिसनर्स को और हमें पसंद आने वाला है। सो मैम, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि आपको ये लिखने की क्यूरियोसिटी कैसे आई, कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
5: मुझे लगता है कि लिखना मेरे को जीन्स में मिला है। मेरे मम्मी डैडी भी लिटरेरी है, माँ मेरी लिखती है, बहुत खूबसूरत भजन लिखती है, तो लिखना शायद विरासत में मिला है मुझे, और शायद को हटा देते हैं, डेफिनेटली विरासत में ही मिला है मुझे। और धीरे धीरे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने का शौक भी आपको लिखने की एक कुलाहट देने लगता है।
4: एब्सोल्युटली, बिल्कुल।
5: तो पढ़ने के शौक से ही ये शुरू हुआ है, किताबों की खुशबू से ही ये लिखना शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि जब मेरे, जो मैंने अपनी बात इसमें लिखी है कि जब जब कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, एक्चुअली वही बात है
4: कि
5: जब भी मुझे कुछ ऐसा फील हुआ मैंने उसे लिखा, बस इस तरह लिखना शुरू हुआ है। मैं कोई ट्रेंड या प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, मैं बस मन की बात को लिख पाती हूँ।
4: That's very nice. क्योंकि मैम लिखने के लिए भी आपको फील करना पड़ता है, आपको वो इमोशंस को यू नो कहीं ना कहीं अगर आप कागज पे उतार रहे हो तो उससे पहले आपको वो चीज को अपने जहन में लाना पड़ता है ना। जब तक आप उस फील को फील नहीं करोगी, उस मोमेंट को फील नहीं करोगे, तब तक आप वो लिख ही नहीं पाओगे, है ना। तो इमोशन
5: शब्दों में
4: जान नहीं आएगी, जाएंगी नहीं। एग्जैक्टली, तो वो चीज तो कहीं ना कहीं हर कोई नहीं कर पाता है ना।
5: हाँ, तो ये ईश्वर की कृपा।
4: हाँ, exactly.
5: कह सकते हैं आप।
4: ट्रू, नाइस। वैसे जो ब्यूटीफुल आपकी आवाज है, आप खुद भी इतने ब्यूटीफुल है, नो डाउट।
5: सो
4: थोड़ा सा मैं आपके बारे में ये और जानना चाहूंगा कि मतलब प्रोफेशनली आप क्या करती हैं? आप
5: एजुकेशन आपका? सच बताऊं तो वो सब करती हूँ जिसका डेजिग्नेशन होता है कुछ नहीं।
4: ओह माय गॉड,
5: कहते हैं ना कुछ नहीं करते हैं टाइप, लेकिन मैं बहुत कुछ करती हूँ। वैसे मैं होम मेकर हूँ, मैं काफी सालों तक फोटो एडिटिंग्स में काम करती रही हूँ, वीडियो एडिटिंग्स में भी काम किया है, और अब मैं होम मेकर हूँ, तो मैं 24 घंटे बाद 28 घंटे का काम करना चाहती हूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, बुक रिव्यूज करती हूँ, पोइट्री करती हूँ, और ट्रैवल की शौकीन हूँ, जो आपको मेरी कविताओं में भी मिलेगा, पता चल जाएगा।
4: क्या बात तो है, बहुत ही
5: ट्रैवल करती हूँ,
4: बहुत ही बढ़िया। और जब आप नए नई जगह पे ट्रैवल करते हैं तो आपको नया नया कंटेंट भी मिलता है।
5: बिल्कुल,
4: है ना,
5: लिखने की प्रेरणा। और मैं नेचर लवर हूँ, तो हमेशा प्रकृति के करीब जाकर वो प्रेरणा लिखने का, जो अंदर से एक मन, अंदर से एक फील, वो सब अपने आप आ जाती है।
4: That's very nice. शालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक स्पेशल सेशन में मैम आई हैं, बहुत सारी चीजें लेकर पूरी प्रिपरेशन के साथ आज वो आई हैं आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए। मैम आगे बढ़ेंगे, क्या स्पेशल सुनाना चाहेंगी इसी बीच आप?
5: तो हम,
4: आपने अपना तारुफ तो करा दिया। यस, हाँ, बचपन। एग्जैक्टली, मतलब फ्लैश बैक में लेके जाएंगे आज आप।
5: तो बचपन सभी के दिल के करीब होता है, तो एक छोटी सी नज्म सुनाती हूँ जो आपको बचपन की याद दिला देगी,
4: मतलब फ्लैश बैक में ले जाएगी आज हम सभी को। श्योर मैम।
5: कि बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, वो कागज की कश्तियां जो पानी में उतारते थे, वो भीगती थी, डगमगाती थी, डूब जाती थी, फिर दूसरी बनाते थे, ये सोचकर इस बार तो तैरी जाएगी, वो भी डूब जाती थी, बनाते थे, कभी उससे बड़ी, कभी छोटी, कभी कागज बदलते थे, पर वो कोशिशें कम नहीं होती थी कभी, वो कश्ती दूर तक जाएगी, ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा, वो कश्ती दूर तक जाएगी, ये उम्मीद कायम रही जब तक
4: बचपन
5: रहा, बड़े क्या वो खूबसूरत कश्तियां जिंदगी से चली गई, बना तो भी सकते हैं, जाहिर है बना तो अब भी सकते हैं, पर वो जज्बा कहाँ से लाएंगे?
2: क्या बात है?
5: तैरिंग
2: तैरिंग ट्रू,
5: वो जज्बा ही तो था. खूबसूरत वो कश्तियां नहीं थी, वो जज्बा ही था जो बचपन में तैरता था और बड़े होकर डुबो दिया हमने.
2: अरे बाप रे, मतलब मैम ये मुझे लग रहा है कि आपने ना एकदम असलियत से रूबरू करा दिया है हमें.
5: याद आ गया ना बचपन की?
2: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब एकदम सच्चाई का आईना दिखा दिया आपकी छोटी सी चार लाइनों ने. वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही धमाकेदार आपने सुनाया. अच्छा ये आप खुद से लिखते हैं?
5: जी ये सब मेरी खुद,
2: ये आपकी खुद की लिखी हुई है?
5: जी.
2: क्या बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए सबसे बड़ा जज्बा तो आपका यही होना चाहिए कि भाई आप पहले उस चीज को जाओ, उस चीज को देखो, उस चीज में घुसो, उसके बाद फिर उसे पन्नों पे उतारो. एंड आई थिंक इट्स नॉट इजी.
5: नहीं तो पर जो आपने जिया है,
2: हाँ,
5: उसे जो आपने देखा है, जिया है, जो आप महसूस कर सकते हो वो आप पन्नों पे उतार सकते हो.
2: Absolutely.
5: अगर आपने जीते समय महसूस नहीं किया, हाँ, अगर आप डूबे नहीं, ऊपर ऊपर से निकल गए,
2: हाँ,
5: तो

0: ये सुनवा सकते।
1: क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैम ने गाया, बहुत मजा आ रहा है। आप तो मुझे लग रहा है कि मल्टी टैलेंटेड है, अच्छा बोल भी रहे हैं, अच्छा लिख भी रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं भाई साहब, बहुत मजा आ रहा है। नो डाउट कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा एवरीबॉडी। फिलहाल गाने की बात चली तो पहले ही गाना सुनेंगे, उसके बाद वापस मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। इस गाने के बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या गाना था यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाने को सुन के ना मुझे तो एकदम वो बारिश वाला वेदर याद आ गया। इतना ब्यूटीफुल ट्रैक जिसको सुनते ही हम फ्लैश बैक में चले गए। वेल, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ शालिनी मैम मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जो आपके साथ ढेर सारी बातचीत कर रही है और लिखकर लाई है अपने दिल के जज्बात, जो सीधा आप तक डिलीवर कर रही है हमारे स्टेशन के माध्यम से। आई एम सो ग्लैड मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मजा आ रहा है मुझे सेशन को एंजॉय करते हुए आपके साथ। मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद को भी नहीं पता, बट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैम, अच्छा मैं आपकी कविताओं के बीच में और आपकी शेरो शायरी जो आप रहे हो बहुत तो है ही अल्टीमेट, नो डाउट। इसी बीच मेरी खुद की एक गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आपने कई बार देखा होगा कि आजकल जेंजी को ना ऐसे एकदम से हम किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम में, हमें ऐसा लगता है कि भैया हमें तो प्यार ही हो गया। मतलब आई डोंट नो लव है या फिर अट्रैक्शन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम में तो प्यार शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में तो नहीं है। जैसे वो अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट होना। तो जैसे हम फर्स्ट टाइम में किसी को देखते हैं कॉलेज में, मार्केट में, कहीं पे भी, आजकल के जेंजी का है ही ये हाल। अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, उसको प्यार हो गया है, तो उसके लिए कुछ है आपके पास?
1: बिल्कुल, और ये जेंजी का नहीं है, ये तो हमेशा से लव एट फर्स्ट साइट तो शायद हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ,
0: अरे वाह।
1: तो अगर आप पहले देखें तो सॉरी, तो अक्सर ऐसा भी होता था कि हमने कुछ ऐसा देखा कि हमें अट्रैक्शन हो गया, या हमें ऐसा फील हो रहा है कि बस यही तो चाहिए था, और हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है अभी।
0: ठीक है, तो बस हम इमेजिनेशन में खोए हुए हैं।
1: हाँ, तो अब आप सुनिए, आप इमेजिन करिए, आंख बंद करिए और मेरे लाइनों के साथ साथ चलिए।
0: ठीक है, ठीक है।
1: तो कहा है कि पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, गुलाबी सी साड़ी शायद हाथ में थाम रखी थी, मखमली पांव झांक रहे थे, एक पांव में काले धागे में पिरोए काले मोती पड़े थे, नजर से बचाने के लिए होंगे शायद। बार बार भीड़ में गुम जाती थी वो, मैं उन्हीं पांव का पीछा करता फिर खोज लेता था उसे। उसके पांव मेरी आंखें, मेरी आंखें उसके पांव, लुका छिपी खेल रहे थे जैसे। गुम हो गई वो, गुम हो गई वो, और मैं चेहरा ना देख पाया था, बस वो पांव आंखों में लिए घर लौट आया था। रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे, रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे, सुबह होते ही फिर वही मंदिर की सीढ़ियां और वही मैं। हर रोज सुबह शाम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, दुआएं मांगने लगा हूं, बंदगी सीखने लगा हूं। इसे मोहब्बत कहते हैं या इबादत?
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मैम। क्या खूब आपने लिखा, मजा आ गया इसको सुनकर, मजा आ गया वाकई में। आई एम श्योर दोस्तों आपको भी डेफिनेटली मजा आ ही रहा होगा। कॉन्वर्सेशन इतनी अमेजिंग चल रही है, बातें इतनी ब्यूटीफुल हो रही है, तो ऑफकोर्स मजा तो आना बनता है। वेल, आगे बढ़ते हुए मैम आपका फिर से वेलकम बैक करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप हमारे लिसनर्स को तमाम सारी अपनी लिखी हुई बातों से रूबरू करा रही है, वो ताजा तरीन बेहतरीन बातें जो है आप हमें वापस याद दिला रही है, जो छोड़ के आ चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो पे, जो आज अपनी उन यादों में वापस चले जाएंगे। बिल्कुल मैम, और मुझे लगता है कि यही एक खूबसूरत बात होती है इन कविताओं की, इन पोइट्रीज की, कि ये हमें फिर से जिंदा कर देती हैं। अगर हमारी कुछ चीज हमें खो भी गई है ना, मिस हो भी गई है, अगर हम इनको सुनते हैं तो लगता है कि वाह, हमारी सामने पूरी पिक्चर आ जाती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ये खूबसूरत एहसास है, और जो आज वो एहसास को आप जगाने के लिए यहाँ आ गई है,
1: तो
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि गाइस इस तरह का टैलेंट हर किसी में नहीं होता, और जिसमें होता है फिर तो बल्ले बल्ले। और यार मैम आपका गॉड गिफ्ट है आई थिंक।
1: हाँ बिल्कुल,
0: बस आपने इसको एनहांस कर दिया है,
1: इसको एनहांस कर दिया है। बिल्कुल, मैंने कहीं कुछ सीखा नहीं है, और बचपन से स्टेज पे मेरी मम्मी मुझे भेजती रही कुछ कुछ चीजें सिखा के, मुझे कविता पढ़ना सिखाया, मुझे बाकी चीजें डिबेट सिखाई, और उसके बाद वो चीज मैं शायद पॉलिश करती रही, उन चीजों को वक्त देती रही, और जिसमें आपका दिल लगता है ना, True. वो चीज अपने आप पॉलिश हो जाती
0: Absolutely.
1: है.
0: जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, पैशनेट होते हो ना, तो फिर आपका पोटेंशियल, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर आने लगता
1: बिल्कुल.
0: है. और आप फिर उसमें आपको ये भी नहीं लगेगा मैं इससे बोर हो रहा हूँ, आप इंजॉय करोगे, इंजॉय लॉट. आप जितना ज्यादा उसमें घुसोगे उतना आपको मजा आएगा. और जिस चीज में आपको मजा आता है ना, वही चीज अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर भी मजा आता है.
1: बिल्कुल,
0: है ना.
1: और जैसे कि अभी आपने कहा था कि कविताएं जैसे पीछे ले जाती हैं कविताएं, तो मैंने भी ऐसे लिखा था कि कविताएं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सब चिट्ठियां हैं.
0: क्या बात है.
1: तो वो चिट्ठियां जो या तो अधूरी रह गई और या अपने पते तक पहुंच नहीं पाई.
0: करेक्ट.
1: तो प्रेम हो या नाराजगी हो, इजहार हो, मनोहार हो, समर्पण हो, दर्द हो या टीस हो, या आक्रोश हो, इन सब को किसी ना किसी पते पर पहुंचना था.
0: करेक्ट.
1: लेकिन ये रास्ते में खो गए. अगर ये सब अपने पते पर पहुंच जाते तो इनका सफर खत्म हो जाता.
0: खत्म हो जाता
1: और वजूद.
0: एब्सोल्युटली.
1: इन्हें कोई मोड़ मार के हवाई जहाज बना के उड़ा देता. कोई इसमें चना मुरमुरा खा लेता.
0: करेक्ट.
1: कहीं ये कूड़ेदान में जाती और कहीं अलाव में जल गई होती. हो सकता है कुछ वक्त के लिए इन चिट्ठियों को संभाल लिया होता किसी ने, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इनका वजूद खत्म होना ही था.
0: होना ही था.
1: तो वो चिट्ठियां जो किसी पते पर पहुंच नहीं पाई वो कविताएं हो गई. और ये कविताएं आसमान में लटके सितारों की तरह टिमटिमा रही हैं. स्याह रात में लाखों जुगनुओं की तरह जगमगा रही हैं. महक रही हैं जैसे हिरन में कस्तूरी महकती है, चहक रही हैं जैसे भोर में चिड़ियां चहकती हैं. महफिलों की शान और तन्हाइयों की जान हो गई ये कविताएं, लाखों दिलों की मेहमान हो गई.
0: ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या बात है. लाखों दिलों की मेहमान हो गई, क्या बात है. बहुत बढ़िया. और आज की हमारी जो मेहमान है वो शालिनी जी हैं, और जो हमारे साथ लगातार बहुत अच्छी अच्छी बातचीत कर रही हैं. और देखो ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा. आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है. बहुत मजा आ रहा है. टू बी वेरी मैम, बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है जब हम टाइम देख रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 20 मिनट कैसे हो गए. अनबिलीवेबल इस कॉन्वर्सेशन को चलते चलते. प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा, थोड़े से कुछ और मैम के किस्से और कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें भी सुनेंगे. उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जो है पूछेंगे मैम. बट उससे पहले मैम हम सोच रहे हैं कि ये सब बीच में एक और एंटरटेनमेंट का अगर तड़का लग जाए तो मजा आ जाएगा. एक और खूबसूरत सा गीत जो आप चाहती हैं हमारे शो को एक बार तो ये सुनवा देना चाहिए, मजा आ जाएगा.
1: तो वो सुनाते हैं

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी एंजॉय किया। आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। यस, आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। ऑफकोर्स उनकी बातें आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होंगी। आई एम श्योर बहुत सारी उनकी कविताएं आपको फ्लैश बैक में भी लेकर चली गई होंगी। आज हमारे साथ शालिनी जी स्टूडियो में मौजूद है, ढेर सारी बातचीत वो कर रही है। लेकिन मैं एक चीज उनसे पूछना चाहूंगा, मैम आप मुरादाबाद में कहाँ से बिलोंग करती है, थोड़ा मैं भी तो जानू आपके बारे में, थोड़ा सा ये बताइए आप।
1: मैं ओरिजिनली बरेली से हूँ।
0: अच्छा, ओके।
1: और रह रही हूँ यहाँ लगभग 20 साल से,
0: मुरादाबाद
1: में ही हूँ और पैसिफिक स्टार होम में रहती हूँ।
0: अरे वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और आज फिलहाल वो रेडियो के स्टेशन में आ गई हैं, रेडियो की दुनिया में आ गई हैं, जहाँ पर अपनी लिखी हुई वो सारी बातें आज आप तक पहुँचा रही हूँ।
1: शायद टू बी हियर,
0: थैंक यू मैम। एंड आई डोंट नो कि इनकी सारी बातें हम आप तक पहुँचा पाएंगे या नहीं, बट मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बचा के रखनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर वापस काम आ सके। दोबारा भी तो बुलाना है ना फिर उनको मुझे। सो वेल, अभी मैम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई एक ऐसी कविता या कोई चार पंक्तियां अगर आप हमारे नेचर के लिए, पहाड़ों के लिए करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे माउंटेन बहुत पसंद है। अगर मैं बात करूं ट्रैवलिंग की, तो अगर हम ट्रैवलिंग में जब भी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और वो अगर माउंटेन वाला एरिया मिल जाए तो मजा आ जाता है,
1: माइंड
0: ब्लोइंग।
1: तो
0: मतलब
1: एक नंबर की घुमक्कड़। अरे
0: क्या बात है,
1: आपको सुनाती हूँ जो मैंने अपनी पहाड़ की घुमक्कड़ी के दौरान महसूस किया है वो। और अब अगर सुनने वाले भी आंख बंद करेंगे तो मुरादाबाद
0: पहुंच ही जाएंगे,
1: पहाड़ पर
0: पहुंच जाएंगे। तो चलो हम लोग फील करते हैं,
1: बिल्कुल
0: पहुंचते हैं पहाड़ों की दुनिया में।
1: इन पहाड़ों में बंजारापन मेरे लिए सुकून की परिभाषा है। ये सूरज से पहले अरुणा का आना, जैसे प्रियतम के लिए रेड कार्पेट बिछाना, हवाओं में बहता चिड़ियों का संगीत और बादलों का मखमली शामियाना, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और कदमों का खुद ब खुद सध के चलते जाना, सुबह जैसे अंगड़ाई लेकर जाग रही हो और मुझे अकेला पाकर कविता का मुझसे बतियाते हुए साथ चलते आना, घरों से उठते धुएं का सर्द मौसम के साथ मिलकर हवा में तस्वीरें बनाना और मेरा इस सारे आलम में खुद के भीतर बेआवाज उतर जाना, सुबह का दोपहर को लांघ कर बेसब्र हो शाम से मिलने चले आना और शाम का खुद आसमान में रंग बनकर बिखर जाना, आसमां का सारे रंगों के साथ नदी में डुबकी लगाना और नदी का लहराते बलखाते सारी धरा को धानी रंग जाना, कुदरत की गलवैयां डाले कविता का सारे रंगों के साथ मेरे मन समा जाना और मेरा दुआ करना कि यूं ही फूले फले ये पहाड़ ये नजारे, कि बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना।
0: क्या बात है, बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना, बिल्कुल। और ये आना जाना तो बिल्कुल लगा रहेगा मेरे दोस्त। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो बस आप मैम की चार पंक्तियां जरूर याद कर लीजिएगा, शायद आप जब जब जाएंगे तो आपको ये पंक्तियां याद आती रहेंगी। एंड मुझे लगता है कि इन पंक्तियों से तो सच में हम सब पहाड़ों में पहुंच ही गए मैम, आज बहुत मजा आ गया। और आपकी इन लाइनों से मुझे लगता है कि वाकई में आप एक नंबर की घुमक्कड़ तो
1: है,
0: इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से लिखा है ना वो बिल्कुल हमें ओरिजिनल फील दे रहा था, लग रहा था कि हम वहां पहुंच चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। एंड आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी जरूर मजा आया होगा। सो मैम, अब चलते चलते कोई प्यारी सी चार पंक्तियों के माध्यम से कोई एक सोशल मैसेज, कुछ अच्छा विचार जो आप रखना चाहें हमारे लिसनर्स को, जो आप अपने कविताओं के कहानियों के माध्यम से बताना चाहें, कोई संदेश आप देना चाहें इस प्रोग्राम के माध्यम से।
1: बिल्कुल, तो एक छोटी सी बात कहूंगी और ये है ऑर्गन डोनेशन के बारे में।
0: ब्यूटीफुल,
1: सुनिए प्लीज। रूह जब आजाद हो जिस्म के इस पहरन से,

0: ये बूटी, ये झालर, ये सलमा सितारे, ये मोती नगीने, ये गोटा किनारे, ये सब हमारी आंखें, हमारे दिल, हमारी किडनी के बारे में है। ये बूटी, ये झालर, ये सलमा सितारे, ये मोती नगीने, ये गोटा किनारे, जलने न पाए छुटा लेना सारे, कि इनके लिए हैं लंबी कतारें। किसी का दिल इंतजार में दिल के हमारे, और किसी की नजर के इंतजार में खुद नजारे। क्यों मिट्टी मिलाएं, क्यों मिट्टी मिलाएं, लुटो ये सारे कि जीते रहेंगे तुम्हारे हमारे,
1: जीते रहेंगे तुम्हारे
0: तुम्हारे हमारे।
1: हमारे। सो नाइस मैम, थैंक यू सो मच। आपसे बातचीत करके सच में बहुत मजा आया, एंड आई एम श्योर ये जितने लोगों ने सुना होगा उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। अपनी
0: थैंक यू सो
1: बातें यहाँ
0: मच,
1: रख के
0: यस बहुत अच्छा
1: अपने लिसनर्स के साथ आपको भी बातचीत करके डेफिनेटली मजा आया होगा, क्योंकि आज वो लिसनर मेरे नहीं आपके भी हो गए, क्योंकि इतनी
0: बिल्कुल
1: मनमोहक वाली आवाज है आपकी, इतनी अच्छी आप बोल रहे हैं, तो यू नो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड एक कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा थॉट या कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है आप कहना चाहे मुरादाबादी से तमाम लोग आपको सुन रहे हैं।
0: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जितने भी क्रिएटिव आर्ट हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, चाहे वो लिखना है, चाहे वो गाने हैं, या कुछ भी, जो भी क्रिएटिव आर्ट हैं, वो आपको एक जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का सलीका सिखाते हैं। तो लगे रहिए इसमें और एंजॉय करते रहिए।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा। एंड जल्दी फिर आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ और नई बेहतरीन बातों के साथ, तब
0: बिल्कुल,
1: तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।
0: थैंक यू
1: थैंक यू सो मच,
0: सो
1: एंड गाइज आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। छोड़ के जा रहा हूँ कुछ अमेजिंग ट्रैक के साथ, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात, तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
5: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
5: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
6: मुरादाबाद
4: से संपर्क कीजिए।
5: नियम और शर्तें लागू।
7: पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
6: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
7: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
8: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
7: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
9: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
7: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
10: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
11: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
10: Other operating income is not included.
7: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
12: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
7: नागालैंड के चुमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
13: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
7: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
14: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस: India and US engaged for balanced and commercially meaningful trade pact, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, dismisses media reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and four others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history, beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lord's.

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। प्रोग्राम में आप सभी का फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। और आज हमारे स्टूडियो में एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। किस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक खास मेहमान को इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है, जरूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का सबसे अनमोल हिस्सा है, लेकिन अक्सर हम उन्हीं की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हीं पूरी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय चंदा, कॉर्निया स्पेशलिस्ट सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए।
1: थैंक यू आनंद, मेरा नाम डॉक्टर संजय चंदा है
0: जी।
1: मैं सीएल गुप्ता आंखों के संस्थान में कॉर्निया डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हूँ
0: जी। सर,
1: मेरी ट्रेनिंग एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में हुई, जहाँ मैंने हाई वॉल्यूम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी, रिजेक्टिव सर्जरी और कैटरेक्ट सर्जरी में काफी दक्षता हासिल करी है।
0: अरे वाह, ब्यूटीफुल। सर ने बहुत ही मतलब प्यार के साथ जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया है मुरादाबाद वालों को। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको हमारे एफएम स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है, मुरादाबाद के रेडियो में आके कैसा लग रहा है आपको?
1: जी, मैं बहुत खुश हूँ, आज अपने आप को बहुत गर्व भी महसूस करता हूँ।
0: अरे वाह, वेरी नाइस,
1: हम आपसे जुड़ सके हैं और इसके जरिए हम बाकी लोगों से भी अपने प्रिय बाकी सबसे जुड़ेंगे। इस बात में बहुत देर सारी खुशी,
0: क्या बात है। थैंक यू सो मच संजय जी। सर, आप यहाँ पर इतना कीमती समय निकल कर आए हैं डॉक्टर संजय जी। सर, मैं आपसे यहाँ पर डेफिनेटली सवाल जवाब करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैंने अपने लिसनर्स के साथ किया था, उनसे मैंने साझा करी कि हमारी शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत चीज होती है हमारी आंखें, जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं ना, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले यही बताइए कि हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारी आंखें, जिनसे हम पूरी कायनात, पूरी ये दुनिया देखते हैं खूबसूरत।
1: जी, आपने बखूब कहा कि आंखें हमारी एक महत्वपूर्ण इंद्रियों में से है।
0: बिल्कुल,
1: और सटीक जानकारी, समय पे चेकअप और अपनी सूझबूझ के जरिए हम अपनी आंखों की सेहत को लंबे समय तक अच्छी सेहत में रख सकते हैं। इन विषयों पे हम आपसे चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, हम साथ डॉक्टर संजय चंदा जी मौजूद हैं। आज आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स जब बात आती है हमारे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट की, तो डेफिनेटली आंखों की बातें होना तो बनता है। फिलहाल डॉक्टर साहब, आपका हम वंस अगेन वेलकम करेंगे। और लिसनर्स, चलिए सर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोजाना कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अपनी रूटीन में डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए।
1: देखिए आनंद, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें आंखों की सेहत को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग नहीं देखना चाहिए।
0: ट्रू,
1: डेली अच्छी नींद लेना, पौष्टिक आहार करना, समय पे आंखों की चेकअप करवाना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय पे स्क्रीन पे काम करते हैं, वो अपनी आंखों को मसले नहीं और टाइम टू टाइम अच्छे ब्रेक ले, रिलैक्स हो। जो कड़ी धूप में आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, वो अपनी धूप में सन प्रोटेक्शन करें। बच्चे या युवा जो लंबे समय तक अपनी आंखों की चेकअप नहीं कराए, वो अपने रिफ्रेक्टिव करेक्शन की अच्छी जांच कराए। एट द सेम टाइम हमारे लिए ये भी जरूरी है कि आप पौष्टिक अच्छे खाना खाएं, जिसमें से विटामिन ए रिच जाए, जैसे दूध हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, या फिर वो सारे जो आंखों की सेहत के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें आती है कि जितने लाल पीले आपको फ्रूट्स या सब्जियां दिखे, जिनमें से पपाया, मैंगो, कद्दू, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हैं।
0: अच्छा, कैरेट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है?
1: जी जी, आपने सही कहा, कैरेट्स एक विटामिन ए रिच एक अच्छी सब्जी और अच्छी हमारी आंखों की हेल्दी मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। टाइम टू टाइम इसका भी आप सेवन करते हैं तो हमारी आंखों को विटामिन ए की पर्याप्त परिमाण मिलती है, जिससे आंखें बिल्कुल सेहतमंद रहती है।
0: डॉक्टर साहब, कहा जाता है गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो क्या सच में ये जेन्युइन है?
1: जी जी जी, गाजर में अच्छी परिमाण में विटामिन ए है और विटामिन ए हमारे विजुअल साइकिल को बनाए रखने में बेहद मदद करती है। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है केवल गाजर ही नहीं, जो आपको गाजर ना मिले तो सारे लाल पीली सब्जियां जिसमें सारी भरपूर परिमाण में विटामिन ए होती है, उन सारी चीजों का, फ्रेश वेजिटेबल्स का अच्छे से सेवन करिए, इससे आंखों की सेहत अच्छी बनी रहे।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को। प्रोग्राम आपका फेवरेट है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर संजय चंदा जी, जो कॉर्नियो स्पेशलिस्ट हैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट।

0: पे दे रहे हैं बेसिकली
1: बिताते हैं, तो इससे क्या होता है इनकी आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई, बाहर खेलना कूदना और ये वक्त बिताना उनका बिल्कुल कम हो गया,
0: कम हो गया है राइट।
1: देखिए एक 2024 में जर्नल में आर्टिकल आई है जिसपे उन्होंने अनुमान लगाया कि 2050 तक लगभग आधी मानव जाति 50% ह्यूमन पॉपुलेशन चश्मा लेकर पहन के बाहर घूमते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ आप और हम जब सड़क चलेंगे हर दूसरे आदमी की आंखों में चश्मा होगा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के दिन अगर हम चाइना में देखें तो कक्षा 10 में पास होते हुए बच्चों में 100 बच्चों में से केवल 10 ही बच्चे ऐसे नॉर्मल होंगे जो बिना चश्मे से, 90% चश्मे पहन रहे। और हमें उन देशों से भी सीखना चाहिए जो आर्थिक तरीके से पूरे सशक्त है, जैसे मैं ये उदाहरण देना चाहूंगा जैसे स्वीडन। अब से कुछ सालों पहले उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई कि वो पेपरलेस हो चुके और 100% डिजिटल रिवोल्यूशन को अपनाया, सारी पढ़ाई लिखाई जॉब और सारी चीजों में उन्होंने डिस्प्ले स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। आज के जमाने में जितने युवा निकले न केवल उनकी मेमोरी रिटेंशन कम हो गई, उनकी अटेंशन स्पैन कम हो गई और सारे सबको चश्मा लगना चालू हो गया
0: जी।
1: ये एक सरप्राइजिंग घटना है कि जिससे हमें सीख लेनी चाहिए कि एक्चुअली अब उन्होंने हजारों करोड़ की लागत से ये नया मुहिम चलाया कि अब उनको वापस पेन एंड पेपर पे वापस जाना है। और एट द सेम टाइम हमें भी ये सोचना होगा कि इन सारे चीजों के पीछे अल्टीमेटली गोल क्या है। आप अपने मानव जाति को क्या चश्मे के साथ देखना चाहते हैं या उतना स्वस्थ देखना चाहते हैं। देखिए अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी ये कहती है कि कोई भी बच्चा अगर 2 साल से नीचे है तो उसकी स्क्रीन टाइम एब्सोल्युटली 0 होनी चाहिए, उसके हाथों में बिल्कुल कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर 2 से 5 साल के बीच में तो दिन में महज 30 मिनट या उससे ज्यादा नहीं। इसका रिलेवेंस ये कि देखिए एक्सेप्शंस भी है, आजकल वर्किंग वुमेन है अपने बच्चों को घर रख के जाते हैं तो अपने मम्मी नाना नानी से कुछ समय के लिए तो वीडियो कॉल में जरूर वो मिल सकते हैं। और आगे की मुहिम ये कि हमारे सेल गुप्ता आंखों के अस्पताल में हमने मायोपिया क्लिनिक बनाई है। मायोपिया क्लिनिक में उन बच्चों को दिखा जाता है जिसमें उनके चश्मे चढ़ते हैं, उनके लिए हम ग्लासेस देते हैं ताकि वो 100% अच्छी रोशनी दिख पाए, न केवल वो रोशनी को अच्छा एंजॉय कर पाए पर हमारे पास वो सिस्टम है जिससे हम उन बच्चों को ढूंढ निकालते हैं जिनमें मायोपिया प्रोग्रेस होने की चांसेस है, जिसमें चश्मे के नंबर बढ़ने की चांस। ऐसे हालात में हम उनको अगर चुनिंदा बच्चों को DIMS जो कि डिफोकस इंड्यूस्ड मायोपिक सेगमेंट ग्लासेस देते हैं, लो डोज एट्रोपिन की आई ड्रॉप्स देते हैं, इनसे दिखा गया कि आगे जाके उनके चश्मे के नंबर बढ़ने के तादाद कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मुझे पूछते हैं कि ये क्या तरीका रहेगा जिससे हम आंखों के नंबर कम कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन टाइम कम करना होगा, बच्चों को धूल मिट्टी धूप में खेलने देना होगा और जिनमें चश्मे चढ़ गए हैं उनको जरूर आंखों के चेकअप के लिए अस्पताल तक आंखों की स्क्रीनिंग या चेकअप के लिए आना पड़ेगा,
0: लगातार उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से विजिट करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही कमाल की जानकारी जो है आज आपको मिल रही है हमारे स्टेशन के जरिए। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, और आज हमारे साथ संजय चंदा जी मौजूद हैं स्टूडियो में जो ढेर सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपकी आई से जुड़ी आज हम बात कर रहे हैं। हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है हमारी आंखें जिस पर हम बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, तो आज बस उसी सारी प्रॉब्लम्स जो आप कई बार क्वेश्चंस भी हमें भेजते हैं आज उन्हीं को हमने सोचा सर के साथ में जो हम पूछेंगे और सर से उन सारे सवालों के जवाब लेंगे। इस वक्त CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर संजय जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसी बीच एक और सवाल लगातार आपको भी पता है मोबाइल लैपटॉप टीवी और तमाम सारी टेक्नोलॉजी जिस पर आजकल हमारा यूथ बहुत समय बिताता है, क्या लगातार हम जब स्क्रीन पे रहते हैं तो इससे हमारी आंखों पे कोई फर्क पड़ता है? जो मोबाइल की लाइट है, जो लैपटॉप की लाइट है, जो हमारी स्क्रीन की लाइट है, वो कैसे हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है?
1: जी देखिए इसके 2 पहलू है
0: जी।
1: आजकल ज्यादातर लोग युवा या प्रोफेशनल लोग सभी ज्यादातर वक्त अपना डिस्प्ले मॉनिटर्स पे काम करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चे कहिए वो स्कूल के होमवर्क या फिर प्रोफेशनल लोग के लिए लंबे घंटों तक डिजिटल आई स्ट्रेन के शिकार है। डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वो स्थिति है जिसमें आप लंबे समय कंप्यूटर पे बिताने के कारण आपकी आंखें ड्राई हो जाती है, जैसे सूखापन, आंखों में जलन होना और धुंधलापन की शिकायत होती है। और यही जब लंबे समय तक चले तो आंखों में साथ साथ आपको सरदर्द होने लगती है, कंधे में दर्द और इसके साथ अलग अलग तरह की शिकायतें आनी शुरू होती है आपको।
0: जी जी।
1: तो देखिए इसके 2 पहलू है। पहली बात है एक तो मनोरंजन और दूसरी बात है जरूरत। आज अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर बच्चों ये एक लत लगी हुई है कि वीडियो गेम, कार्टून और इन चीजों पे वो बहुत जरूरत से ज्यादा वक्त बिताते हैं।
0: एडिक्शन होने लग गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जरूरत एक ऐसी चीज है जिसमें हम चीजों को चाहते हुए भी अवॉइड ना कर पाए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जमाने के साथ साथ एडवांस रहने के लिए आप टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नकार नहीं सकते।
0: एब्सोल्युटली सर।
1: अब ऐसे हालात में हमारे पास एक ही तोड़ बचता है, जो लंबे समय तक स्क्रीन पे बचे हैं वो 20-20-20 रूल को फॉलो करें। हर 20 मिनट पे एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे आपको ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपकी आंखें जो कंस्टेंटली एक जगह स्क्रीन पे फोकस कर रही है वो साइकिल ब्रेक होगा। और देखिए आप और हम जैसे सहज भाषा में बात कर रहे तो हर मिनट में जाने अनजाने हमारी पलकें लगभग 17 या 18 बार ब्लिंक कर रही है।
0: ओके।
1: लेकिन जब हम ध्यान से एक ही जगह पे फोकस कर रहे हैं तो पूरे मिनट में केवल वो 2 या 3 बार ब्लिंक करती है।
0: करेक्ट।
1: इससे ये होता है कि आंखों के सामने आए

0: हुए जो आंसू के परत है पूरी तरह से सूख जाते हैं और ये सारी समस्या उससे जुड़ी हुई है। आंखों का थक जाना, लाल हो जाना, बर्निंग सेंसेशन आना, ये सारी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की शिकायतें हैं। देखिए, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को डील करने के लिए या डिजिटलाइज्ड स्ट्रेन को डील करने के लिए आपको नियमित आंखों की चेकअप की जरूरी होगी। अगर सूखेपन की शिकायत होगी तो आपको डॉक्टर के पास आके लुब्रिकेंट की दवाइयां इस्तेमाल करनी होगी, आईड्रॉप्स इस्तेमाल करना होगा। अगर डिस्प्ले यूनिट पे लंबे समय पर आप है तो ब्लू कलर ग्लासेस का इस्तेमाल करना होगा जो आपकी डिजिटलाइज्ड स्ट्रेन को कम कर सकती है। इसके साथ ही आपकी सिटिंग पोजीशन, जिसे हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स, आपकी स्किन की ब्राइटनेस इतनी कम होनी चाहिए कि आंखों को तकलीफ ना दे। सिटिंग पोजीशन ऐसी हो ताकि आपकी आंखों के लेवल से नीचे डिस्प्ले यूनिट हो। एक ही साथ अपने बैठने की कला, कंप्यूटर स्क्रीन को एटलीस्ट एक हाथ दूरी पे रखें, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अगर इन चीजों को बारीकी से हम ध्यान दें, आपके डिस्प्ले यूनिट या कंप्यूटर सिस्टम के आसपास मॉइस्चर बनाए रखने के लिए अगर ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें, और एक ही साथ हम ये भी ध्यान दें कि कोई तेज गति में चलता हुआ एसी या पंखा आपके चेहरे या आंखों पे डायरेक्टली हवा ना डाले, इन सारी चीजों को अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो डिजिटल आई स्क्रीन या लैपटॉप या स्क्रीन से आते हुए दिक्कतों को हम ओवरकम कर सकते हैं।
1: देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आपके साथ साझा करी है। लिसनर्स, इस वक्त आप आनंद के साथ हैं और ऐसी तमाम सारी जानकारियां जो है आज लगातार आपको मिलती रहेंगी इस प्रोग्राम में। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना सवाल 9837968। मेरे स्टूडियो का नंबर है, इस स्टूडियो के नंबर पे आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, आज हम सर से ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मानसून का मौसम है और ऐसे में जो है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारी आंखों के लिए हम खतरनाक हैं, लेकिन हम अक्सर अवॉइड करते हैं। मॉनसून का मजा लेने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई बार हम बारिश से आते हैं, हमारी आंखें लाल होती है, हम अवॉइड कर देते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मली पानी आंख में चला गया। इसलिए सच में मॉनसून में भी हमारी आंखों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल आनंद, आपने जो पॉइंट उठाया, मॉनसून और ये बारिश हमारे लिए सजा भी है और मजा भी।
1: ये तो टैगलाइन बनी, सजा और मजा।
0: जैसे मई जून के महीने में कड़ाके की गर्मी होती है और तुरंत बारिश,
1: राइट,
0: बारिश के बाद सडनली टेम्परेचर कम हो जाना, ऐसे ही माहौल में प्रचंड परिमाण में चारों ओर एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में ये वायरसेस का फैलना चालू होता है।
1: जी जी,
0: इसमें सबसे कॉमन है वो एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस, जिसे भाषा में हम कहते हैं कि आई फ्लू। ऐसे जब लोगों को आई फ्लू हो जाए, आंखों में लाली होना, आंखों में पानी आना, सूजन आना और एक ही साथ में धुंधलापन होने की शिकायत होती है।
1: जी जी,
0: आई फ्लू एक ऐसी स्थिति है जिसमें छुआछूत की परिस्थिति रहती है।
1: ओके,
0: आपको ये ध्यान देना होगा कि इसी बरसात के मौसम में हम देखते हैं ज्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर कोई भी प्रतिष्ठानों में जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, इनमें एक दो लोगों को अगर आई फ्लू हो जाए, साथ में सबको एक ही साथ वो देती हुई जाती है, एक के बाद एक सबको होता रहता है। इसका सबसे कॉमन कारण है ये कम्युनिकेबल डिजीज है। आपको इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होगी, बार बार आंखों को छूना नहीं है, हैंड वॉश करते रहना है, जिनकी आंखें लाल हो उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, उनके इस्तेमाल किए हुए तौलिए, गमछे या प्लेट, इन सारी चीजों को दूरी बनानी है। और अगर आंखें लाल के साथ होने के साथ साथ आपको दर्द भी होता है तो डॉक्टर की चेकअप जरूर करानी है। कॉमन आई फ्लू के सिवा कुछ चीजें और है, जैसे लोग मैदानों में कीचड़ में अगर फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, ऐसे में कोई कीचड़ आंखों में आ जाए तो माइक्रोस्पोरिडियल कंजंक्टिवाइटिस, ये भी एक स्थिति है जो आंखों में रोशनी धुंधलापन और यही फ्लू जैसे लक्षण लाते हैं। अक्सर इन चीजों में डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो दो दिन से ज्यादा आंखों में दर्द, दुखन, लाली लाए, तो आप बेझिझक आपकी आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यही मानसून का सीजन है जो हमें इस सारी चीजों में दिखते को मिलता है कि सबसे ज्यादा आंखें इन्हीं चीजों से परेशान रहती है।
1: देखिए मानसून में आप डेफिनेटली एंजॉय कीजिए, बारिश में भीगना सभी को पसंद है, आप जरूर भीगिए, आप चाय पकौड़ों का भी आनंद लीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी आंखों की हेल्थ का भी विशेष कर ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है और इसको रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने अभी आपके साथ बहुत सारी बातें साझा करी, तो उन बातों को अवॉइड नहीं करना है, ये बहुत ही काम की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, अक्सर हम इनको अवॉइड करते हैं, बट वही चीजें होती हैं जो बाद में हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलें लेकर आ जाती हैं। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल रहेगा, मोतियाबिंद और काला मोतिया, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या काला मोतिया बिना लक्षण के भी हो सकता है? कई लोगों में ये मिथ होता है कि नहीं, बिना सिम्टम्स के तो होगा ही नहीं।
0: जी जी जी आनंद, जब हम जन्म के साथ आते हैं, कुदरती तौर पर हमारी आंखों की जो लेंस होती है वो बिल्कुल पानी की तरह स्वच्छ या पारदर्शी होती है, कांच की तरह, जिसमें 100% रोशनी आर पार जाती है और हमें साफ दिखता रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, लगभग 50 के दशक में वही जो पारदर्शी ह्यूमन क्रिस्टलिन लेंस है वो धीरे धीरे सफेद बनने चालू होती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो मोमबत्ती जैसी सफेद बनने लगती है।
1: Okay.
0: अब क्या होता है, जो पहले 100% रोशनी आंखों के अंदर जा रही थी, केवल 10% या 20% रोशनी पहुंच पाती है और इससे आंखों में धुंधलापन जाता है। यही है सफेद मोतिया या जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट एक बार उम्र के साथ बन जाए तो उसकी आई ड्रॉप चश्मे, गोलियां और एक्सरसाइज से कोई इलाज नहीं हो पाता। इसका एक ही तरीका है कि आपको ऑपरेशन करा के सही चश्मों का इस्तेमाल करना। जबकि ग्लूकोमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंखों की ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। अक्सर ये प्रेशर से जुड़ी हुई हालात होती है जिसमें आंखों में हुए आंखों की प्रेशर जो बढ़ी हुई रहती है नसों को इतनी डैमेज कर देती है कि उसके रोशनियां कम हो जाती है। अब सवाल ये कि ऐसी हालात में इसके कोई लक्षण नहीं होते
1: जी।
0: जब तक आपकी आंख की रोशनी उतनी ना कम हो जाए कि आपको महसूस हो कुछ गड़बड़ हो, तब तक अपनी ये ग्लोकोमा काफी आगे बढ़ चुका होता है। इसलिए इसे थीफ ऑफ विजन भी कहा जाता है या रोशनी की चोर भी कही जाती है। हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि अगर आपके परिवार में कोई ग्लोकोमा के पीड़ित है जैसे मम्मी, पापा, भाई बहन, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आंखों की चेकअप करके ग्लोकोमा को ढूंढ निकालना। और कोई भी व्यक्ति जो 40 साल की उम्र से ऊपर है उनकी नियमित साल में एक बार चेकअप जरूर हो, ताकि अगर ग्लोकोमा उनमें छुपी हुई हो तो वक्त से पहले न केवल हम जांच से ढूंढ निकाले बल्कि सही इलाज करके उनको घटती हुई रोशनी से रोक सके।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने साझा करी, थैंक यू सो मच। एक और सवाल मेरे जहन में है, मैं चाहूंगा सीधा आपसे पूछ लेता हूँ बिना इधर उधर बातें घुमाए। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का जो मतलब आंखों की रोशनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जो इसके पेशेंट होते हैं उनकी आंखों पर क्या इसका कोई फर्क पड़ता है सर? और कितने समय में उसको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए अगर वो मरीज इससे ग्रस्त है तो?
0: जी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों ही एक ऐसी परिस्थिति है जो उम्र के साथ लगभग सबको आती रहती है।
1: ठीक है,
0: अब ऐसी परिस्थिति में ये दोनों ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन आंखों की रक्त नलिका या फिर ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। डायबिटीज में छोटे छोटे ब्लड वेसल से लीक होने लगते हैं जिसके कारण पर्दों में या फिर रेटिना में खून के धब्बे आ जाते हैं। आंखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैकुला, पर्दे का एक अंग, उसमें सूजन आ जाती है जिसे डायबिटिक मैकुलर एडिमा कहते हैं। अक्सर प्रेशर बढ़ने के कारण खून की नसें जो अंदर में फट जाती है जिससे खून और रक्त प्रवाह रुक जाती है, इसे वास्कुलर ऑक्लूशन कहते हैं, जो कि ब्रांच रेटिनल वेन या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूशन हो सकती है। आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको बीपी और शुगर की डायग्नोसिस बनी है, अगर आपकी नियमित चेकअप नहीं हुई, तो साल में एक दफा जरूर आंखों की पर्दे की चेकअप करें क्योंकि ये पर्दे को नुकसान देती है। और अगर पहले से ऑलरेडी आप डायग्नोस हो चुके हैं कि आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी या बीपी के कारण कुछ परिवर्तन आ चुके हैं, तो डॉक्टर के कहे अनुसार आपको साल में हर 6 महीने में या उनके कहे मुताबिक और ज्यादा चेकअप की भी जरूरत।
1: ओके, बहुत ही बेहतरीन। डॉक्टर साहब, अगर आंखों में चोट लग जाए या आंखों में धूल, केमिकल या कोई बाहरी चीज चली जाए तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए और इसका असर क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, इस पे भी आप बताइए। जैसे कॉर्नियल अल्सर क्या है, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा।
0: जी जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है क्योंकि बच्चे और बड़े युवा सब में हमने कभी ना कभी आंखों में चोट को महसूस किया है। अब ऐसी परिस्थिति में सभी हम ये थोड़े हक्के बक्के रह जाते कि आगे हमें क्या करना है। देखिए, छोटे धूल कण और धूल मिट्टी आंखों में आ जाए तो उसे साफ पेयजल से आप इसे आंखों को साफ करिए। अगर इससे ज्यादा कुछ है, मान लीजिए आंखों में नुकीले कुछ चीजें चुभ गई है और उससे आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसी में इसमें आपको आंखों के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आना ही जब पड़ेगा ताकि आप इसे कोई जाने अनजाने में आंखों को कुछ एक्स्ट्रा नुकसान ना दे दे। देखिए, केमिकल पड़ जाना भी बहुत एक स्वाभाविक तरीका है, जैसे बच्चे खेलते खेलते हुए फेविकॉल गिरा देते हैं, वॉल की पेंटिंग चल रही है वो टर्पेंटाइन ऑयल गिरा देते हैं, चूने आंखों में लगा देते हैं। दिवाली में हमने देखा कि सबसे ज्यादा उन्होंने कार्बाइड गन से अपनी आंखों को इंजरी किया। अक्सर बड़े अपनी वॉशरूम या टॉयलेट क्लीन करते हुए तेजाब आंखों में गिरा देते हैं। ये हर्पिक जैसी चीजें जिससे टॉयलेट क्लीन कर जाते हैं वो भी आंखों में गिर जाए तो बहुत खतरनाक नुकसान आंखों को दे सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो बेझिझक आप अपने सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आंखों को ज्यादा समय तक एटलीस्ट 15-20 मिनट अच्छे से धोइए और बिना कोई वक्त गवाए आप एटलीस्ट डॉक्टर की चेकअप में आइए ताकि इसके जुड़े हुए आगे जो नुकसान है उसको हम तुरंत झेलने से बच सके।
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ साझा करी। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू, और सच में आप बहुत ही तमाम ऐसी खास जानकारियां और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज आप हमारे रेडियो के जरिए तमाम शहरवासियों को आप साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके इंस्टीट्यूट का जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट टाइम और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला सेगमेंट हमारे साथ शेयर किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब, ये लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्या है? लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के उम्मीदवार कौन होते हैं और इसमें उन्हें क्या लाभ मिलता है, थोड़ा सा इसके विषय में भी आप बताइए।
0: जी आनंद, लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी वो प्रक्रिया है जिससे हम आंखों के सामने कॉर्निया की शेप बदल देते हैं। इसका मेन फायदा ये है कि जो लोग लंबे अरसे से चश्मा पहन रहे हैं,
1: हाँ जी,
0: और वो चाहते हैं कि वो अपने चश्मे हटाकर बिना चश्मे से अपनी पूरी रोशनी देख पाए।
1: जी,
0: देखिए लोगों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। जैसे कुछ लोगों का शौक है कि मुझे स्विमिंग, हैवी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट खेलना है। कुछ लोगों के लिए ये जरूरी है कि मेरी शादी है, मेरी शूटिंग है जिसमें मेरा चेहरा सुंदर दिखना है। कुछ लोगों की ये जरूरत है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है आर्मी, डिफेंस, पुलिस, नेवी, और मेरा एग्जाम फिट आया, लेकिन अब मुझे मेडिकल फिटनेस में इतना दिखाना है कि मेरी रोशनी बिना चश्मे से फुल 6x6 या 100% है। ऐसे हालात में उन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल एक नायाब तरीका है जिसमें हम लेजर की प्रक्रिया से आंखों की पुतली में ऐसी परिवर्तन लाते हैं जिससे आप जो भी माइनस हो प्लस नंबर हो उसे लेसिक PRK जैसी पद्धति से आपकी रोशनी को फुल बिना चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस से पूरी रोशनी दिलाने की प्रयास करते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि जो भी कैंडिडेट अपनी ये ऑपरेशन कराना चाहे वो अपनी आंखों की स्क्रीनिंग करे। इसमें हम मेनली ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी पुतली में उतनी ताकत है कि वो इस तरह के ऑपरेशन को झेल जाए। अक्सर पुतली के मोटापे पे ये निर्भर करता है। अगर वो लेसिक या PRK के लिए सूटेबल ना निकले तो उनमें दूसरी पद्धति जैसे ICL जैसी पद्धति से हम पूरी रोशनी दिला सकते हैं। अक्सर इसके लिए ये जरूरी होता है कि उनकी उम्र 20-21 साल से ऊपर हो और पुतली में अच्छे मोटापे हो। सो लेजर डिफेक्टिव सर्जरी की पद्धति से हम उन सारे तमाम लोगों को वो नई उम्मीदें देते हैं जो लंबे समय तक कॉन्टेक्ट लेंस और मोटे चश्मे पहनकर थक चुके हैं और अपनी कॉन्फिडेंस और जिंदगी को वापस पाना चाहते हैं।
1: बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। डॉक्टर साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा इसी बीच। नेत्रदान बेसिकली क्या है और कौन है जो अपनी आंखों को दान कर सकते हैं और नेत्रदान से किस प्रकार के मरीजों को जो है मतलब लाभ होता है?
0: जी, आपने ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए, नेत्रदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों की मृत्यु के पश्चात वो अपनी आंखें किसी और को दान दे जाते हैं ताकि उनकी जिंदगी में दोबारा रोशनी बन सके।
1: बिल्कुल।
0: देखिए, भारत में आज के दिन लगभग 13 से 14 लाख लोग ऐसे हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक ऐसी अंधता है जिसमें आंखों की काली पुतली जो पारदर्शी होती है उसमें किसी प्रकार की सफेदी आ जाती है। वो अलग अलग कारणों से हो सकती है, कभी घाव लग जाना, चोट लग जाना या जन्मगत आए हुए कुछ कृत्रिम या विकृतियों के कारण उनकी आंखों की पुतली स्वच्छ नहीं रह पाती। देखिए, नेत्रदान कोई भी कर सकता है मृत्यु के पश्चात। इसके लिए कोई भी उम्र का, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला, कोई भी लिंक हो, इसमें किसी तरह की परहेज नहीं होती। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1919 पे आपको फोन करना है। वो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर से जो कोऑर्डिनेटर होते हैं आपके सबसे नजदीकी आई बैंक को सूचित करते हैं। जब भी आपके प्रियजनों की किसी मृत्यु होती है तो आप उनसे संपर्क करें। जो नजदीकी आई बैंक के टेक्नीशियन है वो बेझिझक आपके घर पहुंच जाएंगे और हम आपकी आंखों में से कॉर्निया, केवल नेत्रदान में हम आंखों की कॉर्निया को ही लेते हैं जिसमें चेहरे में किसी किस्म की विकृति नहीं होती, ना ही कोई खून बहता है और ना ही चेहरा खराब लगता है। ऐसे हालात में आए हुए उन दो पुतलियों से हम एटलीस्ट दो लोगों की जिंदगी को नई रोशनी दे सकते हैं। अब ये नेत्रदान के फायदे उन लोगों को होता है जो कॉर्निया रिलेटेड ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं। तो नेत्रदान एक महादान है बाकी सब दानों में, जिसमें हमारी आज के दिन में जो इंडिया की मौजूदा स्टेटिस्टिक्स है इसमें साल में 30,000 से ज्यादा नए पुतली की जरूरत वाले मरीज जुड़ते चले जा रहे हैं, जबकि ट्रांसप्लांट केवल 20 या 25 लोगों को हो पा रहा है। तो नेत्रदान की आज के दिन में हमें बहुत आवश्यकता है, जिसमें लोगों की जागरूकता कम होने के कारण हम इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पा रहे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आग्रह करूंगा कि वो नेत्रदान के विषय में अपनी जागरूकता बढ़ाए और अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1919 पे जरूर कॉल करें ताकि एक अंध व्यक्ति की जिंदगी में हम दोबारा कॉर्निया ब्लाइंडनेस से जुड़ी हुई तक उन कमियों को कमियों को निकाल के हम उनकी अच्छी रोशनी दिला सके।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जो है एक संदेश भी था सोशली लोगों के लिए और बहुत ही अच्छा आपने जो है कहीं ना कहीं इसको ये भी आपने एक संदेश दे दिया कि सिर्फ आंखें हमारे लिए नहीं होती, हमारे जाने के बाद किसी और की जिंदगी को भी वो रोशन कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कर दिखाइए कुछ ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो वो चीज आप भी कर सकते हैं, बस जरूरत है सही जज्बे की, है ना। और डॉक्टर साहब, इसी बात के साथ मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, कॉर्निया प्रत्यारोपण के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। कॉर्निया प्रत्यारोपण या कॉर्निया ट्रांसप्लांट के विभिन्न तकनीकों में कौन सी एक ऐसी नेत्रदान और कितने मरीजों को इसका लाभ हो सकता है?
0: जी, देखिए, आधुनिक उपकरणों से आज के दिन नेत्र प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज के दिन हम केवल ये चुनना चाहते हैं कि जिनकी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है पुतली की कौन सी लेयर उसमें प्रभावित है। जो परत प्रभावित है हम सिलेक्टिवली केवल उसी परत को बदलने की काबिलियत रखते हैं। मान लीजिए कोई मरीज है, बचपन में लगे हुए चोट के कारण उनकी जो सफेदी है केवल आगे की लेयर पे है, ऐसे परिस्थिति में हम एंटीरियर लेमेलर केराटोप्लास्टी करते हैं जिनमें पहले हो चुके मोतियाबिंद ऑपरेशन या पुतली की अंदरूनी लेयर जिसे एंडोथेलियम कहते हैं उसकी कमजोरी के कारण अंदरूनी लेयर में कुछ कमजोरी आ गए, तो सिलेक्टिवली केवल 10 से 15 माइक्रोन की अंदरूनी लेयर बदलते हैं जिसे एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी कहते हैं, जिसके तरीके डिसेक्ट डिमेक हो सकते हैं, और जिनको पूरी कॉर्निया टोटली आपकी सफेद हो चुकी है या पूरी उनके सारे लेयर्स पड़ चुके हैं, उनके हम फुल थिकनेस पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करते हैं। तो एक दान में मिली कॉर्निया से आगे की लेयर से हम एक आदमी की आगे की परत को बदल सकते हैं, उसी दान में मिली पुतली की पीछे के लेयर से एक दूसरे बंदे की पीछे खराब हुई लेयर को बदल सकते हैं। अब उनके दान में मिली पुतली में जो स्टेम सेल होते हैं उससे किसी ऑकुलर सरफेस रिकंस्ट्रक्शन में भी हमें मदद मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर समझे कि एक पुतली एक कॉर्निया से शायद हम दो से ज्यादा लोगों की जिंदगी में उजाले की उम्मीद रख सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर संजय चंदा जी जो कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। तमाम जानकारियां उन्होंने आज आपके साथ हमारे मुरादाबाद के लिसनर्स के साथ साझा करी। इनफैक्ट मुरादाबाद के बाहर भी लोग हमें सुनते हैं। तमाम सुनने वालों के साथ ये छोटी छोटी जानकारी जो शायद मुझे और आपको पता भी नहीं थी, वो तमाम जानकारियां आज डॉक्टर संजय जी ने हमारे साथ साझा करी। सर आपका एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद दिल से थैंक यू करता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वंस अगेन वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके एंड बहुत अच्छे से आपने इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया। जाते जाते हमारी तमाम मुरादाबाद की जनता को या जो लोग हमें मुरादाबाद के बाहर भी सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे जाते जाते, अपनी ओर से कोई एक मैसेज जो आपको लगता है बहुत जरूरी है जनता के लिए?
0: देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि आंखें और ये विजन की सेंस एक दुर्लभ इंद्रियों में से है जो हमारे पास एक बहुत बेशकीमती है। अब हमें इस चीज की जिम्मेदारी अपनानी होगी कि आपकी रोशनी के लिए आप अपना बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखें, और साथ ही में समाज में जो लोग डिप्राइव्ड है जिनकी रोशनी कम है उनके प्रति भी थोड़ी सेंसिटिविटी दिखाएं। नेत्रदान जैसी चीजों को आप बहुत ज्यादा बढ़ावा दीजिए। हम ट्रांसप्लांट करने में सक्षम है लेकिन हमें ट्रांसप्लांट के लिए उचित परिमाण में कॉर्निया नहीं मिल पा रही, जिसके लिए सोशल अवेयरनेस एक बहुत जरूरी चीज है। आप जितनी ज्यादा अवेयरनेस करेंगे उतनी ज्यादा हमें आई डोनेशन मिलेगी, उतनी ही ज्यादा जिंदगियों में हम रोशनी भर पाएंगे। और जब जब हमें मायोपिया, लेसिक, लेजर रिफ्रेक्टिव सर्जरी इन सारी चीजों की जरूरत होगी, आप जरूर याद करिए वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट के साथ सीएल गुप्ता आंखों के इंस्टीट्यूट में ये सारी उपलब्धियां हैं, और आप हमसे जरूर मिले जब जब आपकी ये जरूरत होगी। हम आपको बेशक बिल्कुल दिल से पूरी सर्विसेज देंगे। और इसके साथ आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, और मैं सबको सभी स्वस्थ रहे अच्छे रहे, आपका दिन शुभ हो।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय चंदा जी, कॉर्निया स्पेशलिस्ट सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में मौजूद थे। डॉक्टर संजय चंदा जी का हम दिल से थैंक यू करना चाहते हैं। आज तमाम जानकारियां उन्होंने एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के माध्यम से हमारे तमाम लिसनर तक पहुंचाई ये छोटी छोटी जानकारियां। मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको ये जानकारियां जरूर पसंद आएंगी और डेफिनेटली आप इन जानकारियों को अपनी लाइफ में जरूर ऐड करेंगे। श्रोताओं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है अक्सर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, भूल जाते हैं, तो हमें इन जानकारियों को बिल्कुल नहीं भूलना है। और जैसे कि डॉक्टर संजय चंदा जी ने बहुत ही उपयोगी जानकारियां आपके साथ साझा करी, आंखों की देखभाल के बारे में जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी बातचीत डेफिनेटली पसंद आएगी। श्रोताओं तो आप अपनी आंखों का और भी बेहतर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे जाने की इजाजत। एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक छोड़ के जा रहा हूं। वंस अगेन थैंक यू करना चाहता हूं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट का जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट सेशन हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर संजय चंदा जी, आपका भी दिल से थैंक यू। सो गाइस चलिए बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नए सेगमेंट में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।
2: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 एफएम मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: रोहन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जाए कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहड़ा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकर पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवत या वो लोगन के बहुत जौन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुंचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंगलता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सके और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं, गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान

0: माया जाता है।
1: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
0: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
1: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
0: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
1: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
0: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
1: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
0: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
1: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
0: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
1: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
0: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
1: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
0: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
1: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
0: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
1: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
0: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
1: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
0: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
1: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द की नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारे भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
3: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
3: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,